0: वो कहेंगे तू पाक है, हमें ये बात छाया न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही उनको और उनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी, यहाँ तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे।
1: फक

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्स।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: 101 FM。
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

101 FM Coke Studio, Season 15.

0: 101 FM。
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड

0: आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: 101 FM

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: बढ़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे।
1: आसमां को छूते जाएं हम जश्न आजादी पे, यही है अज़्म।
2: Telenor, the smart call. 101 FM.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: मार्का हक सिर्फ जंग नहीं, एक पैगाम था, एक ऐलान था, दिफा का, कौम के वक्कार का, पाकिस्तान का। हम तैयार हैं, हर दम तैयार।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर वजीर आजम ने बलोचिस्तान के जिले बारखान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया है। वजीर आजम ने नौजवानों को तालीम, महारत के फरोग, रोजगार और कारोबार के बेहतर मौके की फराहमी के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार। अंकल सरगम के किरदार के खालिक फारूक कैसर की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा बैन अल-अक़वामी T20 मैच आज कराची में खेला।
1: कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। अबव FM 101.1
2: For latest news, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है, पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं, तलाक या खुला के बाद रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकाया है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई कौंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईटी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

FM 101. A bale bale o shower shower. Kisano ke

0: उठा लो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक बारिश होने वाली है।

0: This is FM 101.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

ये दुनिया छोटी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में, मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा नाम है।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू में जारी सूरत हाल के पुर अमन हल की उम्मीद जाहिर की है। वज़ीर ख़ज़ाना चीन में है, जहां वो आज बीजिंग में पाकिस्तान के पांडा बॉन्ड के इजरा का इफ्तिताह करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बारखान में कार्रवाई के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और चीन के सदर ने कहा है कि चीन और अमरीका को नए दौर में बड़े ममालिक को एक दूसरे के साथ खुशउसलूबी से इश्तराके अमल के लिए सही रास्ता तलाश करना चाहिए। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101.
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101. किसानों के

0: listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
1: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किस
0: You're listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए
1: You're listening to FM 101, Abale Abale Oshawa Oshawa.

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इज्तिमाई कोशिशों और कौमी जज्बे से पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का अदा किया है। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि रवां माली साल के दौरान IT की बरामदात में 4.5 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा मतवक्को है। बिरादर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायजा लेने के लिए 5 रोज़ा इलाकाई सफीरों की कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा है कि पाकिस्तान LNG की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए कतर के साथ मिलकर काम जारी रखेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: नमस्कार।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
3: किसानों के

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: देखे तो जो इधर

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

ये दुनिया झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा नाम है।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: जे तू लब दा वफा फिर दा नी लबनी

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान के

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: And now you're tuned into
1: FM 101.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: And now you're tuned into
3: FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: Free socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: I love FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: And now you are tuned into
1: FM 101
2: किसानों के आलू

شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

0: 9 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan, the news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister, addressing the Federal Cabinet meeting in Islamabad today, expressed the resolve to make Pakistan an economic power. The President has conferred military awards upon officers and personnel of the armed forces in recognition of their services for the country. The Deputy Prime Minister and the British Foreign Secretary have telephonically discussed the prevailing regional situation. Pakistan has successfully launched its first ever panda bond in China's onshore capital market.
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101. 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: And now you are tuned into
5: FM 101.
6: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
7: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है. इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है. निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है. लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं. नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है. यूनियन कौंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाने के अज़्म का इजहार किया। सदर ममलिकत ने मुसल्ला फौज के अफसरान और अहलकारों को मुल्क के लिए खिदमात के इतराफ में फौजी एजाजात से नवाजा है। नायब वज़ीर आज़म और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने मौजूदा इलाकई सूरत हाल पर टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की ख्वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच कराची में जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को उसी जज्बे और अनथक मेहनत से माशी ताकत में तब्दील करने के अज़्म का इजहार किया है, जिसका मुजाहरा उसे एक एटमी कुव्वत बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए साइंसदानों, सियासतदानों और दीगर इदारों समेत उन तमाम हीरोज को शानदार खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया। शहबाज शरीफ
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Oh yes. Yeah, it's RJ Dogs. वक्त हो चुका है 10:26 और 14 मई 2026 का सेन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरा साथ होता है बुध जुमेरात की शब 10 से 12 बजे।

तरीके से मुकम्मल किया होगा। और बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके लिए जहां जहां तक मेरी आवाज़ जाती है। कहने को तो रोज़ बहुत सारे अल्फाज होते हैं आपके पास, मेरे पास, मैं भी ना जाने क्या क्या बोलता रहता हूँ। कहीं पे अच्छा बोलता हूँ, कहीं पे बुरा बोलता हूँ, कभी कुछ अच्छा देखता हूँ, कभी कुछ ऐसा देखता हूँ जो मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता, तो मैं गुमा करता हूँ कि ये बुरा है। ओके, लाइट का आना जाना लगा हुआ। एनीवेज, तो अर्ज सिर्फ इतनी सी है कि इसी से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते, क्या आपके इर्द गिर्द है और क्या नहीं है। फर्क इससे पड़ता है आप चीजों को किस अंदाज में देखते हैं। और खालिक कायनात ने जहां पे इतनी नेमतें दी हैं उनमें एक ये सबसे बड़ी नेमत है कि आपको देखने की सलाहियत दी है, और फिर देखने के लिए आपके इर्द गिर्द इतने खूबसूरत से रंग सजा दिए हैं। इतने रंग हैं, इंसान रंगों में खोया रहता है। अगर कभी बैठ के आप अपने इर्द गिर्द निगाह डालें, कभी आसमान को देखें, कभी नीला है, कभी सफेद लगता है, कभी ग्रे लगता है, और कभी गहरे बादल छा जाएं तो बड़ा डार्क ग्रे सा हो जाता है, काला सा हो जाता है। कभी बादल बरसे, जैसे आज लाहौर में बारिश हुई है एकदम से, मई का महीना 2026 है। आई सिंपली विल नॉट फॉरगेट दिस मई 2026, कि इस महीने में इस तरह की बारिशें, इस महीने में ज़्यादा बारिश, इस महीने में इस तरह बरसात की फील, कि बारिश अभी भी लगी है और मतलब समझ नहीं आ रहा, मौसम देख के बड़ी रोमांटिक फील आती है। और लेकिन साथ ही याद आता मई है तो बंदा फिर रोमांटिक फील को भूल जाता है और सोचने लगता है एक ही चल रहे है, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, और दिस इज व्हाट गोइंग ऑन। जी यहाँ पे लाइट भी नहीं है, मेरे ख्याल है लाइट के बगैर ज्यादा अच्छा लग रहा था अंदर आके। ये टर्न इट ऑफ जी, मेरी यहाँ पे लाइव स्ट्रीम है जी, RJ.DOX. आई वॉन्ट यू टू टर्न ऑफ द लाइट्स, तो वहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं, तो लाइव स्ट्रीम पे भी आप आके कमेंट कर सकते हैं। तो रंग है, कभी कभी रंग अच्छे लगते हैं। सारी सारी सारी या दैट्स बेटर। तो रंग देखते हैं, हर रंग का अपना एक जज्बा है, अपना एक इम्पैक्ट है, और हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं। कभी काला रंग देखें, कभी सफ़ेद देखें, और मुख्तलिफ रंगों के बारे में मुख्तलिफ बात साइंस भी करती है और साइकोलॉजी भी करती है, और इसकी एक पूरी साइंस है। और अल्लाह ने कितना खूबसूरत सा ये निज़ाम बनाया, इसलिए तो कहा कि हमने तुम्हें आसन तकवीम के दर्जा पर खल्क किया। अब वो आसन तकवीम के दर्जा की खिलकत ये है कि कहीं पे कोई कजी, कोई कमी, कोई भी लकुना, कोई आपको लूपहोल नज़र नहीं आता है। मतलब इतनी खूबसूरती से परफेक्टली बनाया है कि मैं तो मैं हूँ, मेरे इर्द गिर्द फैली हुई हर वो चीज़ जो फितरत का मजहर है वो भी इतनी परफेक्शन से बनी है कि मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही है। वेल आई फील टायर्ड, आई गो आउट, और मैं अपने लॉन में बैठ जाऊंगा या बाहर कहीं चला जाऊंगा, सब्जे को देखूंगा, आसमान को देखूंगा। ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है, सब्ज रंग रिलैक्स करता है, आंखों को सुकून देता है। खुदा ने कितना खूबसूरत से निज़ाम बनाए। और फिर हर रंग, चेहरों के रंग, फिर गुफ्तगू में भी रंग है, फील में भी रंग है, और हर जगह रंग ही रंग है, और इन्हीं रंगों से सजे हुए चेहरे नज़र आते हैं। मुख्तलिफ रंगों के लिबास पहनकर हर कोई अपने मिजाज के मुताबिक रंग पहनता है, और रंगों की चॉइस हर बंदे की पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट देती है, उसके असरात को जाहिर करती है कि शख्स किस तरह का है, किस तरह की चीज़ें पसंद करता है। और इसके साथ मेरा जो है यही पैगाम है कि जहाँ पर जाएं, जहाँ पर रहें, जिस तरह भी हों, खुदा का शुक्र अदा करते रहें हर लम्हा। कभी कभी लाजमी अगर नहीं कर पाते हर लम्हा, तो वो लम्हा ज़रूर तलाश किया करें कि जब फितरत के करीब हों और इन रंगों को खूबसूरती से देखें। यू विल फाइंड योर सेल्फ, जब आप बाहर की फितरती नज़ारों को देखते हैं तो उनमें आपको अपने अंदर की छलक नज़र आती है। व्हाट साइंस सेज इज़,

कि रंग बाहर तो है ही हैं, उसके अलावा रंगों की पहचान और उनके कलर रिकग्निशन वो आपका जहन भी करता है। खाली बाहर नहीं रिफ्लेक्ट होता है, आपके अंदर भी होते हैं। अपने आप को जानने का मौका दिया करें, खुद अपने आप को अपने लिए वक्त दिया करें। बड़ा पॉजिटिव चेंज आता है जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा उलझन है, परेशानी है, तो कोशिश करें थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें। थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठें अपने आप के साथ, कुछ बातें करें, कुछ रंगों को देखें और फिर शुक्र अदा करें अपने होने पर। आप अगर मैं, आप और मैं ना होते तो क्या होता, मतलब हम बस हैं और ये होना ही बड़ा अच्छा है। इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं है कि एक सांस आती है, एक जाती है। हम ना जाने कितना कुछ सोचते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी प्लान करते हैं, पता नहीं क्या क्या, कुछ ना होना भी फिर भी इट इज़ अ ब्लेसिंग कि यार मैं हूँ, आप हैं, मैं हूँ तो फील करता हूँ, मैं हूँ तो फील होती है खुशी या गम या परेशानी या रंग, हर चीज़। और मेरा सलाम अकीदत है तमाम के तमाम अफसरान, तमाम के तमाम पाक फौज के जवानों के लिए, पाक फिजाइया के हमारे शहीनों के लिए और नेवी के तमाम जवानों के लिए। यकीन करें आपकी वजह से सर हमारा फ़ख्र से बुलंद है और मैं प्राउडली आज कहता हूँ, सिर्फ मैं नहीं दुनिया में तमाम मौजूद पाकिस्तानी, जब भी जिक्र होता है आपका तो हमारे सीने फ़ख्र से चौड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम उम्र हम पाकिस्तानी मुसलमान बनकर ज़िंदा रहना पसंद करेंगे। और मेरी ये खालिक से दुआ है कि आपके घर वालों की आंखें आप लोगों की मौजूदगी से इसी तरह से ठंडी रहें। थैंक यू वेरी मच जी मरीना बिलाल फॉर योर मैसेज ऑन माय लाइव स्ट्रीम एंड मोहम्मद आरिफ एंड जैन बाबा, वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। और आज डॉक्स वाइब्स, थैंक यू वेरी मच। और दिल करता है झूमने का, आज बात भी वैसे मैंने रंगों पे करनी है, आज से आई एम स्टार्टिंग दैट सेशन और साइकोलॉजी ऑफ कलर्स पे बात करें। बट स्टिल व्हेन आई सी एवरीथिंग ब्यूटीफुल, आंखें बंद करके ना रिकॉल करने का बड़ा मज़ा आता है। मतलब आप बैठे हैं, हर तरफ हरियाली है, परिंदे चहचहा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा मंजर है, हल्के हल्के से बादल, सौंधी सौंधी सी हवा, वो जो अचानक से एक छोटा छोटा सा झोंका आता ना जो चेहरे को छू जाता है। जुल्फें तो है नहीं मेरी, बट फील आती है ऐसा जैसे आई एम अबाउट टू फ्लाई। हकीकत भी यही है कि इसमें फैंटेसी का ब्लेंडर है। झूमे अपने जिंदा होने पे खुशी का इजहार करें। आप हैं, मैं हूँ, दिस इज आरजे डॉक्स, डोंट गो एनीवेयर, आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक। कल मुझे किसी ने कहा था, मैंने कहा था आज चलाऊंगा, हियर यू गो। या पीछे की रह जाना, बिल्कुल ऐसे ही मेरे बस में ये है, आपके बस में ये है कि झूमें, देखें, फितरत के करीब वक्त गुजारें। थैंक यू वेरी मच सईदा बिनत खदीजा फॉर ज्वाइनिंग जी। जिनके पास इंटरनेट की रसाई नहीं है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और उसको भेज दें 4471 बार। मैं भी झूम रहा हूँ, आप भी झूमें।

ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:44 और आज 14 मई 2026 का सन है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। एंड थैंक यू वेरी मच मेरी लाइव स्ट्रीम पे जिन लोगों ने मैसेजेस किए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैडम सलमा आपका शुक्रिया, जैन आपका शुक्रिया, रिदा शाह आफ्टर लॉन्ग टाइम, आरजे आरिफ खान नंबर मांग रहे हैं, मैं अभी देती हूँ आपको, भेजती हूँ। फिजा राजपूत, ओके। अच्छा, आई वॉज टेलिंग यू एंड लेट मी रिपीट इट अगेन जी, वी आर स्टार्टिंग एन इंटर्नशिप प्रोग्राम। रेडियो पाकिस्तान यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है और इसमें 28 साल की एज लिमिट है और बैचलर हमने रखी है। यहाँ तो इनरोल हों आप बैचलर में, बैचलर कर रहे हों, अगर नहीं तो आप प्रोफेशनल लाइफ में बैचलर आपने किया हो। तो मुझे आज भी कोई कल से पीछे पड़ा था, इंटर वालों को भी कंसिडर करें और इंटर वालों को भी करें। मैंने कहा चलें आप फॉर्म सबमिट करें, वो फिर इंटरव्यू करके देख लेंगे, अगर किसी में स्पार्क हुआ तो विल डेफिनेटली अकोमोडेट जी, रिक्वेस्ट कर ली जाएगी। जेमिनी या फीमेल की तरह बात करते अच्छी लगती हैं, है ना, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं लड़कियों की तरह बात करती हूँ। आरिफ मुझे शर्म आ रही है, मैं तुम्हें नंबर कैसे दूंगी, मुझे ये बताओ, मैं नहीं दे रही। मेरी अम्मी ने अगर देख लिया ना तुमसे बात करते हुए, मेरी अम्मी मारेंगी। एनीवेज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जी साइकोलॉजी ऑफ कलर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से बात करेंगे यार, मतलब कितनी ओल्ड मेमोरीज रिकॉल होती है ना। एंड मैंने पहले भी एक दो दफ़ा जिक्र किया कि मुझे बड़ा शौक था ना इस तरह की किताबें पढ़ने का, और अपने मैंने शो में जो हमारा मंडे का हुआ करता था उसमें भी जिक्र किया बहुत सारी इस तरह की रिलेटेड, और भी यू नो मिस्ट्री और ये जादू शादू और सितारे पामिस्ट्री, तो इनमें वो पता नहीं कौन कौन सी, आई डोंट वांट मेंशन द नेम, मैं भी जाके तुसी सर्च कर दे रो, दे आर नॉट गुड बुक्स। हाँ, उनमें से कुछ का कर दूंगा। एक जो बड़ी फेमस हुई दैट वाज द लाल किताब, इतनी मोटी किताब थी एंड वो सारे सितारों की चालें और कैसे और क्या इम्पैक्ट आता है क्या नहीं आता। फिर उसके अलावा फिर जो पिछले दिनों में करता रहा, मतलब पिछले साल मैंने आप लोगों के साथ वो किया जिसमें ज़ोडिकल साइंस के ऊपर काफ़ी डिस्कशन की के पहर जो 8 पहर हम गुफ्तगू में बात करते हैं, पहरों की तश्कील कैसे होती है। और जब इसको मैंने पढ़ना शुरू किया इससे पहले मुझे इत्तफाक ये हुआ कि आई हैपन टू रीड अ बुक दैट वाज बुक ऑफ इनोक, जिसे किताब इदरीस भी कहा जाता है। अभी यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने उस पर बात कर ली हुई है, बहुत सारे लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। वो हमने पढ़ी थी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, काफ़ी उसे खंगाला, तो उसके अंदर भी इसी तरह थे कहाँ कहाँ से सूरज कैसे ट्रेवल करता है और कैसे नहीं। तो आई थॉट के यार कलर्स पे बात स्टार्ट करते हैं, कदा से वी आर स्टार्टिंग अगेन। आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आप बताएंगे, तो उसके बाद फिर आपको हम देंगे 1000 रुपये वाला कार्ड, यानी हम आपको लोड भेजेंगे। और ये स्पॉन्सर किया है हमें वेलवीरा कंपनी, जो है जो प्रोडक्ट्स बनाती है जी स्किन केयर के, और ख़वातीन के हवाले से भी इनकी प्रोडक्ट है। स्किन केयर के हवाले से आजकल तो कोरियन स्किन यू नो काफ़ी ज़्यादा इन हुई है, बड़ी वो क्या ग्लास स्किन कहते हैं, आई विश टू हैव, आई विश आई कुड हैव, लेकिन नहीं, कहाँ, ये जो गोरे चिट्टे लोग होते हैं ना जिनमें होता है वो कर सकते हैं, मेरे जैसे बंदे ग्लास स्किन के चक्कर में वो काली शाइन पैदा काली शाइन पैदा कर लेते हैं। तो जी साइकोलॉजी ऑफ कलर पे बात करेंगे आज से, वे स्टार्टिंग एंड एक सीरीज होगी इसमें दोबारा से, आज मैं खंगालता रहा एंड मैं दोबारा से वो फिर नोट्स शोट्स बनाने और सारी चीज़ें फिर मुझे याद भी आ गई, अच्छे यार कभी पढ़ान भी जाया करते सी वो तो भी नोट्स बनाया करते सी, आज फिर से नोट्स बनेंगे। और ये तो खैर गपशप का एक सिलसिला है आपके साथ, इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट करें, कोई भी बात, एनी थिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू से। मेरा कैनवस बहुत बड़ा है, इसमें आप रंग भर सकते हैं जिस तरह से चाहें और जो रंग चाहें भरें, कॉल करें 0421100101। और इसके अलावा आप फेसबुक पे मुझे देख सकते हैं RJ DOX, ये आप लिखेंगे तो आपको मेरी लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी। और इसके अलावा आप स्टैटिक पोस्ट है वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं FM 101 लाहौर एंड

0: Falcon 101 General Pakistan. And SMS करने के तरीका बारहा बताता हूँ, फिर से दोहराऊंगा। अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई नहीं, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पर। जैन बड़े पुराने लिसनर है, काफ़ी परेशान है। जैन यार इतनी बात ही कहूँगा, परेशानियाँ बहुत होती हैं और मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर ये तुम्हारी ज़िंदगी है, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़ात की परेशानियों से मैंने लड़ना है। अगर मैं मायूस हो जाऊँगा तो मेरी जो स्ट्रगल है, जो काविश है, जो जोहद है, जो कोशिश है, उसका वो जो है ना रिटर्न कम हो जाएगा, क्योंकि वो कम हो जाएगी। मैं ज़िंदगी के मोड़ पे कहीं भी खड़ा हूँ ये आपने याद रखना है। आप कहीं भी खड़े हैं, आपकी परेशानी आपकी है, मेरे जैसे बेशुमार लोग मिलेंगे जो आपको जुमले दे देंगे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो आपने करना अपने लिए करना है, और अपने लिए करना है तो बेहतरीन करने की कोशिश करें। परेशानियाँ आती हैं चली जाती हैं, लेकिन घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। भूखे आप सोते नहीं, हालात भी बेहतर हो जाएंगे अगर अपने अंदर बस यकीन पैदा कर लें। और दुआ किया करें फातिमा के लिए, चलें जी बहुत सारी दुआएं हैं फातिमा के लिए। आज मैं आपसे दो सवाल भी पूछूंगा, उनके आपने जवाब देने हैं। जीतने वालों को 1000-1000 रुपया जो है वो मिलेगा वेलवीरा की तरफ से। तो कल इसमें बात करेंगे, इट इज अबाउट इमोशन, पर्सनैलिटी, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप एंड ह्यूमन साइकोलॉजी है। सिर्फ दीवारों या कपड़ों में रंग नहीं होते, क्योंकि रंग आपकी मेमोरी, मूड और पर्सनैलिटी को बना रहे होते हैं। हर जगह रंग भरे नजर आते हैं आपको। और आपको बताऊं, बेसिक कलर जो होते हैं, बेसिक कलर तीन होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है और एक येलो होता है। लेकिन हमारा जो माइंड होता है ना, थोड़ा सा इसकी बेसिक के ऊपर बात कर लेते हैं ना जी। हमारा माइंड जो हमारी आंखें जो होती हैं, जिसके अंदर ये छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्स, एक छोटी छोटी कॉन्स होती हैं, मैं भी सुन लो फॉर इंफॉर्मेशन, वो RGB जो तीन ये फॉर्मेशन होती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिसके ऊपर कंप्यूटर सिस्टम भी, जो कंप्यूटर के अंदर भी कलर्स की जितनी फॉर्मेशंस बनती है ना, वो भी इसी पे बनती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। और जो इसके अलावा जो बेसिक कलर्स होते हैं ना जी, वो रेड, ब्लू और येलो होते हैं। इसी से तमाम तरह के रंग जो है ना वो बनते हैं, और इन्हीं से फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर रंगों की फॉर्मेशन आना शुरू होती है, सैकड़े कलर बन जाते हैं। और मैं तो हैरान होता हूँ, हम मर्दों के लिए एक होता है रेड कलर, रेड इज़ रेड, वो किसी शेड में नज़र आ रहा है हम कहते हैं रेड। ख़वातीन पता नहीं कहाँ कहाँ से उसके शेड ढूंढ लेती हैं, ये रेड फलाना है, ये रेड फलाला है और ये रेड फनाला है। किसी को वैसे रेड के शेड पता है तो ज़रा नाम लिख के शेयर करें। मुँह तो कभी कभी पिंक भी रेड ही लगना शुरू हो जाता है, और ब्लू के मैं तो हैरान होता हूँ यार, बीबियाँ कहाँ से इतने रंग ढूंढ लाती हैं, मेरे लिए ब्लू ब्लू है वो तो एक अरसे के बाद मैंने लर्न किया, अच्छा स्काई ब्लू समथिंग एल्स, अच्छा स्काई ब्लू और होता है, पानी वाला ब्लू और होता है, और अल्लाह ही जाने कहाँ से आती हैं आप लोग, कैसे कर लेती हैं आप लोग। कॉल लेता हूँ एक, उसके बाद गाना लगाऊंगा पहला, फिर आगे बात करेंगे थोड़ा सा कलर्स के बेसिक इमोशंस पे, फिर फोकस स्टार्ट करेंगे आज एक कलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम
1: भाई, कैसे हो?
0: अल्लाह का शुक्र, आप बताइए।
1: आइए
0: शाह साहब, क्या हाल है? आज तो नहीं कॉल कटेगी?
1: नहीं, अब कॉल क्यों कटेगी? अच्छा, तो मेरा कसूर नहीं, आपके पिशावर में और पंजाब के सिग्नल में बहुत फर्क है सर, उधर पावरफुल बस्टर है, इधर बेकार बस्टर है, बहुत जल्दी बहुत कॉल ड्रॉप हो जाती है।
0: मैंने कहा शायद कह रहे हैं आपके पंजाब वाले जो है ना, इधर के पिशावर के सिग्नल जानबूझ के गिरा देते हैं।
1: ना, वो तो इधर पिशावर के तो सिग्नल बेकार है, पिशावर में बेकार है सिग्नल।
0: हाँ, वहाँ पे एक्चुअली पहाड़ी इलाका ना, तो सिग्नल टूट जाते हैं। बताएं कैसे हैं शाह जी, आप खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का
1: बड़ा। तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, बस मैंने कहा वैसे आपसे बार बार फोन कर रहा, आप फोन नहीं उठा रहे थे, मैंने कहा किस्मत की बात है, उठा ली नहीं,
0: मैं उठा लिया देख ले मैंने।
1: और तबीयत ठीक है आपकी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: बस मैंने डायरेक्ट फोन किया, मैंने आपके कोई टॉपिक वगैरह नहीं सुने, बट डायरेक्ट मैंने
0: फोन किया है। कोई बात नहीं, आपने फोन कर लिया, इतना ही बात है जी।
1: इसी दिन मैं चक्कर लगाऊंगा ना, और इंशाल्लाह
0: मैं इसी में खुश हूँ आपकी कॉल आई,
1: फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा।
0: डन डन डन डन डन।
1: मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर।
0: शाह जी
1: मजाक नहीं करते,
0: मैं आपसे बड़ी अकीदत रखता हूँ, बड़ी मेहरबानी।
1: मैं रेडियो बहुत बचपन में, रेडियो का बहुत शौकी था बचपन में, तो ये मैं रेडियो वगैरह सुनता था ना, मेरा बाप दोहा का से मेरे लिए वो बाल वाले नहीं है वो रेडियो लेकर आया था, लेकिन मेरे ये काम था कि मैं उसको खराब कर देता था उसी टाइम।
0: अच्छा,
1: तो उसके बाद फिर मुझे रेडियो नहीं मिला, फिर हमारी गरीबी थी सर, बस किस्मत की बात है, गरीबी थी, और फिर उसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं मिला।
0: आप अमीर हैं, दिल के अमीर हैं
1: जी सर,
0: बस दिल के अमीर हैं।
1: फिर मैंने आपका वो ये प्रोग्राम सुन लिया पहली मरतबा, तो मैंने कहा मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई, इससे मैं आपके पीछे फोन कर रहा हूँ बार बार।
0: मुझे यकीन करें बड़ा अच्छा लगता है, मुझे फिर इंतजार भी रहता है आपकी कॉल ना आए ना, कुछ लोग हैं जिनकी कॉल ना आए तो मैं सोचता हूँ ये कॉल क्यों नहीं आई।
1: जी सर, लाहौर के माशाल्लाह लोग भी बहुत प्यारे हैं ना, मीठी लोग हैं वो, तो मुझे पता है।
0: आपकी मेहरबानी है,
1: ठीक है सर,
0: बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया
1: सर, टाइम देने का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सबको, मेरा
0: बड़ी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। दाऊद शाह साहब थे, और यहाँ पे मैं गाना पहला प्ले करूंगा। आई रियली वांटेड टू प्ले दिस ट्रैक। ये जीशान, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, वालेकुम अस्सलाम। जाते जाते मैं छेड़ता जाऊं, रेड कलर जो है ना जी, रेड कलर की आप बात करते हैं, रेड कलर आपने देखा होगा, रेड कलर इज ऑल्सो ए सिंबल ऑफ एंगर, ऑल्सो ए सिंबल ऑफ लव, मोहब्बत को भी और खतरे को भी लाल रंग में देखा जाता है। एक्साइटमेंट होती है इसमें बहुत ज़्यादा, गुस्सा भी होता है, पैशन भी होता है, रेड डेंजर भी होता है, लव बे इंतहा मोहब्बत का निशान भी होता है। इसीलिए रेड रेड कलर के इमोजीज भेजे जा रहे होते हैं, चैट करते हुए कभी हार्ट भेजा जाता है, कभी दिल आंखों में आए होते हैं, और साथ बंदा लिख रहा होता है ट्रस्ट मी आई एम नॉट लाइंग, देख के अच्छा लगता है, बार बार तुम्हें देखना अच्छा लगता है, दिल करता है देखूं तुम्हें, फिर आगे एतबार नहीं होता ना, शुरू शुरू में मामला ऐसे होते हैं, बंदा फिर कहता है अच्छा चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा। Don't go anywhere, I'll catch you back after this track. A beautiful number by Junaid Jamshed. This is for you. Don't go anywhere.

मुझे अफसोस है सोना कि मेरी नज़्म से होकर गुजरते वक्त बारिश में परेशानी हुई तुमको। बड़े बेवक्त आते हैं यहाँ सावन, मेरी नज़्मों को गलियां यूं भी अक्सर भीगी रहती हैं। कई गड्ढों में पानी जमा रहता है, अगर पांव पड़े तो मौच आ जाने का खतरा है। मुझे अफसोस है लेकिन परेशानी हुई तुमको कि मेरी नज़्म में कुछ रोशनी कम है। गुजरते वक्त दहलीजों के पत्थर भी नहीं दिखते कि मेरे पांव के नाखून कई बार टूटे हैं। हुई मुद्दत के चुराहे पे अब बिजली का खंभा भी नहीं जलता। परेशानी हुई तुमको, मुझे अफसोस है सचमुच। बड़े बेवक्त आते हैं यहां सावन, बड़ा बेवक्त आता है ये सावन। वक्त हो चुका है 11:01 एंड लेट मी चेक। ओके, आई न्यू दिस। वहां पे खबरों का वॉल्यूम काफी कम था इस्लामाबाद में, वहां पे वॉल्यूम सेट करवाए जाके। चेक करें

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वी आर ट्राइंग टू फिक्स समथिंग। शौकत होतानी ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। विकास अहमद नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। आज हम बात कर रहे हैं रंगों के बारे में, और रंगों के बारे में बात करते हुए साइकोलॉजी ऑफ कलर में दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, एंड डेफिनेटली हम इस पर बात करेंगे रंगों पर चलते हुए, इसमें इमोशंस और कंपैटिबिलिटी पर भी जाके बात करेंगे, और किस रंग को किस तरह के लोग पसंद होते हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये कोई बड़ी वो श्योर किस्म की बात नहीं होती कि हाँ जी जो उसमें कहा गया है वो वही है। कुछ लोगों में डिफरेंट होती है, कुछ लोगों में बिल्कुल उसी तरह की ये चीज पाई भी जाती है। तो रेड के बारे में अभी मोटी मोटी सी बात करते हैं, एक्साइटमेंट एंड पैशन के बारे में। अगर रेड की बात करें तो एक्साइटेड और पैशनेट किस्म के लोग होते हैं ना जी, और इन द सेम टाइम जिन्हें रेड कलर पसंद होता है उनमें गुस्से की भी झलक काफी ज्यादा पाई जाती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट ब्लू कलर, तो ब्लू कलर वैसे प्रोफेशनली यूज भी किया जाता है। आप कंपनीज को देखें, आप मल्टीनेशनल कंपनीज को देखें, तो वहाँ पे भी आपको ब्लू का ब्लेंड लाजमी नज़र आ रहा होता है। लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ा सा चेंज भी आया है, और भी कलर्स ऐड किए हैं, लाइक उन्होंने येलो एंड येलोश ऑरेंज से येलो का ब्लेंड करके भी इस्तेमाल करना शुरू किया। और ब्लू जो है, ब्लू के बारे में कहा जाता है बड़ी काम किस्म के, बड़े ठंडे ठंडे मिजाज के लोग होते हैं जिन्हें ब्लू पसंद होता है, और ट्रस्ट वर्दी इन्हें कहा जाता है, इमोशनली पीसफुल होते हैं, इन्हें बड़ा पीस और सुकून वाली ज़िंदगी पसंद होती है। और ग्रीन कलर की अगर बात करें, जिन्हें ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बड़ा हीलिंग फैक्टर रखते हैं। व्हेन यू टॉक टू दैट पर्सन, तो वो आपसे बड़ी इस तरह की बातें, अच्छी अच्छी सी बातें करेगा, जिससे आपको यू स्टार्ट फीलिंग हील्ड एंड पीस, और आपको लाइफ में उनकी बैलेंस भी नज़र आता है। ओके ठीक है जी, ओके कंटेन द म्यूजिक, ओके डन करें जी, डन करें, ओके डन करें जी। लाइव ब्रॉडकास्ट डिसेबल हुई, स्ट्राइक आई, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे फिर दोहराता जाता हूँ, यू कैन कॉल मी एनी टाइम व्हेन एवर यू वांट टू, 0422111001, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए नंबर मैंने अनाउंस कर दिया, और अभी जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उस क्वेश्चन का आंसर आपने कॉल पे देना है। मैसेज पे देंगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको पार्टिसिपेटेड कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा वैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करना चाहें तो अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सेस टू योर इंटरनेट। इन केस अगर फर्ज करें किसी कॉल वगैरह में या कोई इस तरह का नहीं आता, फिर मैं मैसेजेस में देख लूँगा जिन्होंने एसएमएस किया होगा कि किसका मैसेज पहले आया, तो फिर उसे हम कंसिडर कर लेंगे इस कंपटीशन में। तो आप अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाके 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखकर भेज दीजिए इसको 4471 पर। बहुत सारे लोग हैं जो इसके बगैर भी भेजते हैं, नाम के बगैर महज बात करनी होती है, नो इशू, आप कर सकते हैं। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट येलो कलर। येलो कलर रिफ्लेक्ट्स द हैप्पीनेस, एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा होता है, ज़्यादातर खुश रहने वाला है। और वैसे भी येलो कलर आज मैंने भी पहना है ना, मुझे भी अच्छी अच्छी फील आ रही है। और अटेंशन जो है ना जी, अटेंशन देते हैं और अटेंशन सीक भी कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर येलो कलर हो जाए ना, बहुत ज़्यादा वो एंजाइटी ट्रिगर करता है, जैसे मेरे जैसे बंदे को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा येलो कलर अगर आप मेरे इर्द गिर्द रखेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे मैं उल्टा हो जाऊँगा, मैं मुमकिन है वॉमिट भी कर दूँ। और ब्लैक कलर की बात करते हैं, ब्लैक कलर इट इज अबाउट मिस्ट्री, वो लोग जिन्हें मिस्ट्री बड़ी अपील करती है, मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें अपील कर रही होती हैं, और बड़ी डीप किस्म की डिस्कशन पसंद करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ पावर एंड प्रोटेक्शन, पावर भी होती है प्रोटेक्शन भी होती है। और वाइट कलर की बात करते हैं, मोटे मोटे रंगों की बात करते हैं, वाइट की बात करें तो वाइट सिंप्लिसिटी, खामोश तबा और पीसफुल लाइफ का सिंबल होता है, पीसफुल लोगों का। ये मोटे मोटे कलर जो हैं जिनकी मैंने बात की, आगे बाहर और भी बेसिक कलर सारे जो हैं उन पर बात करेंगे, तो वो तो आपके साथ मेरी गुफ्तगु चलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम
0: जनाब अली, कौन है हमारे साथ?
1: मैं जी बाबर हूँ।
0: बाबर साहब कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र है
0: सर। क्या
1: मैं आपका प्रोग्राम नहीं सुना, मैं तो कॉल मिला रहा था, मैं सीधी बात करूं।
0: कहां से कॉल कर रहे हैं?
1: लाहौर से बोल रहा हूं। अच्छा। आपसे कोई सवाल कर रहे हैं तो कुछ शक करें।
0: नहीं नहीं आप बताइए। बताइए बताइए सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मामला ठीक है? हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं,
1: बस अल्लाह का शुक्र है।
0: कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस क्या कहना, अकेले हैं, बच्चे बाहर होते हैं, मैं अकेला हूँ यहाँ पे।
0: अच्छा, कितने अरसे से अकेले?
1: मैं तकरीबन 10 साल हो
0: गए। ओके ओके, आप मुझे ये बताएं आपका शगफ क्या है?
1: कुछ नहीं, मैं फारिग हूँ।
0: कोई चीज कुछ तो करते होंगे सारा दिन?
1: रेडियो सुनना, टीवी, खबरें देखना।
0: अच्छा,
1: कॉल मिल जाए तो आपके पास।
0: ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। आपको रंग कौन सा पसंद है?
1: रंग मुझे ग्रीन।
0: ग्रीन कलर, मतलब आपसे कोई बंदा फिर आके बात करे, थोड़ा सा ये इसके हवाले से मैं बात करता हूँ, मेरी करेक्शन भी होती जाए ना। आप क्या समझते हैं ये ग्रीन कलर जिन लोगों को पसंद होता है, आपसे जब आके कोई बात करता है तो आप उसे सलूशन देते हैं, समझाते हैं, हील करने की कोशिश करते हैं उसको?
1: भाजी जितनी कोशिश हो सकती है करके बता देता हूँ उनको, बाकी।
0: और आपको लाइफ बैलेंस्ड गुजारना पसंद है ना, किसी चीज में ज्यादती ना, बैलेंस्ड होनी चाहिए। और
1: आज मतलब आपके पास अगर एक बात कर रहा हूँ कि पैसे है तो बहुत ऊपर चले जाए, कल हाँ। नहीं है तो बहुत नीचे आ जाए, वो गलत बात।
0: बैलेंस्ड लाइफ आपको पसंद? ओके। और पीसफुल सुकून, ना किसी को छेड़े ना छिड़े?
1: ना किसी को छेड़े, मैं अकेला हुआ बताऊँ ना, मैं अकेला हूँ, मेरे काम करने वाला बंदा रखा हुआ है, खाना बनाते हैं, खाते हैं और बैठते हैं, बस बातें।
0: मैं आपके लिए चंद जुमले कहूँ? कुछ नहीं होता कोई किसी के बगैर नहीं मरता, बस एक खालिश बेनाम सी रह जाती है।
1: मेरी वाइफ की भी जो डेथ हुई है 1.5 साल हो
0: गया। कुछ नहीं होता कोई किसी के बगैर नहीं मरता, बस एक खालिश बेनाम सी रह जाती है, थोड़ी उदासी, कुछ सूखे गुलाब, चंद जुमले अन कहे से लम्हे बेजिए से रह जाते हैं, मोहब्बत नहीं रहती हम रह जाते हैं, और मोहब्बत रह भी जाए तो हम मर जाते हैं।
1: है ना? आपका नाम क्या है?
0: मेरा जी असद वैसे नाम है, लेकिन यहाँ पे आरजे डॉक्स के नाम से शो करते हैं।
1: असद भाई, ये जो लास्ट उम्र होती है ना, मैं 72 के करीब
0: जी,
1: इसमें बच्चे बड़े याद आते हैं, जब प्रदेश में हो, पाकिस्तान में हो तो फिर और बात है।
0: बिल्कुल सही,
1: जब प्रदेश में हो ना तो अब वो दुबई में है, बड़े याद आते हैं। मैंने जाना था इस दफा छोटी ईद पे, बस वो ईरान का इधर का झगड़ा बन गया, नहीं जा सका, अल्लाह को नहीं मिली।
0: बिल्कुल सही, आप ऐसे ही समझे, आपका बच्चा ही है यहाँ पे शो करता, आपने आइंदा के बाद जो है ना मेरे साथ रابطے में रहना।
1: बड़ी मेहरबानी आपकी जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आपकी मुश्किलें आसान करे।
0: थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे साथ रابطے में रहना है, कोई दिल की बात, कोई चीज, कोई कुछ भी, एनी थिंग, एनी टाइम।
1: ये किस दिन होता है आपका प्रोग्राम?
0: मेरा बुध और जुमेरात की शब होता है जी।
1: बुध और जुमेरात,
0: हाँ जी, बुध और जुमेरात 10 से 12।
1: ठीक है
0: जी।
1: नाम क्या बताया था आपने?
0: आरजे डॉक्स के नाम से शो करता हूँ, और वैसे नाम मेरा असद है जी।
1: असद साहब,
0: हाँ जी,
1: बड़ी मेहरबानी
0: सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सवाल मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि आजकल हमारे दौर द्वारा चल रहा है मार का हक के हवाले से। सो द क्वेश्चन इज, लफ्ज जो है हमने जो मार्का था, मार्का हक, जिसे बनियानुल मरसूस का नाम दिया गया, ये कुरान मजीद की कौन सी सूरा में है? दिस इज द क्वेश्चन, बनियानुल मरसूस कुरान की किस सूरा में आया है, किस सूरा में और किस आयत में आया है? जो ये बताएगा उसे वेलवीरा कंपनी की तरफ से मिलेगा जी 1000 रुपए का कार्ड, मतलब विल शेयर यू द बैलेंस, आगे आपकी मर्जी, कार्ड डलवाएं ना डलवाएं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कॉल मिलाएं और मेरे साथ रابطہ करें, डू टेल मी। और बाहर उज़ैर होगा या शाह साहब होंगे, दोनों में से कोई एक अंदर अगर आ जाए प्लीज़ मेरे पास इधर, तो वो कॉलर शॉलर जो कोई जीत गया उसका नंबर भी तो लेना है ना जी, दोनों में से एक यहाँ पर आके बैठ जाए जी, यहाँ पे बैठ जाएं। नंबर है जी 04221100101। और आज हम बात कर रहे हैं कलर्स के ऊपर, और कलर्स पे देखे मैंने ग्रीन के हवाले से जो बताया था, वो अभी जो साहब आए उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल एक्यूरेटली उसी तरह से पसंद करते हैं। माजबीन आई है, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जैन बाबा। टेंशन नहीं लेनी आप, कभी नेवी ब्लू कलर पहनी है भाई जान, मेरे लिए ब्लू है ये तो बड़े होने के बाद मुझे समझ आया, ये खवातीन बता रही होती हैं, दिस इज़ नॉट ब्लू, इट इज़ कॉल्ड नेवी ब्लू, दिस इज़ नॉट ब्लू, दिस इज़ कॉल्ड स्काई ब्लू। ऐसे तो कहने ब्लू होता है, सानू तो ब्लू का पता है, हम ये कहते हैं ग्रीन होता है, ये होता है। खवातीन पता नहीं कहाँ से लाती है। चलिए हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
2: जनाब, क्या हाल है?
0: अल्लाह का शुक्र जी। कौन है हमारे साथ?
2: नवाब शाह से हाफिज दुर मोहम्मद खास के लिए।
0: आइए हाफिज साहब, कैसे हैं? खास के लिए साहब खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं जी।
2: अल्लाह के बड़े करम ना हो जी, असद भाई आप ठीक हैं?
0: बड़ी मेहरबानी जी। क्या कहेंगे?
2: प्रोग्राम आपका सुन रहा हूँ, मैंने कहा कॉल लग जाए तो अल्लाह के बड़े करम ना हो से कॉल लग जाए, आपसे बात भी हो गई माशाल्लाह।
0: बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे?
2: आपका सवाल मैंने सही तरह नहीं सुना क्योंकि हमारे पड़ोस में म्यूजिक चल रहा है ना जोर से, इसलिए मैंने आपका सवाल सुना नहीं। मैंने
0: सवाल ये है कि बनियानुल मरसूस जो था ये कौन सी सूरा और कौन सी आयत से?
2: ये सूरह बकरा में है।
0: आयत नंबर क्या है?
2: आयत नंबर तो
0: आप आगाज ही गलत हो गया ना। आगाज ही गलत हो गया। चले कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके।
2: अल्लाह आपको सलामत रखे।
0: बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और पहला जवाब आया गलत आया। ओ यार आरजे मोहसिन, इंसान बनो तुम, तुमने यहाँ पे शो करना है कि नहीं जो तुम इधर टाइप करके लोगों को बताई जा रहे हो? हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ?
3: सफर बात कर रहा हूँ जी दस्का से।
0: जनाब तो सफर साहब कैसे हैं आप?
3: जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए?
0: बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया।
3: हाँ
0: जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी है।
3: चलो अल्लाह ताला आपको ठीक रखे जी
0: जनाब।
3: अच्छा वो आप पूछ रहे थे ना वो बुनियान मरसूस,
0: जी जी जी जी,
3: ये 28 पारा सूरत साफ है और चौथी याद है ये।
0: अच्छा जी,
3: ये सूरत साफ है 28 पारे में,
0: बिल्कुल ठीक है जी।
3: सूरत साफ है इसका नाम और 28 पारा है और चौथी याद है ये।
0: ओके बिल्कुल ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया जी। आप जरा यहीं पर रुकिएगा, आप जरा यहीं पर रुकिएगा, इनका नंबर वगैरह अपना नंबर दीजिएगा जिस पे आपको जायज कैश ईजी पैसा कुछ भी आ सकता हो। एक मिनट कान भाई, कान को नंबर दे, गुस्सा ही कर गए पाए नॉन एयर ही दसन लग गए। ज़हीर अहमद साहब आए हैं जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने तो गाड़ देना इसलिए कहा यहाँ पे नहीं है, गूगल करें ना थोड़ी सी एफर्ट करें। आज भी ठीक कह रही हैं मरीना बिलाल डॉग्स, माय फेवरेट कलर इज रॉयल ब्लू। और कौन लोग हैं आप? पता नहीं खवातीन इतने कलर कहाँ से निकाल कर आती हैं, रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू। अच्छा बात आज करना चाह रहा हूँ, देखें ना कुछ कलर ऐसे होते हैं किसी के लिए खुशी के बायस होते हैं, किसी के लिए ट्रामाटाइजिंग होते हैं। जैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा येलो कलर करते हैं कि दिस इज़ वेरी ट्रामाटाइजिंग फॉर मी। और मैं जो हूँ ना, मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया, मैं उल्टियाँ कर देता हूँ। मतलब कुछ लोगों को झूले लेना बड़ा पसंद है, बॉयज़ में भी, गर्ल्स को तो होता ही है। मैं स्विंग नहीं ले सकता, आप मुझे कहें ना स्विंग लेनी है, मैं नहीं ले सकता, नो वे आई कैन नॉट, मुझे वॉमिट होना शुरू हो जाती है। बाकी झूले लेना तो दूर की बात है। अच्छा हम बात करते हैं जी ब्लैक कलर, साइकोलॉजी ऑफ ब्लैक कलर। अगला क्वेश्चन है, अभी मौजूद है अगला क्वेश्चन, और ये मेरा ख्याल है ऐसे नहीं किया जाए, थोड़ा सा मेरा ख्याल है माजबीन शी सेइंग मेरा नंबर नोट कर ले, मैं यासिर भाई से ले लूंगा। यासिर भाई से ले ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा हम बात करते हैं ब्लैक कलर के बारे में, इट इज अ सिंबल ऑफ फैशन, फैशन के बारे में भी है फैशन, इट इज अ सिंबल ऑफ फियर, एलिगेंस, कमाल खूबसूरत इंप्रेशन आ रहा होता है। और लेकिन उसके साथ साथ ही तन्हाई का भी एक जो है ना इम्पैक्ट दे रहा होता है, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नंबर उनका ले लिया, सही करके लिया, नाम भी ले लिया, और ठीक है इन्हें लेके रख लो। अब मैं जब अभी थोड़ा सा गैप देते हैं ना जी, अब 11:30 पूछूंगा मैं। और इसका तरीकाकार आप ऐसे करेंगे कि जो आएगा ना जी कॉल पे आएगा उससे उसी वक्त पूछूंगा क्वेश्चन, या नहीं आज जैसे पूछ लेते हैं अगली दफा से कर लेते हैं, बदल लेंगे। फेवरेट कलर ऑरेंज है जहीर अहमद साहब, क्या बात, बड़े आपने बच्चों वाले कलर पसंद किए, माल्टे शाल्टे खाते रहते हैं आप। अच्छा फिर इसके अलावा जी टेलिंग यू द साइकोलॉजी मेन मेन फीचर, इस पर बात करते हैं। पावर एंड मिस्ट्री एंड कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं रेड कलर माजबीन, क्या शोख मजाज किस्म की हैं आप, इसका मतलब आपके अंदर की शोखियाँ जो है ना अभी आपने कंट्रोल करके दबा ली हैं, जो कहीं ना कहीं पुराने दोस्त हैं कोई ऐसे जिनके साथ आपकी फ्रेंकनेस होती होगी ज़रूर बाहर निकलती होगी। और इमोशनल डेप्थ होती है जी ब्लैक कलर की बात करें, इसीलिए ब्लैक कलर आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं, क्योंकि एलिगेंस फैशन और पावर एंड मिस्ट्री एंड कंट्रोल और इमोशनल डेप्थ रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जी। और लग्जरी जितनी कार्स आप देखते हैं ब्लैक कलर जो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होता है जी। और ब्लैक कलर जो है ना जी जिन लोगों को पसंद है आप उनमें एक और चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप में से किसी को पसंद है, आपका मैसेज पढ़ लिया जैन भाई, पढ़ लिया मैंने, उन्हें तो पढ़े भाई जी। अच्छा ब्लैक कलर के बारे में बात कर रहा था, जो ब्लैक कलर पसंद करते हैं वो टेंशन सीख नहीं करते, मांगते नहीं है, रंग ही ऐसा वो अपनी अटेंशन खुद ही ले लेता है। और कुछ ऐसे ऑब्सेस्ड होते हैं उनकी अगर आप वार्डरोब खोलेंगे ना 80% कपड़े आपको ब्लैक मिलेंगे, 10% जो डार्क ग्रे मिलेंगे और बाकी जो 10 होते हैं वो भी काले ही मिलेंगे। अच्छा बात करते हैं इमोशनली डीप होने के बारे में ना, इन लोगों के बारे में अगर बात की जाए जो काले रंग को पसंद करते हैं ना, बड़ी रुखी रुखी सूखी सूखी और खाली बातें नहीं पसंद, जिसमें इमोशंस नहीं होते, इन्हें बड़ी डीप टॉक किस्म पसंद होती हैं, बातें बड़ी डीप सी उलझने वाली शायराना सी गहरी सी बातें, और लेट नाइट कन्वर्सेशन ये बड़ी पसंद करते हैं, और इमोशनल ऑनेस्टी जो होती है ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इमोशनल ऑनेस्टी एटलीस्ट जो कह रहे हैं वो ठीक होना चाहिए और आपकी बातों को ना वो जज कर रहे होते हैं इन द सेम टाइम, और बड़े सिलेक्टिव होते हैं पर्सनैलिटी के हवाले से, ओपन नहीं होते और हर किसी क्लोज भी नहीं हो जाते, और इनका कम्फर्ट जोन जो होता है ना वो कुछ लोगों के साथ ही बनता है सिर्फ। सो आगे भी इस पे बात करते हैं ब्लैक कलर पे, कुछ मैं मैसेजेस पढ़ लूँ। 4471 के अब्दुल नूर हाशमी साहब ने रिवाज गार्डन से मैसेज किया, डियर डॉक्स आदाब तस्लीम जी, शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। वाह बहुत आला नवाल, ये उदास लोगों का शहर है, यहाँ मुस्कुराने की जिद न कर, पता नहीं किस शहर में रहती हैं आप। चलें सलाम मोहब्बत में आसमा कैसे हैं आप, चांद मैं ठीक हूँ, आप बताइए चंदा कैसी हैं, जब से देखा है आपको हाय अल्लाह आंखें तब से सरूर में हैं, ये शायरी मेरा ख्याल है लिखी है। अच्छा आई हैव नो टच मोबाइल, लास्ट वीक किसी के मोबाइल से आपको देखा है और तब से आंखें अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, हाय अल्लाह मुझे शर्म आ रही है। अच्छा चांद आप जिस भी रंग में हैं बहुत सजते हैं, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे। यार एक काम तो करें, मेरी गाड़ी के अंदर से ही वो तो निकाल के लाएं, गियर बॉक्स में पड़ी होगी, ये चाबी लेके जाएंगे तो निकालेंगे, वैसे नहीं खुलती गाड़ी। याद कीस वहां देखो, वहां पड़ी ये पड़ी है। थैंक यू वेरी मच असमा जी। और तितली ने लाहौर से बड़े दिनों के बाद मैसेज किया, इस्लाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेरी नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। अमल जारा, लोग कहते हैं क्या तू क्या खफा है मुझसे, तेरी आंखें नहीं तेरी आंखों ने कुछ कहा मुझसे। अच्छा असमा कहती हैं, चांद आप जो भी बोलें बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा सा, और आपका पंजाबी लहजा तो क्या कहूँ, सदके जावा। अच्छा मैं कार ना जावा, इतनी तरीफा ना करो। अच्छा जी हाफिज़ा सिद्रा कुरैशी हैं रावलपिंडी से, सुन रही हैं, कहती हैं कई गांव अच्छा मंदरा से, सर कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़, आपका हुस्न समात है, खुश रहिए आबाद रहिए सर। ज़िशान नासर सर का शो कब आएगा, मेरे शो के बाद करेगा ज़िशान शो, और वो 12 से ऑनवर्ड करते हैं जी, और फिर कहते हैं बट वो नहीं आया, हो सकता है कहीं पे बिजी होगा इसलिए नहीं आया होगा, वरना वो शो मिस नहीं करता ऐसे। तो 12 बजे शो करेगा जिशांत, तो आप अगर जिशांत को सुनना चाहते हैं 12 बजे ज़रूर सुनिए। सच अ लवली पर्सन, सच अ लवली बडी, मेरा छोटा भाई है। अब यहाँ पे एक गाना लगाता हूँ मैं, आई वांट टू प्ले अ ट्रैक, अ स्मूद वन, अ लवली वन, अगेन अ ब्लेंड ऑफ टर्किश म्यूजिक अरेबिक टच के साथ और मिक्स उर्दू, डेडिकेशन टू जुनैद जमशेद अगेन। ओ सनम सनम सनम, अरबी एंड उर्दू ब्लेंड। ओ यार इट्स सो लवली यार, दिस इज अगेन फॉर यू यार। वो गाने तो आप मुझे बता रहे होते हैं जो आप सुनते रहते हैं, मैं सोचा मैं वो गाने लगाऊं अब आपके लिए जो आप नहीं सुनते। कमाल यार मेलोडी आला, तेरी सरगोशी मेरी मदहोश हाय, तेरी सरगोशी। मुझे आज भी याद है वो पहली मर्तबा यूं साथ चलते हुए अचानक से मेरा हाथ तेरे हाथ से टकराया था। वो महज हाथ नहीं टकराए थे, यूं लगा था जैसे दो कहकशाएं टकरा गई हो और एक जोरदार धमाका हुआ था। मेरे अंदर ना जाने कितने ख्वाब बने और टूटे, और उनकी मुस्कुराहट से मेरे चेहरे की रंगत बदलना शुरू हुई। तुमने मुझे देखा और मुस्कुरा दी, फिर मुझे लगा कि हाँ सिर्फ कहकशाएं मेरी ही रंग नहीं बदलती। ओ सनम ओ सनम, दिस इज आज़ डॉक्स, आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आज़ डॉक्स, डोंट गो एनीवेयर एंड यू कैन कॉल मी 04221100101। आपका मेरा साथ होता है बुध जुमेरात की शब 10 से 12। सनम सनम सनम, घर में मेरे फैला हुआ यही सामा है ना माज

ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:30 और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आज है जी 14 मई 2026 का सिन है, और आज के दिन हम ने स्टार्ट किया है साइकोलॉजी ऑफ कलर पे बात कर रहे हैं, और हम मुख्तलिफ कलर्स पे बात करेंगे, पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर बात करेंगे, और आगे कोशिश करूँगा कि मैं कंपैटिबिलिटी के ऊपर भी बात करूँ। आई लव दैट ट्रैक, आई होप आप लोगों को पसंद आया। नहीं आया तो क्यों नहीं आया, आना चाहिए था। मस्त गाना, मस्त मस्त हैवी करके मस्त गाना, मुझे तो बड़ा पसंद आया। आई लव दैट ना। अगला गाना भी मैं मस्त वाला चलाने वाला हूँ, मस्त गाना। चासा आएगी 5000 साल बाद कॉल मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, फिजा मिल जाती है कॉल, क्यों नहीं मिलती। अच्छा जी, कुछ मैं मैसेजेस 4471 के मैसेजेस पढ़ लूँ, फिर आगे बात करते हैं। चलते हैं, आज ब्लैक कलर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। किसी ने मैसेज किया, दादी नहीं रही, बोलकर 14 दिन की छुट्टी ली थी, जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई दादी सच में चल बसी। अहमद अली फ्रॉम नसरत जई। दिस इज़ वेरी सैड। और जिस तरह पहले गालिबन सबसे पहले कॉलर थे उन्होंने अपनी वाइफ का जिक्र किया, दिस इज़ वेरी सैड। मैंने जानबूझ के जो है ना उस पर थोड़ा सा कमेंट नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी वो अकेले आप सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं भी अकेले ही जाऊँगा। बड़ा अफसोस हुआ यार सुन के अहमद, कोई बात नहीं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अगला मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई। सोबिया नसीर कराची से, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं। नाइस शो, सब सुनने वालों को सलाम, दुआ में याद रखना, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और फिर आगे जी अली मलिक ने सलाम किया, कहते हैं भेरा से बात कर रहा हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है, 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। ओ ये मेरा छोटा भाई, कैसा है अली, कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ भी रहे हो या सिर्फ रेडियो सुनने भी ध्यान रखा हुआ है। सुंदर से कहती हैं ब्लैक के बारे में बताइए, बता तो रहा हूँ। अदनूर हाशमी साहब, ये सूरह अल-साफ है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। और मेहर फातिमा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, आप बताओ मुल्तान का मौसम कैसा है। सर मेरा फेवरेट कलर ब्लैक और वाइट है, और वाइट है एक ही गाल लो। अच्छा लेट्स मूव ऑन जी, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें इनकी नेचर के बारे में ना जी, ब्लैक कलर लवर्स जो होते हैं इमोशनली गार्डेड होते हैं, इमोशनली गार्डेड इस तरह से होते हैं, वो जिस तरह जंगों में नहीं अपने ऊपर ज़रा पहन ली जाती है, और सर के ऊपर वो पहन लिया जाता है एक टोपी सी, जिससे खौल पहन लिया जाता है, ना तलवार हिट करे और इस तरह से कोई इफेक्ट ना हो। ब्लैक कलर लवर भी ऐसे ही होते हैं, आउटसाइड इनकी बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन अंदर से एक्चुअली दे आर वेरी सेंसिटिव कलर, सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं, और इन्हें फेक किस्म के लोग पसंद नहीं होते। और इंस्टेंटली ना ये फेक कलर के लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं, वो अलग बात है कभी इजहार करके बताएं या ना बताएं। और ना ही इन्हें ओवर एक्टिंग करने वाले पसंद हैं, फेक किस्म का फ्लैक्स मारने वाले पसंद हैं, और ना ही अननेसेसरी किस्म का ड्रामा इन्हें पसंद आता है, कि फजूली ड्रामा ही लाइफ में चले जाए वो भी नहीं पसंद करते। आ गई वो, आ गई, इंटरनेट का बड़ा मसला आ रहा था मुझे जी, मैंने कहा अपनी बंगाल माशाल्लाह, ये तो मुझे लगा सी प्रोग्राम मुक्कन के बाद ही आएगी। और ब्लैक कलर जो पसंद करने वाले हैं ना, इनके बारे में एक और चीज़ नोटिस की गई है, रात को जो सोने का टाइम होता है ना, उसमें बहुत सारे स्नैरियो बना रहे होते हैं ना जी, कुछ चीज़ों को ओवरथिंक भी कर रहे होते हैं, सो वी कैन कॉल देम अ बेट ऑफ ओवरथिंकर, क्योंकि इमेजिनेशन में जाकर बहुत सारी चीज़ों को ये इमेजिन भी कर रहे होते हैं, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे हो जाए तो क्या हो, ये ऐसे हो जाए तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें भी इनकी लाइफ में चल रही होती हैं। और फिर ये अपनी पेन को हाइड करते भी हैं, कोशिश करते हैं, और इनसिक्योरिटीज़ जो होती हैं कोशिश करते हैं उन्हें रिफ्लेक्ट ना करें, उन्हें भी जाहिर ना करें। और इमोशनली क्योस जो होता है, यानी आपके अंदर मेरे अंदर बहुत सारे कभी क्योस चल रहा होता है, बड़ा किस्म का मामला, बहुत सारे ख्याल आपस में उलझ रहे होते हैं, तो उन्हें भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी दबा लेते हैं।

0: कोशिश करते हैं किसी को ना बताएं और अपने अंदर छुपा के रखें, और अक्सर दिल शिल भी टूट जाता है। बताऊंगा ऐसे कैसे, वाजबीन आप कह रही हैं रेड के बारे में बताऊं, बताऊंगा ना, ऐसे थोड़ी है। एक तो फ्री ये क्या बात है, आपको चाहिए आप 1000 रुपये का मुझे लोड भेजे करके टेल मी अबाउट रेड कलर, देन आई विल टेल यू अबाउट रेड कलर, ऐसे थोड़ी होता है, मेहनत करनी पड़ती है यार। ओके लेट मी रीड सम मैसेजेस एज वेल जी। नवाल लाहौर में रहती हूँ भाई, आप कहाँ से हैं? मैं भी लाहौर से हूँ जी। आज किधर जंतरी मंत्री खोल लिया आपने, है ना? मैं वो खोल ली, मैंने कहा जंतरी मंत्रियाँ भी थोड़ी सी खोल लेनी चाहिए, ज़रूरी होता है, थोड़ा थोड़ा इस पर बात करते हैं, मतलब इस तरह के मौजूद भी अच्छे होते हैं। शकील अहमद लाहौर से, डियर डॉग सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इंटरनेशनल रिश्ते करवाने वाले आरजे भाई आरजे बाजी लिख दिया, शो का नाम नाइट थेरेपी चेंज करके इंटरनेशनल कपल मेकर रख लें। ओके सर, डन करें, आपके लिए ये भी कर लेंगे, आप बताएं तो सही अच्छा टेलीपैथी रीड की है माजबीन, फिर प्लीज है, मैं कल से कोई अंदर शो में टोपी शोपी पहन के आऊंगा जिससे मेरे जो है ना आप माइंड रीड ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कुछ लाइन है मेरी प्यारी महानूर के लिए प्लीज, आज गाना ही लगा दिया मैंने, मेरी हर सांस की खुशबू में महानूर बसी है, हाय अल्लाह डाडा ही आशक है, मेरी हर धड़कन की दुनिया में महानूर बसी है, मैं जिधर भी देखता हूँ तेरा चेहरा नजर आए, जैसे मेरी हर राह की मंजिल महानूर बनी है, होए होए होए होए, मैं जो कुछ कहूँ तेरा प्यार महसूस होता है, लगता है हर लुकमा तेरे प्यारे हाथों से सजा है, होए होए होए, मैं जब सोऊं तो मेरी नींदों में तेरा नूर उतरता है, मैं जब जागूं तो मेरे ख्यालों पर तेरा ही पहरा होता है, वाह वाह वाह वाह, आशिक फुल हैवी करके आशिक, और नूर परी तो नहीं कोई साली, मेरी तनहा रातों की चांदनी भी तू, मेरी सुबह की पहली दुआ भी तू, मैं जहां भी रहूं तेरा एहसास साथ रहता है, मेरे दिल के हर कोने में सिर्फ महानूर रहती है, ये दिल दे कोने कितों आंदे ने, ये दिल चकोर तो नहीं बना के रखा हुआ आपने ये भी ठीक है, और एक सच तो मेरी रूह से निकलता है, जहां महानूर होती है वहीं काशान की पूरी दुनिया बसती है, आए हाय। माजवीन कह रही है सर 1000 का लोड भेज दिया, नाउ यू आर ओवरलोडेड कहती है आपको माइंड रीड किया तो आपके शो में हूं, थैंक यू वेरी मच, फिर लगता है अच्छी स्टेट में होंगे ना इसलिए आपने रीड तब किया या अल्लाह तेरा शुक्र, इज्जत बच गई। मेहर कहती है हम जो तुमसे मिले इत्तफाक थोड़ी है, मिलकर तुमको छोड़ दे मजाक थोड़ी है, अगर होती तुमसे मोहब्बत एक हद तक तो छोड़ देते, पर हमारी तुमसे मोहब्बत का कोई हिसाब थोड़ी है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत आला। सलाम कैसे हैं आप? अच्छा लगा आपको सुनकर, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा मुझे सुनकर, लेट मी टेक ए कॉल। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
1: मैं दोबारा आ गया हूँ जनाब
0: जी।
1: हेलो
0: जी जी जी जी,
1: तो नहीं लगा?
0: नहीं नहीं, मैं हैरान जरूर हूँ आपकी फिर कॉल मिल गई, लोग कहते हैं कॉल नहीं मिलती, चले बताइए सर।
1: अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक, क्वेश्चन करें क्या उठा है आपका?
0: सर क्वेश्चन 2+2 मल्टीप्लाई बाय 2 सर, रॉन्ग आंसर, आप यहाँ पे रुकिएगा, ये आपका मैं नोट कर लेता हूँ जी, एंड पे मैं बताऊंगा इसका आंसर, और फिर आपका नंबर आ गया जी सर, ठीक है सर, आप सुन रहे हैं? हाँ बस सुनते रहिएगा सर, थैंक यू वेरी मच। आहा विल टेल यू सम अदर डे, माजबीन ऐसी बातें नहीं करें आप। अच्छा अब ब्लैक के ऊपर हम बात करें, कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, तो ओके मैच्योर किस्म के लोग होते हैं और ज़्यादा मैच्योर प्रिटेंड करते हैं, और अट्रैक्टिव किस्म के लोग भी होते हैं क्योंकि मिस्टीरियस किस्म की होती है पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है इनमें, और जितना एक्चुअली होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखा रहे होते हैं, और इन्हें ज़्यादा ब्लैक कलर की चीज़ें फील अच्छा देती हैं। और इनके बारे में मैं अब आपको क्या बताऊं, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए ना जी, किसी के साथ अगर ताल्लुक में हो तो ये लॉयल होते हैं और इमोशनली बड़े हैवी किस्म के इंटेंस इमोशनल होते हैं, डीपली अटैच हो जाते हैं, और पोजेसिव भी हैवी किस्म के होते हैं। सो ये फिर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, पोजेसिवनेस आजकल जो है ना, फिर बंदा टॉक्सिक, कभी रेड फ्लैग, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह दिया जाता है उनके बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
2: जी, मैं लाहौर से रिमशा भाई, कैसे हैं?
0: क्या हाल है रिमशा? हेलो
2: जी, जी आपको मेरी आवाज आ रही है?
0: जी जी जी
2: जी, मैं लाहौर से रिमशा, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक, आप बताओ।
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आपको कौन सा कलर पसंद है
2: भाई? मुझे दो कलर पसंद है, ब्लैक और मेहरून।
0: मेहरून होता है
2: जी?
0: मैं तो कहा था सिर्फ रेड होता है। रेड के कितने शेड होते हैं पहले मुझे बताओ।
2: नहीं, एक रेड होता है, मतलब रेड जो होता है, जो आप जिसको हम एप्पल कलर भी कहते हैं, ठीक है। एक मेहरून होता है, उससे सबसे ज्यादा गहरा होता है।
0: अच्छा, जो उससे भी ज्यादा गहरा होता है।
2: जी बिल्कुल, उसे मेहरून कलर कहते हैं।
0: हाँ,
2: मुझे ये दो कलर बहुत पसंद है।
0: और इससे अगर रेड से थोड़ा सा लाइट हो फिर कौन सा होता है?
2: ज्यादा मुझे कलर की ज्यादा पहचान तो नहीं है, लेकिन
0: नहीं, एक होता है वो, कौन सा है जी? ये फ्लावर रेड है, ये ब्लड रेड है, इस तरह की सेग्रीगेशंस भी आ रही होती है।
2: लेकिन ना मुझे जो कलर मैं सबसे ज्यादा पहनती हूँ, ज्यादा रंगों की मैं वो नहीं करती, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो रंग ये पसंद, मुझे पता चल जाता है कि ये रंग जो है ना रेड कलर है, और ऐसे जो थोड़ा सा ये हल्का रंग, हल्का सा पिंक, पिंक सा जिसको कहते हैं, वो ऐसे ऐसे कलर मुझे पसंद है, ज्यादा रंगों की डिटेल नहीं है मेरे पास।
0: ओके, माजबीन आप सुन रही हैं, मैं चाहूंगा जरा थोड़े से शेड बताए ना, रेड में कौन कौन से हैं और ब्लू के भी शेड मुझे आपने बताने। अच्छा, आपको ब्लैक भी पसंद है और रेड भी पसंद है?
2: जी बिल्कुल।
0: ब्लैक के बारे में जो मैंने बताया वो आपने सुना है? ब्लैक के बारे में जो बताया वो सुना है
2: जी, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दें।
0: कहते हैं ब्लैक को जो है ना, फेक किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो पहचान लेते हैं ये ड्रामे कर रहा है। पहचान लेती हो आप?
2: मैं पहचान लेती हूँ उसके, मतलब बोलने के अंदाज से उसको पहचान जाती हूँ कि ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है, ड्रामे कर रहा है।
0: और आपको बड़ी इमोशनल गहरी किस्म की बातें कभी कभी पसंद आ रही होती हैं, क्योंकि आपको इतने कलर पसंद है, इमोशनल किस्म की अटैचमेंट।
2: जी बिल्कुल।
0: बड़ी गल है, बड़ी गल है। और रात को सोचती भी है लेट के, अगर ऐसे हो तो कैसे हो?
2: बिल्कुल ऐसे ही है,
0: है ना? मैं पास हो
2: गया।
0: चले, मैं अभी आपको, मैं अभी आपको जो बताऊंगा ना जी, और किस कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन, जो ब्लैक लवर होते हैं ना, उनको अगर किस कलर जो पसंद करता हो, मतलब काला रंग आपको पसंद है, आप अगर ब्लू के साथ हैं तो कैसे आपका इमोशनल मैच कहते हैं ज़्यादा अच्छा बनेगा, अगर आपके पार्टनर को ब्लू कलर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ब्लू कलर सुकून देता है। और
2: अगर मैं आपको सही बताऊं, जो मेरे वो हैं उनको ब्लू कलर बहुत पसंद
0: है। अल्लाह, वो अल्लाह, इसीलिए इमोशनल मैच बड़ा है दोनों का, है ना? अगर इसके बारे में कहा जाता है साइकोलॉजी या कलर्स की बात करें ना, तो इसमें कहते हैं ब्लैक एंड ब्लू लवर जो होते हैं, इनका इमोशनल मैच बड़ा परफेक्ट बनता है।
2: ओके, आपने मुझे कुछ कर भी दिया, मुझे हंसी आ गई।
0: हाय अल्लाह, शर्मा रही है लड़की, चलो भाग जाओ।
2: ओके
0: माजवीन कहती है, आई एम रीडिंग स्टार साइंस फ्रॉम माय चाइल्डहुड, आई यूज रीड अखबार जहां, तालीम और तरबियत एंड अदर मैगजीन एंड बुक, आई प्रैक्टिस। अच्छा, शमा बीनी टू, ओके, डू टेल मी अबाउट शमा बीनी, उसमें आपने क्या अचीव किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शमा बीनी और मून स्टेयर एंड मेडिटेशन, इन तीनों में आप फर्क मुझे बताएंगी। इल्मदाद भी पढ़ रखी है, वो थोड़ा बहुत है, मैं पढ़ पुढ़ लगता है, किताबें पढ़ने से याद नहीं रहती, नोट्स बनाने पड़ते हैं आप लोगों के लिए। अभी यहाँ पे गाना लगाते हैं, उसके बाद फिर आके कॉल्स लेते हैं, और अगला सवाल जो है जी वो मैं बताए जा रहा हूँ। 2 + 2 × 2 इज इक्वल टू वाट? 2 + 2 × 2 उर्दू में फिर दोहराता हूँ, 2 + 2 × 2। ये मेरा अगला सवाल है, अब आपने इसका जवाब देना है। 2 + 2 × 2 2 + 2 × 2 इज इक्वल टू वाट? चला जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल मेलोडी, ट्रिब्यूट टू आलमगीर। ओ यार कितने जबरदस्त कंपोजिशन है ना यार, आजकल मजा आ रहा है, चासा आ रहा है इन कंपोजिशन का। दिस इज फॉर यू। आप मुझे कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी मैसेज, कोई भी चीज, एनीथिंग यू वांट टू से यू कैन से इट।

Oh yeah. There you go. It's 11:45. This is Ajay Docs. 0421100101 0421100101. वेलवीरा कंपनी की तरफ से ये सेगमेंट है. जो जीतेगा उसको 1000 रुपए का लोड मिलेगा, कार्ड मिलेगा, और उसका नाम फिर मैं अपने फेसबुक पेज पे भी लगाऊंगा जो जीतेंगे. एंड वेलवीरा कंपनी जो लास्ट वीक आए थे मेरे प्रोग्राम में, उनका मैं एंड पे बता भी दूंगा सारी डिटेल्स. उनकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं और खावतीन के लिए प्रोडक्ट्स हैं. जो आजकल आया हुआ है रेटिनल भी है, उनका फेस ग्लो भी है, फेट वाइटनिंग सीरम है. इट्स अ वेरी गुड कंपनी. और इनका क्लेम ये है कि इन्होंने जो फ्रेंचाइज ली हुई है यूके की, फॉर्मुलेशन वहाँ से ली है, और मुझे भी इन्होंने गिफ्ट किया. मैंने अभी ट्राई नहीं किया, एक दिन लगाया था. तो अभी भी वो डील स्टैंड कर रही है जी. RJ Space DOX Docs लिखेंगे, नंबर वगैरह मैं सारा अपने फेसबुक पे दे दूंगा वहां पे जाके, या आप सर्च कर लें वेलवीरा, ठीक है, स्किन केयर, तो आपको मिल जाएगा. इन्हें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और COD पे ऑर्डर कर लें. 50% RJ Space DOX Docs लिखेंगे, 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा. इनसे मैंने एक दो इन्वॉइस मंगाई है कि भाई दिता भी है, इन्होंने इन्वॉइस भेजी है. हाँ जी, वो 4000 समथिंग बन रहा था जिसको 2000 किया उन्होंने. प्रोमो कोड है जी RJ Space DOX Docs. सो द क्वेश्चन इज 2+2 × 2। चलें गाना सुनते हैं. मैरून, ब्लैकिश मैरून, रेडिश मैरून, ऑरेंजिश मैरून, ऑरेंजिश रेड, रेड एंड ब्लड रेड, और भी बड़े हैं. इतने आते हैं तुम लोगों को, पता नहीं कहाँ से ले आते हैं.

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:52 एक और प्रोग्राम सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। एंड क्वेश्चन मैंने आपसे किया है जी, 2+2 × 2 एंड टाइम थोड़ा है, देखते हैं हमारे साथ कौन है जी कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन?
1: आंसर इज मैं।
0: कौन मैं? मैं बकरी। कौन बोल रहा है?
1: हेलो, मुझे आंसर देना।
0: नाम बताएं।
1: मेरा नाम आदर्श।
0: ये आबिश सरताश, क्या हाल? ठीक ठाक हैं आप जी? बताएं क्या आंसर है?
1: सिक्स।
0: क्या?
1: सिक्स।
0: लेकिन ये वो कैलकुलेशन अगर करें, 2+2 × 4 × 2 = 8 नहीं?
1: नहीं, ये आप कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो ये 6 निकलेगा।
0: अच्छा,
1: मैथमेटिकली रूल चेक। हाँ,
0: ओके, शी इज राइट। और बिल्कुल मैथमेटिकल रूल यही है जिसमें मल्टीप्लिकेशन पहले की जाती है, सो 2 × 2 = 4 एंड प्लस 2। आप यहाँ पे लाइन पे रुकिएगा जी। ओके, हमें आज सेकंड जो है ना जी विनर भी मिल गए और इस तरह से आज 2 विनर हमारे मुकम्मल हुए आज के शो के, और अगले शो में भी आएंगे जी। मेहर ने कहा 8 है। नहीं है ना यार, 6 है ना जी। रेडियो सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। तितली, आपने ब्लैक के बारे में जो कहा दुरुस्त कहा, मुझे ब्लैक पसंद है। तितली लाहौर से, गाना अच्छा है। और जवाब 8 है। जवाब बताएंगे 8। जैन भाई क्या हाल है? ठीक है, आप, आपका मैसेज पढ़ लिया मैंने। अच्छा माजबीन, आपके भी पैगाम को मैं पढ़ता हूँ, ज़रा इसे डिटेल में पढ़ते हैं। और ब्लैक के बारे में मैं डिस्कशन को कंक्लूड करता जाऊँ या छोड़ जाऊँ, क्या कहते हैं आप? छट जाइए, लेकिन ब्लैक के बारे में मेरा ख्याल है थोड़ा सा कंक्लूड करता ही जाता हूँ ना ब्लैक के बारे में। ब्लैक अगर हम बात करें, ब्लैक का ब्लू ब्लैक लवर जो है ना, अगर उनका आप कहीं पे पेयर बने ना जी ब्लू लवर्स के साथ, सो इट इज़ अ वेरी परफेक्ट इमोशनल बैलेंस होता है। और निसा नासर चौधरी आए हैं मेरा भाई, किधर हैं आप? बड़े दिनों बाद आए हैं, लगता है आजकल बाहर मसरूफियत ज़्यादा चल रही है, पाकिस्तान वालों को टाइम नहीं दे रहे। 8 है, मल्टीप्लाई पहले करना होता है, रूल ये, प्लस बाद में होता है। तो अच्छा, आई वॉज टेलिंग यू ब्लैक प्लस ब्लू लवर परफेक्ट इमोशनल बैलेंस इसके बारे में कहा जाता है। बट अगर ब्लैक है और उसका पेयर है जी वाइट लवर के साथ, तो ऑपोजिट अट्रैक्शन है, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट चाहिए होती है। एक ब्लैक लवर है, एक वाइट लवर है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले लोग हैं, इसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। और अगर ब्लैक प्लस रेड लवर है दोनों, तो फिर पैशनेट कपल बन सकता है माजबीन, इफ यू देयर। आप बताएं, आपको रेड है, आपको ब्लैक बंदा मिला हो, इंटेंस किस्म का लव, इंटेंस किस्म की लड़ाई झगड़े और इंटेंस किस्म की अटैचमेंट है, अगर ये हो जाए ना, ये बिल्कुल दोनों चल पड़े, तो नेटफ्लिक्स की सीरीज है पूरी। और ब्लैक प्लस येलो की अगर बात की जाए, तो इसमें डिफिकल्टी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इनफैक्ट, क्योंकि येलो का एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई होता है और ब्लैक जो है वो काफी ज्यादा काम, कूल एंड रिलैक्स रहने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे ईगो के मसले आ जाते हैं, सर दर्द, माइग्रेन भी छिड़ जाते होते हैं, झगड़े, सो इट इज़ नॉट दैट मच फेवरेबल ना, थोड़ा सा मुश्किल है ये, ओखा कम है। तो जेमिनाई ने बोला 6 आता है, जेमिनाई ने बोला 6 आता है, बिल्कुल ठीक बोला अगर जेमिनाई ने बोला 6 आता है, क्योंकि ऐसे ही आता है ये। और कॉल ले लेता हूँ मैं। अच्छा, कॉल कट गया, कुछ मैसेजेस में शामिल कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों से जा लेता हूँ, टाइम बड़ा थोड़ा। किंग फजल खान ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कोयटा से सुन रहे हैं, गुलियासीन खान है हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी। दस्तक, योर फेवरेट कलर? माई फेवरेट कलर विल टेल यू, अभी नहीं। लड़का इस्लामाबादी, ओके, प्रोफाइल का लिंक ही कालता मुंडा ने। अहमरजा चौधरी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। बखर से हफीज साहब सुन रहे हैं, रियाज भट्टी साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड, आपकी मोहब्बत है जी। और आशिक खस खाली, ये पढ़ते हैं ना, खास खली, बड़ी मेहरबानी जी, और आपने पैगाम भेजा, बहुत शुक्रिया। नज़ीर खोसो हैं, मानो राजपूत है, इस्लाम की आज डॉक्स वेलकम मैसेज आसम फ्रॉम लाहौर, बहुत शुक्रिया जी। आसम साहब को भी सलाम दीजिएगा मेरी तरफ से। दिलीप कुमार सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। माज अली सलाम किया, जनाब अली प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। माज अली पिशावर से, बड़ी मेहरबानी माज सुनने का। ना नीम से, ना हकीम से, ना किसी आलम से हल होंगे, ये दिल के मसले हैं, उसी जालिम से हल होंगे। अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी नाइस। हेलो एवरीवन, सेक्स आता है, जवाब आपने दिया मगर देर से दिया। ब्लैक के बारे में आज मैंने बात की, और क्योंकि आज थोड़ा थोड़ा सा ज़रा स्टार्ट करना था, थोड़ा मोमेंटम मैंने भी पकड़ना था, मोमेंटम में आना था, तो कोई बात नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। और आगे चल के थोड़ा सा और मैं कलर्स ऐड करके उस पे भी डिस्कशन करता जाऊंगा आप लोगों के साथ। सो अगली जुमेरात को मिलेंगे, फर्दर दो क्वेश्चन होंगे मेरे पास, और जो उनके जवाब देगा तो उन्हें बेनिफिट तो मिलेगा ही ना जी, और रिकॉर्ड भी मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और यहाँ पे मैं गाना लगाया जाता हूँ, कौन सा, कल वाला फिर लगाते हैं। चास आई थी कि नहीं, मुझे तो बड़ी चास आई थी इस गाने की। सर में दर्द हो रहा है, आप जा रहे हैं, जाए जैन भाई, अपना ख्याल रखें। सर जी ऑरेंज का बताओ, आराम आराम से बताऊंगा, एकदम नहीं बताने। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो हेलो, पास आके बोले फोन के, ऊंचा बोलें।

0: हेलो, कल वाला गाना बड़ा मस्त था। कुछ कलर से मैंने आपको बता दिया किस तरह कंपैटिबिलिटी ब्लैक लवर्स की बनती है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है हमारे साथ? जनाब अली मुगल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। अच्छा, बड़ी गाल है।
1: तो आंसर दोनों ऑलरेडी आपकी तरफ आ चुके हैं।
0: हाँ जी,
1: लेकिन कॉल मेरी बहुत ज्यादा लेट लगी है।
0: अच्छा, चले कोई बात नहीं, फिर सही।
1: कोई बात नहीं,
0: अगले प्रोग्राम में सही।
1: हाँ, कोई मजा नहीं है। और आप ठीक है?
0: बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू
0: उस्मान भाई, थैंक यू फॉर योर कॉल जी, बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। दिस इज फॉर यू जैन। जाने मन जाने बा, हेयर यू गो, टेक केयर, बाय बाय। मुलाकात होती है बुध को 10-12। दिस इज आज डॉक साइनिंग ऑफ एंड डू फॉलो मी RJ space DOX डॉक्स।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम मेरे पाकिस्तान, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं एफएम 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं निशान नासर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोधा, साहिवाल, AJK, मरियाजाद, कश्मीर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, जहां जहां पर हमारी आवाज सुनी जा रही है, जहां जहां पर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने के लिए यार। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एफएम 101 चैनल पाकिस्तान। उम्मीद है, दुआ है, यकीन है कि तमाम सुनने वाले बिल्कुल फिट फाट, टिप टॉप सेट, कूल, साउंड एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मेरे यानी के ज़ीशान नासर के बिल्कुल साथ साथ हैं और प्रोग्राम जिसका नाम है 101 इंटरनेशनल, इसको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बुरी खबर यह है कि हेडफोन्स नहीं चल रहे, और अच्छी खबर यह है कि मैं चल रहा हूं। और सुनाए आप लोग कैसे हैं यार, कैसी गुजर रही है जिंदगानी आप लोग? ठीक है, फिट है, कोई टेंशन परेशानी मसला, कोई बंदा शंदा मारना हो बताएं हमें, हम हाजिर हैं सर। खैर जनाब, आज आपके भाई ने एक छोटी सी शरारत की है, वो शरारत क्या की अब से कुछ देर के बाद हम आपको बताएंगे। और हेडफोन्स चल रहे होते ना तो साथ साथ मुझे म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होता तो फिर बहुत मजा आता प्रोग्राम करने का, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मसले हो जाते हैं। अगली दफ़ा मैं घर से आऊँगा तो अपना लेकर आऊँगा साथ। और बहरहाल आप सुनाएं, सेहत तबीयत ठीक है आप लोगों की? फिट हैं आप लोग? कोई टेंशन परेशानी मसला कोई है तो नहीं? है तो बताएं, वो टेंशन नहीं लेनी। मैं बैठा ना तो वेल जनाब, 0511111001 इसके ऊपर आप हमें कॉल करेंगे। कॉल करने के साथ साथ आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आज मैंने भी आप लोगों के साथ करनी है। यार मेरे जो बार्बर हैं उनकी एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो। मुझे ये जानना है कि आप लोग मेरी बातें कितनी याद रखते हैं, और याद रखते भी हैं तो कितनी की याद रखते हैं, आपने मुझे बताना है ठीक है। और अगर आप याद रखते हैं, उसकी वजह यह कि अगर आपको याद होगी वो स्टोरी तो फिर मैं स्टोरी से आगे की कहानी शुरू करूंगा, अगर स्टोरी याद नहीं होगी तो फिर मुझे वो पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अगर याद है तो मुझे जरूर बताएंगे, बताएंगे कैसे आप बताएंगे मुझे ना फेसबुक के ऊपर कमेंट करके। फेसबुक के ऊपर आप जाएं, अगर आपके चेहरे की किताब के ऊपर एक अदद खाता यानी कि अकाउंट मौजूद है फेसबुक के ऊपर, तो आप फेसबुक के ऊपर जाएंगे, वहां पर लिखेंगे ज़ीशान नासर 26 लिखेंगे तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन मुझे, मेरे पास आगे क्या करेंगे आप? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तुम हो। सो हम क्या करेंगे, हम FM 101 चैनल पाकिस्तान का पेज आपको ज्वाइन करवाता हूं। आपने लिखना है FM 101 चैनल पाकिस्तान, जब आप उसको ओपन अप करेंगे ना तो मेरी तस्वीर आ जाएगी, ब्लैक शलवार कमीज के साथ, काली शॉल के साथ, मरून कलर की मैंने वेस्ट कोट पहनी हुई है, बैठी हुई की पिक्चर है मेरी, बड़ी अच्छी पिक्चर, अच्छी मजेदार पिक्चर। तो उसके ऊपर ना नाम लिखा होगा, मेरा नाम लिखा होगा, मेरे प्रोग्राम का नाम लिखा होगा, उसके नीचे आपने कमेंट करना है, कमेंट करके मुझे बताना है। अब मैं गाना प्ले करूंगा, गाना प्ले करके मैं देखूंगा तुम लोगों को याद है कि नहीं याद। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा वो बात बताऊंगा, शरारत जो की है वो बताऊंगा, जिक्र अज़कार करेंगे, सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लेनी। मैं आ गया हूं ना, मुझे पता है बॉस से तुम्हारी नाराजगी हो गई है, जानू तुम्हारी नाराज है, बैलेंस तुम्हारे पास नहीं है, सैलरी तुम्हारी डिले है, बोनस तुम्हारा नहीं आ रहा, ईद सर पे आई खड़ी है, बच्चे कह रहे हैं बकरा चाहिए, लेकिन उनको क्या बताएगा कि अब्बा खुद बकरा भरा हुआ है, और बेगम बेगम का तो पूछो नहीं यार, और जिनकी शादियां नहीं हो रही उनका तो बिल्कुल ही ना पूछो यार। देखो मैं तुम्हारे हर मसले का हल निकाल सकता हूं सिवाय इस मसले के कि शादी नहीं हो रही, क्योंकि वो तो मेरी भी नहीं हो रही। खैर एनीवे, हम गाना प्ले करते हैं, और गाना वही प्ले कर रहा हूं जो ये मेरे दिल की आवाज है। आ तेनू सैर करावा, आ तेनू चिप्स खिलावा, आ तेनू मौज करावा, आ तेनू, हाँ

ये जो लोग कह रहे हैं ना हमें जिशान नहीं याद आ रहा, तो मैं तुम सब लोगों को मुर्गा बनाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो मुझे इंस्टा पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं कि जिशान हमें याद है आपने क्या कहा था, और उन्होंने जो बात बताई है वो बाकी वही बात है जो मैंने बताई थी। लेकिन अगर कुछ लोगों को याद और कुछ को नहीं याद, तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स अच्छे हैं, कुछ स्टूडेंट बुरे हैं। जो बुरे हैं उनको मैं आज मुर्गा बनाऊंगा।

वेल गाइज, आज एक मजेदार न्यूज भी हमारे पास है, वो ये कि आज हमने गाने का प्रीमियर भी करना है। आप लोगों को पता है कि हमेशा मेरा जो रेडियो शो है स्पेसिफिकली, मैं हमेशा इस पे कोशिश करता हूँ कि जो पाकिस्तान का कंटेंट है उसको प्रमोट किया जाए, और जो अच्छा कंटेंट है उसको तो डेफिनेटली प्रमोट किया जाए, बिकॉज दिस इज रेडियो पाकिस्तान, दिस इज माई शो। और इस वक्त हम सुने जा रहे हैं लाहौर, कराची, मुल्तान, पिशावर, सियालकोट, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान के साथ साथ बहुत सारे ममालिक जो कि खलीजी रियासतें हैं उनमें, इवन अगर हम यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की कुछ रियासतों की बात करते हैं, तो सिंस चूंकि ये प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल है तो ये इंटरनेशनली भी सुना जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं इस वक्त FM 101 के स्टेशंस हमारे साथ लिंक्ड कर चुके हैं और हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सुने जा रहे हैं। तो आज एक बड़ा जबरदस्त ट्रैक है जिसका हमने प्रीमियर करना है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो ऑन एयर होगा रेडियो के प्लेटफॉर्म से, मेरे प्रोग्राम से, FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से। और गाना बड़ा जबरदस्त है, मैंने अभी ऑफ द एयर सुना है और मेरी मुलाकात भी हुई है इन सिंगर से। मैं एक्चुअली एक जगह पे परफॉर्म कर रहा था, होस्ट कर रहा था इवेंट को, वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया और मैंने इनसे कहा कि यार आपका ये जो ट्रैक है जब प्रॉपर ऑफिशियल रिलीज होगा तो आप मुझे जरूर दीजिएगा, आपने इतना अच्छा गाया, आपकी आवाज इतनी अच्छी, आप इतने अच्छे फनकार हैं, तो आप डिजर्व करते हैं कि आपका जो गाना है वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाया जाए और लोग उसको सुने, लोग उस तक पहुंचे। और आमिर सुहेल कसूरी साहब हैं जिन्होंने इस गाने को गाया, आपसे कुछ देर के बाद हम वो गाना प्ले करेंगे और देर इज अ सरप्राइज फॉर यू एज वेल। गाना बहुत मजे का है, आपसे कुछ देर के बाद हम डेफिनेटली उसको प्रोग्राम में प्ले करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ तुम लोगों को बातें क्यों नहीं याद रहती हैं?

0: ओके गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और एक बहुत मजे का सरप्राइज मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। और वो होता है ना कि सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की आवाजें, कुछ लोगों की पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि वंस दे जंप इन टू दे ब्रिंग सो मच एनर्जी, दे ब्रिंग सो मच पॉजिटिव वाइब्स विद यू। एंड नन अदर देन डीजे डॉग्स इज एब्सोल्युटली 100% लाइव विद मी। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है?
1: सलाम, क्या हाल है मेरे भाई का?
0: अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं?
1: निकल कर टीवी पे आया हुआ है।
0: अरे सर सर सर सर
1: सर, शेर बन गया मेरा भाई, तो छाया हुआ है रेडियो से निकल कर टीवी पे आया हुआ।
0: आ हा हा, वाह वाह सर, मेरा भाई तो छाया हुआ है रेडियो से निकल के टीवी पे आया हुआ है, बल्कि रेडियो से जाके टीवी से होके वापस रेडियो पे आया हुआ है। सर सर, हमें एक गिला है आपसे।
1: मैंने फिर दिखाया जिया को, मैंने कहा एक्सप्रेशन देख, मतलब कहीं से फील नहीं आएगी कि बंदा पहली दफा ऐसे स्क्रीन पे आके इस तरह से कह रहा है। मैंने कहा बहुत
0: हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो एक दिल से किसी की खुशी या तारीफ या एक वो होता है ना कि आपको कभी किसी की कामयाबी अपनी कामयाबी लगती है, तो वो वाली फील होती है। सर अल्लाह आपको सलामत रखे। सर मुझे पहले मुझे बताएं कि लाहौर का मौसम कैसा?
1: यार मैं कह रहा हूँ मई के अंदर बरसात की फील चल रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं पूछ रहा था कल भी कि मई तुम चाह क्या रहे हो,
0: मतलब सर, तो सर आप हमें मिस नहीं कर रहे?
1: फील देते हो, आए, बहुत मिस कह रहा हूँ।
0: तो सर वो क्वाली नाइट पे वो जो मेरे हिस्से की वेस्ट कोट थी, अच्छा वो मेरे हिस्से की जो वेस्ट कोट थी सर, वो किधर है सर? वो अभी तक है आपकी गाड़ी में टंगी हुई है या नहीं सर?
1: आगे पड़ी है ना, अभी आपको बुलाना है ना। वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग एन इंटर्नशिप प्रोग्राम इन लाहौर।
0: अच्छा,
1: आरजे एंड ब्रॉडकास्टिंग इंटर्नशिप।
0: हां,
1: 2 मंथ्स की, और इसमें हमने इंस्टीट्यूशंस को लिया लूप में, और फिर ओपन भी किया। इसकी एज लिमिट रखी है हमने 28 साल।
0: वाह,
1: वी आर लुकिंग फॉर सम न्यू वॉइसेस, तो नई आवाजें इसी तरह फिर होगी। और उसमें यह है कि हम ब्रॉडकास्ट कैसे करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप खुद को किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, तो उसमें जाहिर है हमने अपने आर्टिस्ट को बुलाना है
0: सर।
1: तो उसमें डेफिनेटली आपने तो आना ही आना, आप
0: सर प्लेयर प्लेयर प्लेयर,
1: तो फिर पूरा नहीं ना होगा, जीशान अगर नहीं आएगा तो फिर।
0: सो हमल सर, सो हमल। अच्छा सर, मुझे दूसरी एक वो बात बताएं, सुने आजकल माशाल्लाह आप एक जो है कॉस्मेटिक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं सर, ये खबरें हमसे उड़ती उड़ती पहुंच रही है सर।
1: मेरा एक फैन था,
0: हाँ,
1: वो बड़े अच्छे से पीछे पड़ा था, वो आ गया ना मेरे शो में, फिर मुझे एंड में जाते पूछता है कि आपने वो करते थे क्वेश्चन पूछते थे पैसे कार्ड वगैरह या लोड करते थे, मैं गरीब हो गया ना, पैसे नहीं है, कहां से दूं मैं हजार का लोड। वो कहता है जी हमारी कंपनी स्पॉन्सर करना चाहती है। मैं कहा बिस्मिल्लाह करें। उसने कहा कितने कार्ड, मैं कहा दो दे दें, दो ले ले हर जुमेरात, मैं कहा बिस्मिल्लाह करूं, ले आओ। मैं कहा यार ओपन,
0: हाँ नहीं तो आपने कहना था ना कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे एक आरजे इस्लामाबाद में भी होता है, अगर आप चाहते हैं तो वहां पर भी अगर आप दो चार रेटिन ऑयल पहुंचा दें वहां पर, तो
1: बड़ी वो कह रहा हूँ ये हो जाएगा।
0: अरे
1: मुझे कहा है, मैंने उसे नाम लिख के दे दिए हैं, उसमें आपका नाम भी लिख के दे दिया।
0: अरे अरे,
1: मैंने भिजवा देना, और वो भी इस पे जो है ना,
0: असल में मैं यही कह रहा था सर कि आप तो चले, आपको तो कॉस्मेटिक ना भी यूज करे तो माशाल्लाह आप प्यारे लगते हैं, हम जैसे लोगों को तो फिर वो करना पड़ता है ना, हमारा मसला ये है।
1: ऐसे नहीं होता मैं अपने वो शुआ दे चक्कर पंजाबी से कहता, मैं लाइट मुंह ऊपर लगाती हूं यार, अच्छा लगना चाहिए मुझे।
0: अच्छा सर, ऐसा है कि आई एम एक्सपेक्टेड टू बी इन लाहौर वेरी सून इंशाल्लाह फॉर एन इवेंट, सो डेफिनेटली आई लेट यू नो, और फिर डेफिनेटली सर मिलते हैं।
1: मतलब आना, बल्कि उस दिन ज़िया भी बात कर रहा था, वुड लव टू।
0: हाँ बिल्कुल, बल्कि उज़ैर का भी मुझे मैसेज आया था ऑन द फेसबुक, एंड ही वाज़ सेइंग दैट वी वर डिस्कसिंग यू ऑन द अदर डे, तो मैंने कहा यार आई एम एक्चुअली मिसिंग यू। बल्कि बड़ा मजे का प्रोग्राम था, आपको याद होगा डेफिनेटली सर।
1: Definitely,
0: yeah. Whenever you will be in Islamabad, do let me know, sir. या आप इधर हो या मैं वहाँ पे हूँ, तो definitely we can plan it, sir.
1: आजकल वो चक्कर लग रहा है, ऐसे आता हूँ रात आया कहीं फिर निकल जाता हूँ, इसी तरह की दौड़ में जरा लग रहा है हालात जो चल रहे हैं उसकी वजह से।
0: अच्छा,
1: लेकिन अगर मैं स्टे करता हूँ ना इधर दो दिन के लिए तो डेफिनेटली यार मीट जाहिर है मिले बगैर तो फिर वापसी नहीं है ना, हाजिरी ना लगे तो फिर कहाँ कबूलियत होगी सजदों की।
0: डन हो गया, प्लान करते हैं सर।
1: बाकी आई एम लिसनिंग, आप गाना लगाए नया गाना।
0: सर सर सर थैंक यू सर, थैंक यू।
1: बहुत सारा प्यार जी, लोग मेरे से पूछते हैं जिशांत भाई कब शो करेंगे, मैं कहता जिशांत भाई ने अगर नहीं किया इसका मतलब है बिजी होंगे, आज करेंगे।
0: अरे अरे सर, सर बहुत शुक्रिया आपके गाने में आने के लिए, इट वाज एक्चुअली इंडीड अ प्लेजर टू हैव यू ऑलवेज सर।
1: लॉट्स ऑफ लव,
0: थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। Alright जी, that was the DJ Dogs with us, और मुझसे पहले यानी कि 10 से 12 जो प्रोग्राम हो रहा था और वो आप सुन रहे थे, वो हो रहा था ऑल द वे फ्रॉम जिंदा दिलाने सिटी लाहौर, और उसको होस्ट कर रहे थे डीजे डॉक्स, और डीजे डॉक्स ने जैसे ही अपना प्रोग्राम खत्म किया एंड ही वाज लिसनिंग टू मी एंड ही जस्ट कॉल बैक। सो यू नो, मैं हमेशा ये बात जिक्र करता हूँ कि दिस इज हाउ यू डू थिंग्स when you get connected with the people, you know, when you have that so much pure form of love na, to phir ye hota hai, matlab hota hai na, do char shows hum kar le, main agar apni baat karun ya you know ek RJ fraternity ki baat karun ya even hum media industry ki bhi baat kare, to yahan pe aksar log pata kya karte hain, ye maine khud hote hue dekha hai ki wo aapko jante bhi hon to kya acha, oh acha acha acha, ya for example aapko sunte bhi hon to acha acha radio, ye wali baat hoti hai, lekin jo banda secure hota hai na aur jo banda actually happy hota hai aapke liye, so wo is चीज से कता है नजर के यार 15-20 मिनट पहले मैं खुद इस स्टेशन के ऊपर ऑन एयर था और अभी एक और प्रेजेंटर प्रोग्राम कर रहा है तो मैं उसको कॉल करके अप्रिशिएट करूं, दिस एक्चुअली टेक्स अ लॉट, सो दैट शोज द कैरेक्टर, दैट शोज द पर्सन ही इज, एंड एज आई ऑलवेज सेज दैट आई ऑलवेज गेट अ सो पॉजिटिव वाइब फ्रॉम हिम, ही इज अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई डेफिनेटली आई बी डूइंग द प्रोग्राम। मुझे अक्सर जिशानियंस कहते भी हैं यार वो आपका जो लाहौर वाला प्रोग्राम था उसमें हमें बहुत हंसी आई थी, बहुत मजा आया, तो डेफिनेटली वादे के मुताबिक डॉग्स भाई, वेर एवर यू विल बी इन इस्लामाबाद डू लेट अस नो, एंड वेर एवर आई विल बी इन लाहौर सो आई विल लेट यू नो, सो विल डेफिनेटली प्लान विद दैट, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कॉलिंग इन, एंड आई होप दैट यू विल बी हैविंग अ नाइस टाइम व्हाइल लिसनिंग टू मी, थैंक यू।

अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार एक बिल्कुल ब्रांड न्यू गाना है, हम उसको आज रेडियो प्रीमियर करेंगे उसका, और आई वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग इन एन इवेंट और वहां पे इन्होंने परफॉर्म किया। तो जब खत्म हुआ वो इवेंट तो मैं इनके पास खुद गया और मैंने कहा यार आपने बहुत अच्छा गाया, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, स्टेज पे आपकी प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है, काफी एनर्जेटिक है माशाल्लाह, तो आपका ये गाना जब ऑफिशियल रिलीज हो तो मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि हम इस गाने को रेडियो पे प्ले करें, ये गाना मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। और जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं दैट इज 101 इंटरनेशनल, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये सुना जा रहा है एंड इंक्लूडिंग बहुत सारे बाहर के ममालिक में भी ये सुना जा रहा है। सो आमिर सुहेल कसूरी साहब ने इस गाने को प्ले किया है, इस गाने को गाया है, इस गाने को बनाया है। आई एम गोइंग टू प्ले द ट्रैक और इस ट्रैक के साथ ना आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी होगा, वो सरप्राइज क्या होगा आपसे कुछ देर के बाद मैं रिवील करूंगा, लेकिन आइए सबसे पहले मिल के इस ट्रैक को सुनते हैं। पाकिस्तान का अपना गाना है, पाकिस्तान का अपना सिंगर है और हम प्राउडली कह सकते हैं भाई दिस सॉन्ग इज द प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज मेड इन पाकिस्तान। तो आप लोगों की प्ले लिस्ट में एक बड़ा जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। And here we go. पहले ट्रैक सुनते हैं फिर आके जरा गपशप लगा।

0: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। और मैंने कहा था कि इस गाने के साथ साथ एक छोटा सा सरप्राइज भी होगा आप लोगों के लिए, और सरप्राइज आप लोगों के लिए ये है कि बेहतरीन ये गाना तौबा तौबा बाय आमिर सुहेल कसूरी साहब ने गाया है, और आमिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आवाज सुन सकते हैं आप मेरी?
1: जी वालेकुम सलाम जीशान भाई, बहुत शुक्रिया सर।
0: अरे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बेहतरीन ट्रैक है और मेरी तो प्लेलिस्ट में शामिल हो रहा है। खास तौर पे जब मैं इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करूंगा बाय मोटरवे, तो बड़ा सूदिंग सा ट्रैक है, बड़ा मजे का ट्रैक है। तो सबसे पहले बताएं थोड़ा सा कैसा फीडबैक आ रहा है, पहला ट्रैक है आपका, दूसरा है, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, लोग आपको जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जरा बताइए अपने बारे में।
1: जी जी शान भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का और मेरे पूरे पाकिस्तान का और अदर कंट्रियों का भी। माशाल्लाह मेरे ये 10 सॉन्ग हो गए हैं।
0: अच्छा,
1: ऊपर आमिर सुहेल कसूरी के नाम से मुख्तलिफ चैनलों पे, टीपी गोल्ड पे भी है। अभी 16 मई को शाइन स्टूडियो पे भी रिलीज हो रहा है। साड़ियां लग गई पंजाबी सॉन्ग है, बहुत अच्छे हैं। तो
0: रिलीज हुआ है, फीडबैक भी अच्छा आ रहा होगा। अब कॉन्सर्ट्स वगैरह की तरफ भी ध्यान है थोड़ा, जो शोज होते हैं लाइव शो, जैसे मेरी मुलाकात जिस तरह के शो पे आपकी हुई थी, उसके अलावा जो शादियों के शोज हो गए, या यू नो इस तरह के जो गाने शादियों में बहुत अच्छे चलते हैं, बड़े बजाए जाते हैं, तो क्या आजकल क्या फिर मसरूफियात है, शोज वगैरह ले रहे हैं?

0: आते भी हैं।
1: नहीं जीशान भाई, लिखते तो राइटर हैं
0: हाँ
1: हमारे इधर रावलपिंडी से, जिनों का सॉन्ग माशाल्लाह बहुत हिट हुआ है,
0: हाँ
1: तुसी वैरियो, जिनों ने
0: हाँ
1: लिखी है
0: हाँ
1: कहते
0: हाँ हाँ
1: साडा यराना नहीं टूट सकदा।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ
1: तो ये सजाद गुल साहब है माशाल्लाह,
0: अच्छा
1: अल्लाह
0: अच्छा अच्छा
1: उनकी जिंदगी करे, वो बहुत
0: आमीन
1: अच्छा लिख
0: आमीन।
1: के दे रहे हैं,
0: हाँ
1: और
0: हाँ हाँ
1: भी बहुत सारे राइटर हैं, तो हम जनाब
0: बेहतरीन बेहतरीन।
1: जी।
0: अच्छा तो मुझे ये बताइए कि ऑडियंस का रिस्पांस कैसा है, जो लोग हैं उसका क्या रिस्पांस है? लोग आपको मैसेजेस कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, तो जाहिर है पसंद तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों की परफॉर्मेंस भी होती है ना, जब आप एज अ सिंगर गाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं यार इस तरह का गाना बनाएं, इस तरह का गाना बनाएं, तो वो थोड़ा सा बताएं अब लोग क्या चाह रहे हैं कि अगला गाना आपका कैसा होना चाहिए? कोई भंगड़ा टाइप होना चाहिए या इसी तरह का एक सूदिंग ट्रैक होना चाहिए?
1: जी जीशान भाई, तो लोगों की तो अपनी अपनी, हर इंसान की अपनी
0: चॉइस है।
1: ख्वाहिश होती है कि इस तरह क्या होना चाहिए, इस तरह का। इंशाल्लाह हम अपनी आवाम के मुताबिक, मियार के मुताबिक इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और करते रहेंगे
0: बड़ी मेहरबानी। अच्छा
1: इंशाल्लाह।
0: मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, जाहिर है रात का काफी जो है वो वक्त हुआ चाहता है। आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। एक फाइनल सवाल आपसे करूंगा, मुझे बताएं गाने में इंस्पायर किससे हैं, मतलब किसको सुन सुन के शौक हुआ, या सिंगिंग में किसको अपना उस्ताद मानते हैं, गुरु मानते हैं?
1: जी उस्ताद तो माशाल्लाह है मेरे, अल्लाह दे तलुने वाला जी,
0: हाय हाय हाय
1: तो
0: हाय क्या
1: शुरू तो
0: बात है
1: है
0: सर, क्या
1: नदीम
0: बात
1: अब्बास
0: है,
1: साहब, तो मैं नदीम भाई को फॉलो करता हूँ,
0: नदीम भाई की तो
1: तो
0: क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है,
1: जी,
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। चले बहुत बहुत
1: क्योंकि
0: शुक्रिया, कोई
1: आवाज
0: पैगाम आप
1: से
0: देना चाहें
1: मैं
0: लोगों
1: वो
0: को?
1: नहीं है जी, मैं अपनी आवाम से अपने लिए दुआओं का तलबगार हूँ, और आपकी आपके लिए दुआएं करते हैं
0: सर
1: जीशान भाई, बहुत आप अच्छे हैं, तो आपकी वॉइस में जो क्वालिटी है ये हमें बहुत मुतासर
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा थोड़ा
1: करती
0: सा अपना YouTube चैनल बता दे, ताकि जो लोग आपको सर्च करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं आपके गाने, प्रोडक्ट जरा बता दे YouTube चैनल अपना।
1: सर। मैंने अपना चैनल तो नहीं बनाया, मैं मुख्तलिफ कंपनियों को अभी दे रहा हूँ
0: लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अपना
1: सॉन्ग।
0: चैनल जरूर बनाइए, ये बहुत बहुत अहम है
1: जी
0: सर।
1: जी जी मैं सर ये बनाऊंगा,
0: ठीक है।
1: और अभी फिलहाल तो मैं ना, हम सुहेल कसूरी के नाम से मेरे सॉन्ग आ जाते हैं।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया। आमिर सुहेल कसूरी अगर हम लिखेंगे तो आपके गाने आ जाएंगे। बेहतरीन सर,
1: जी जी
0: बेहतरीन।
1: सर,
0: चले सर
1: बहुत
0: बहुत बहुत
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
1: जी शान भाई, बहुत
0: बहुत
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज।

ओके जनाब, टेलीफोन लाइंस आर ओपन नाउ। आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं ऑन 051-111-000-101। बार्बर वाली बात आदि आपको याद है? आदि मैं याद कर रहा कि जरूर आपको सुनाऊंगा। उसके अलावा हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। मैंने अभी एक्चुअली जब मैं बात कर रहा था आमिर सुहेल भाई से, तो साथ साथ अपना इंस्टा भी देख रहा था, उसमें एक मैसेज लाइक आया। अच्छा हुआ मुझे रिमाइंड करवा दिया, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मैं फर्दन रिप्लाई नहीं कर सकता। तो मैंने सबको यही मैसेज किया था कि यार मैं ऑन एयर जब नेक्स्ट शो करूंगा तो बताऊंगा। आप लोग वू बैंड का एक्सपीरियंस पूछ रहे थे। मैंने लास्ट थर्सडे जब प्रोग्राम किया था तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक फिटनेस गैजेट लिया है। नेक्स्ट जब मैं आऊंगा थर्सडे को, सो डेफिनेटली आई लेट यू नो अबाउट इट कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है उसके साथ। और चूंकि नॉर्मली जो फिटनेस गैजेट्स हैं या जो फिटनेस ट्रैकर्स हैं उनसे थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है, फिर सब्सक्रिप्शन वाला मामला भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्पल वॉच लेते हो, एक्सपेंसिव तो वो भी है, बल्कि वो इससे ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके अंदर सब्सक्रिप्शन वाला मामला नहीं होता है। तो क्या ये वर्थ इट है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल उस प्राइस में जिसमें नॉर्मली एप्पल वॉच आ जाती है, अगर चलो ब्रांड न्यू ना भी आए तो सेकंड हैंड

0: अच्छी कंडीशन में तो आई जाती है, क्या ये वर्थ इट है कि आप एप्पल वॉच को छोड़ के वूप बैंड की तरफ जाएं और एक साल की तो सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है, फिर उसके बाद जो आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, या क्या ये वर्थ इट है, फिटनेस ट्रैक वाकई बेहतरीन अंदाज में करता है या नहीं करता, तो वो मैंने एक्सपीरियंस आपको बताना है। बिकॉज पिछले थर्सडे मेरे पास ये लैंड हो गई थी, मिल गई थी मुझे, आज फिर जो मेरा आता है पूरे आठ दिन बहुत होते हैं मेरा ख्याल से किसी चीज़ को आजमाने के लिए। सो मैं कहता हूँ 8 मिनट बड़े होते हैं बंदा आजमाने के लिए, तो फिर 8 दिन हो गए हैं। सो खैर एनीवे ऐसी बात है, मैं डेफिनेटली बताऊंगा क्योंकि मुझे भी मैसेज आया, तो मैं आने वाले टाइम में लाइक अभी कुछ ही लम्हात में 2-4 कॉल्स लेते हैं, गपशप लगाते हैं, फिर वो बैंड के आपके आपको बताऊंगा कि इज इट वर्थ इट और नॉट। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो एथे रख, हेलो वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे कहाँ से?
1: कैसे हैं?
0: करम अल्लाह का, आप कैसे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र। नईम बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: नईम फ्रॉम लाहौर, क्या हाल है नईम?
1: अल्लाह का शुक्र। निशान भाई मैंने ना आपको फर्स्ट टाइम उस दिन सुना था जिस दिन आप वो पक्की वास की स्टोरी सुना रहे थे।
0: हाँ पक्की वास,
1: यकीन माने इतना मजा आया, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट इतना मजा आया, इतना मैंने एंजॉय किया। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बाकी जितनी भी हमारी ऐसी सोशल मीडिया पे चीजें ना जहाँ से हम एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं, कुछ भी नहीं है उसके बगैर जो शो उस दिन आपने किया।
0: सही बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक।
1: बहुत मजे का शो था आपका, और आपकी आवाज, आपका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, और मैं आपके प्रोग्राम का सचली वेट करता हूँ। मुझे आपका शो सुन के बहुत मजा आता है, टाइम ऐसे गुजरता है, 2 घंटे का प्रोग्राम आपका होता है और ऐसे लगता है जैसे 20 मिनट का शो है।
0: सही बात।
1: और मेरी विश है कि आपका शो 3 बजे तक होना चाहिए।
0: सर आप हुक्म करें, आज हम 3 बजे तक कर लेंगे, कौन सी बात है, इतनी छोटी सी ख्वाहिश आपकी।
1: हुक्म करने वाले तो नहीं, हम रिक्वेस्ट करने वाले।
0: सर मैं कर दूंगा, सुबह फांसी तो नहीं है आपको? मैं कह रहा हूँ मैं कर दूंगा जरूर, आपकी आखिरी ख्वाहिश तो नहीं है ना, मतलब मैं कर दूंगा, आप दिल खोल के ख्वाहिश करें सर।
1: नहीं आखिरी ख्वाहिश तो नहीं, ये नहीं, तो नहीं, मतलब
0: शादी हुई है आपकी? शादी हुई है?
1: शादी अभी तो नहीं हुई है।
0: अच्छा, इसीलिए आप मुझे 3 बजे तक प्रोग्राम करने का कह रहे हैं, वरना शादी हुई होती ना तो आपने 11:30 बजे कहना था, छोड़ो यार की काम है रेडियो आजकल, तो दौर कौन सुनता।
1: सर मैं रेडियो सबसे बेस्ट है, मैं जितनी भी हमारे बाकी चीजें है ना उन सबसे बेस्ट रेडियो ही है, इसका अपना ही मजा है।
0: मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी आरजेस मोस्टली आपके लिए प्रोग्राम करते हैं इंक्लूडिंग मी, मुझसे पहले अभी जो प्रोग्राम कर रहे थे 10 से 12, अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में अब कॉलर के तौर पर आए भी, लाइक शामिल भी हुए प्रोग्राम में डीजे डॉग्स, आप यकीन करें इंक्लूडिंग एवरीवन, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग हिम, हमारे जितने भी मोस्टली प्रेजेंटर्स हैं रेडियो के ऊपर, दे ऑल आर एक्चुअली वेरी वेल सेटल्ड डिस्पाइट बीइंग द मैटर ऑफ द फैक्ट हम रेडियो करते हैं। उसकी रीजन पता क्या है? कि रेडियो जितना बेहतरीन मीडियम हमें कोई और नहीं मिलता।
1: बिल्कुल ऐसे
0: ठीक है। सो मैं हूं, डीजे डॉग्स हूं, हमारे बाकी जितने प्रेजेंटर्स हूं, माशाल्लाह दे आर डूइंग सो गुड इन द लाइफ, बट मैंने थोड़ा बहुत अभी रिसेंटली मेरा एक ड्रामा भी हम टीवी पे ऑन एयर हुआ है, थोड़ा बहुत चल भी गया है माशाल्लाह। तो बात यह है कि इवन थोड़ा बहुत टीवी भी किया, थोड़ा सा वो करंट अफेयर वाला भी टीवी किया, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्री भी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, एंड द लिस्ट गोज ऑन, टीवीसी भी किए, सारे मामला बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सारे काम किए, लेकिन जो रेडियो के साथ ऐसा साथ है वो किसी और मीडियम के साथ नहीं है। बाकी काम हम करते हैं बैक एंड पे, जरूर कहीं ना कहीं पैसे होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, चलें बाकी लोगों की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, हो सकता है कि वो काम भी अपने एक पैशन के साथ करते हो, लेकिन मैं बाकी जितने भी काम करता हूं ये मैं एक्चुअली कह रहा हूं कि मैं पैसों के लिए करता हूं, पैशन भी है लेकिन सोचता हूं कि कितने पैसे मिल रहे हैं। रेडियो एक ऐसी चीज है जिसमें आई ऑलवेज डू इट फॉर द पैशन। आप दिसंबर की सर्द रात को मैं जहां से आता हूं 35-40 मिनट की ड्राइव है मेरे घर की, ठीक है। So, आपने खैर वर्स किया तो हम बातों से बात निकल आई। खैर एनीवे आपकी आवाज अच्छी है, आप खुद क्यों नहीं रेडियो करते यार, लाहौर से आप? बस अभी थोड़ी देर पहले अगर आप सुन रहे हो तो जो डीजे डॉग्स हैं उन्होंने कहा है कि वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तो यू मस्ट ट्राई इन इट, हाँ जरूर ट्राई करें। सर जी नहीं, 2 दफा होता है, लेकिन हफ्ते को मोस्टली मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ फॉर सम शूट और सम इवेंट, तो शायद वो मिस हो जाता है, मोस्टली पिछले 2 हफ्तों से मिस हो रहा है, अदरवाइज होता है जुमेरात की रात 12 से 2 और हफ्ते की रात 10 से 12 है। हाँ जी हाँ जी, गाएं सर, आप भी गाएं, गाएं आप ही गाएं, आपके हमारे नसीब में आप ही हैं।
1: सोना सांवला,
0: ओए होए होए ਇੱਥੇ ਰੱਖ
1: ਤੇਰੀ ਗੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚੁਰਾਏ
0: ਇੱਥੇ ਰੱਖ
1: ਕਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਰਨ ਆਏ

0: ਵਾਹ
1: ਸੰਭਲਾ ਉਹ ਵਤਨ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ,
0: ਓਏ ਹੋਏ
1: ਹਾਂ ਵਤਨ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ।
0: क्या बात है सर, लव यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया भाई। बात बड़ी सिंपल सी है, जो हालात चल रहे हैं वतन अजीज के, खास तौर पे अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, तो एक ट्रैक था कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानिया, उस्ताद नदीम अब्बास लूने वाला ने इसको परफॉर्म किया था, क्या बेहतरीन गाना था। लेकिन जो हालात चल रहे हैं अब, ऐसा भी कोई नहीं है जो हमें ये गाना डेडिकेट करने वाला हो कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानिया, तो अब तो अगले भी ये कहते हैं कि भाई तू गड्डी नू रहन दे मैं पैदल आनी हाँ। तो सीन ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि जिशान आप खुद एक रेडियो प्रेजेंटर हैं, लोगों को आप बर्थडे विशेस सेंड करते हैं और लोगों के गाने प्ले करते हैं, लोगों को डेडिकेट करते हैं, डेडिकेशंस करते हैं लोगों की, आपका भी तो दिल कभी ना कभी चाहता होगा ना कि आपको भी कोई गाने डेडिकेट करे, तो वो कौन सा गाना है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि मैं कौन सा गाना चाहता हूं कि कोई मुझे डेडिकेट करे, तो वो गाना मैं प्ले कर रहा हूं, वो गाना ये वाला है। मौजूद खवातीनों हजरात, आपकी समातों से टकराने वाली आवाज को जीशान नासिर कहते हैं। रात 12:42 हुआ जाते हैं, जुम्मे का दिन शुरू हुआ है 15 मई 2026, और ये गाना मैं चाहता हूं कि हमें कोई डेडिकेट करे।

0: इन केस अगर आप अभी अभी न्यूयॉर्क से लैंड हुए और आपको बाणे का मतलब नहीं पता, तो बाणे का मतलब होता है कपड़े। वो कहता है कि छोड़ सारे जग नू ते टुर साडे नाल, मोढ़े उत्ते रख सोने फुल्लां वाली शाल, इक नालों इक वद पावे बाणा, जाने तेरा खर्चा ते मैं जाना। वाह वाह वाह वाह, कहंदा है कि तू छड़ सारियां गल्लां, तू सिर्फ नवे नवे कपड़े पा, खर्चा मैं जाना, तू छड़ सारियां गल्लां दे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। हेलो
1: जीशान भाई, क्या हाल है?
0: जीशान भाई ठीक है, आप ठीक हैं?
1: अल्लाह शुक्रिया, आप सुनाओ।
0: करम अल्लाह का, जरा बोलें थोड़ा सा, क्यों नहीं यकीन आ रहा कि कॉल मिल गई है?
1: जी नहीं नहीं आ रहा है।
0: अच्छा अच्छा, और सुनाएं क्या चल रहा है आजकल लाइफ में?
1: लाइफ में बस कुछ नहीं, और तो कोई कुछ नहीं चल रहा है।
0: अच्छा, तो ये बताने के लिए आपने कॉल मिलाई है रात को 12:45 पे पूरे पाकिस्तान को ये बताने के लिए कॉल की है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा? वाह,
1: बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, आप सुनाओ।
0: वो जो बहुत कुछ चल रहा है उसमें थोड़ा सा अच्छा हमें सुना दें, क्या चल रहा है? जिगर पानी शानी पी मेरा भाई, पानी शानी पी, तन कोई होश आवे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? हाँ ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। शाह फैसल,
0: शाह फैसल साहब कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आपको पता है आपके नाम पे एक, आपको पता है आपके नाम पे एक मस्जिद भी है इस्लामाबाद में?
2: जी सर।
0: है ना, आप तो कहते होंगे मेरे नाम पे एक मस्जिद भी, आप तो बड़े चौड़े होते होंगे खानदान में, है ना?
2: नहीं, हम तो
0: कमजोर लोग, कमजोर लोग हैं, तो कोई विटामिन की कमी होगी, कोई खुराक शुराक सही रखेंगे, क्योंकि टांगे कांपती हैं आपकी।
2: मैं विटामिन वाले काम करता हूँ, वहाँ पोल्ट्री फार्म है, वैसे मैं ब्लाइंड
0: हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, फिर तो बड़े अमीर आदमी यार, पोल्ट्री फार्म है आपका।
2: बस गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तो ये तो नहीं कि बंदा कोई थोड़े बहुत कोई अंडे शंडे भेज दे के यार मेरा पोल्ट्री फार्म है, चलो जिशान भाई ठंड में आते हैं, जिशान भाई को थोड़ा सा कोई बंदा कुछ अंडे शंडे खा के गर्म हो जाए जिशान भाई थोड़ा सा। विले मुर्गे हैं?
2: जी जी, ये नहीं है, अलाजीबा करने वाले नहीं होते।
0: हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रायलर रखे हैं, तो खैर है, चिकन भेज दें, हम चिकन खा लेंगे, चिकन कौन सा मना है हमें, हम शाकाहारी नहीं है, हम मांसाहारी हैं।
2: सर आंखों पे सर
0: की
2: बाकी आपके आर्य दोस्त से ले रहे थे, उनको मैं फोन करता हूँ, बड़े अच्छे इंसान है, इंसान
0: आजकल इंसानों की। वाह वाह क्या बात, वाकई
2: आमिर शेर भाई का गाना सुना है आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सराय की गाने वगैरह।
0: हाँ सर, आमिर सोहेल ने गाया भी बड़ा अच्छा है ना, आमिर भाई ने बहुत अच्छा गाना गाया,
2: बहुत अच्छा गाया आपने, जैसा लगाया वो म्यूजिक जैसा चला, मैं कहा आजकल ऐसे म्यूजिक कहाँ मिलता
0: है। देख लें फिर आमिर भाई, देख लें लोग आपके गाने को पसंद कर रहे हैं, कल अगर आप हिट हो गए, फेमस स्टार बन गए, तो फिर आपने कहना है ओ की जिशान आज रो रेडियो, थोड़ा जो रेडियो करता है अड्डा केड़ा बंदा।
2: बड़े लोगों की बड़ी बात होती है ना, आज ये सबसे बड़ा फन
0: आज जी में। शक कोई नहीं, शक कोई नहीं, इसमें शक कोई नहीं। और सुनाए?
2: बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का
0: और
2: शुक्र है, बड़े एहसानात हैं अल्लाह ताला।
0: क्या चल रहा है लाइफ में?
2: बस यही कारोबार चल रहा है, और जिंदगी गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बस गाय पिए थोड़ा, बच्चे खुश है, तो यही चीज होती है।
0: सही बात,
2: बाकी आगे बढ़ने के लिए तो स्किल चाहिए, और स्किल में असल में प्लान जो हूँ तो वही करता हूँ जो अपने पास।
0: सर आप जो कर रहे हैं ना वो करते रहें, आप जिंदगी में जो कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं।
2: बड़ी चार बेटियां ना, अभी पहली वाले तो सेकंडरी क्लियर किया, दूसरा
0: माशाल्लाह अल्लाह नसीब अच्छे करे,
2: बैठे हैं वो भी छोटे हैं बच्चे,
0: अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह नसीब अच्छे करे। और सर
2: अल्लाह आपको खुश रखे,
0: बहुत बोलता हूँ
2: इसी तरह जिंदगी में भी रवानियत
0: अता फरमाए, आमीन
2: आमीन।
0: बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत ख्याल रखिए, एक कॉल फिर उसके बाद शरारत बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम, ईशान भाई की हाल है?
0: ठीक है सर, तुसी सुनाओ ठीक हो?
3: अल्लाह की मेहरबानी है सर जी, ईद की कॉल मिली हुई है, आज ही मिली है कॉल, राम लागे थक गए जी।
0: बस तेरी कॉल ईद दे, ईद ही मिलेगी था मतलब?
3: नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, बाकी सर जी भी ऐसे ठीक है?
0: ठीक है, मैं केड़ा लहरा आ रही है ना मेरे तो?
3: नहीं नहीं, इंशाल्लाह मेरे भरा जी खैर, मैं कसम में सिर्फ सिर्फ अपने भरा दी आवाज सुन ली तरसदा ना गया, गल कर ली महीने दो महीने बाद ही हो जाए।
0: तू रिकॉर्डिंग सुन लिया कर,
3: ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨੀ ਭਾਜੀ।
0: ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ?
3: ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ।
0: ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ।
3: ਓਹਦਾ
0: ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਡਿਨ ਕਰਾਰੇ ਡਿਨ ਚੂ ਕਭੀ ਡਿਨ ਕਿਨਾਰੇ ਡਿਨ ਚੂ।
3: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਨੀ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।
0: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ, ਵਿਊ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲਿਖੋ ਡਿਨ ਕਿਨਾਰੇ ਡਿਨ ਚੂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਲਾ ਉਹ ਆਲਾ ਉਹ ਆਲਾ ਉਹ ਆਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਯਾਮਾ ਫੇਰਦਾ। ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ, ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਦ ਨਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ, ਹੱਦ ਹੱਦ ਹੱਦ।
3: ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ,
0: ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੱਦ।
3: ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੱਦ।
0: ਹਾਂ, ਹੇ ਦਾਲ,
3: ਉਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ।
0: ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਦਾਲ ਹੱਦ
3: ਭਾਈ,
0: ਹੇ ਹੁੱਕੇ ਆਲਾ ਲਿਖਣਾ, ਹੁੱਕੇ ਆਲਾ।
3: ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਦਵਾਹ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਰ ਸਰ ਸਰ ਸਰ ਸਰ, ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ
3: ਸਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਜੀ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ,
0: ਹਾਂ ਹਾਂ,
3: ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਈਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ।
0: ਵਾਹ,
3: ਠੀਕ ਆ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦਿਨ।
0: ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ,
3: ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
0: ਸ਼ਹਾਦਤ
3: ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ।
0: ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਮਸਲਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਜਾਂ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਹਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਮੇ ਅਸ਼ੂਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਚਾਂਸਿਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਲੈ ਸਲਾਮ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਬਾਦਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁਣੀਏਗਾ।

अच्छा जी, एक सवाल है, काफी अरसे से पेंडिंग है। मैंने उनको कहा था कि मैं शो में आंसर करूंगा, तो मैं उसको भी आंसर कर देता हूँ, फिर हम वो शरारत वाले पार्ट पे जाएंगे, क्योंकि वो तो एक शुगल वाला सीन है। कुछ अगर किसी की रहनुमाई हो जाए या प्रोडक्टिव बात हो जाए, तो उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। अच्छा सवाल है जी, एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ कि हे जीशान, मेरा एक सवाल है। बीबी फातमा तो ज़ारा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी फातमा तो ज़ारा की लाइफ हमारे लिए आइडियल है। मैं कुछ वक्त से बीबी फातमा की सीरत को स्टडी कर रही हूँ। उन्होंने फरमाया था कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ना वो किसी गैर मर्द को देखे, ना कोई गैर मर्द उसे देखे। मेरा सवाल यह है कि आज के दौर में जब पढ़ाई और करियर के लिए हमें घर से निकलना पड़ता है, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो ऐसी सूरत हाल में हम इस कॉल की रूह पर कैसे अमल करें? हम अपनी हया और प्राइवेसी को बरकरार रखते हुए बाहर की जिम्मेदारियां कैसे निभा सकते हैं? प्लीज इसके ऊपर गाइड करें। अच्छा, जो पहली दो बातें ना आपकी, उसके ऊपर तो हम बात कर सकते हैं, उसके ऊपर तो यकीनी तौर पर। अब मैं, जितनी मुझे समझ बूझ है, मैं अपने आप को कभी भी दीनियात का एक्सपर्ट नहीं कहता। हाँ ये ज़रूर है कि तकाबले दीन, मसाइले दीन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैं बहुत सारे मसाइल के हवाले से, जो आप लोग क्वेश्चंस भेजते हैं, जो मेरे अपने जहन में आते हैं, मैं उनको स्टडी करने की कोशिश करता हूँ इन द रेफरेंस ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका एंड जो कुरान की आयात हैं, फिर उनको टैली करके जो एक अकल के मैं पाने में चीज़ समझ में आती है, या फिर जो कुरान समझने या समझाने वाले लोग हैं जिनका इसके ऊपर जय्यत काम है, तो उस उनसे इसके ऊपर जो है वो बात ली जाए, रेफरेंस लिया जाए या रहनुमाई ली जाए, और फिर उस पर मैं कोई राय कायम करता हूँ। मेरी इसमें अब राय क्या है, मैं यकीनन आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन देखें, आपने जो पहले ये बात लिखी है ना कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि कोई गैर मर्द उसको ना देखे और वो किसी गैर मर्द को ना देखे, बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई। कॉल है बीबी फातिमा तुजारा का। सवाल आपका ये है कि आज पढ़ाई और करियर के लिए हमें घर से निकलना पड़ता है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, मजबूरी है ना। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने करियर है आपका और आप किसी ऐसे मामलात से दो चार हैं कि जिसमें आपके वालिद जो हैं वो आपकी केयर टेक पूरी नहीं कर रहे, या आपके शौहर नहीं कर रहे, या आपका भाई नहीं कर रहा, आपकी कफालत नहीं कर रहे, या आपके कोई ऐसे असबाब नहीं है कि आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें, और आपको अपना जो खाना पीना है, ओढ़ना बिछोना है, अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी खुद पूरी करनी है, किसी भी मसले की वजह से आप जॉब करने के लिए निकल गई हैं, या शौक के लिए भी चलें फॉर द सेक, अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी सोच है ना, अगर आप शौक के लिए भी निकल गई हैं तो ज़ाहिर है आपका मेल इंटरेक्शन होगा, या आप तालीम की बात करें तो वो तो लाजमन है कि ज़ाहिर है, अगर आप फॉर एग्जांपल बाहर निकलते हैं तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ को एजुकेशन है, को एजुकेशन ना भी हो तो टीचर्स मिल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ मिल जाएगा, ड्राइवर मिल जाएंगे, रस्ते में लोग मिल, तो वो एक आपने बेसिक बात है कि आप घर से बाहर निकलोगे तो आपका इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहां तक तो इसको हम आंसर कर सकते हैं। अब इससे अगला पार्ट जो है, मैं उसको पहले आंसर करता हूं फिर इस पे वापस आता हूं। दूसरी आपने बात की, और चूंकि सोशल मीडिया का भी जमाना है, अच्छा ये कोई तावील नहीं है, किसी चीज का भी जमाना होना आपको इस चीज की दलील नहीं देता कि आपने काम लाजिम करना। गेटिंग माय पॉइंट? देखें, आपके लिए कुरान और सुन्नत ने भी जो आसानी पैदा की है वो वहां पैदा किए जहां पे आपके लिए मजबूरी है, कहीं पर भी इसलिए आसानी पैदा नहीं कि क्योंकि ये जमाना ऐसा चल रहा है तो चलो इसमें एडजस्ट करें, नो नॉट एट ऑल। मैं मिसाल देता हूं, सुअर का गोश्त हराम है, ऐसा ही है ना, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पर उसको खाने के लिए कुछ मुयसर नहीं है और वो कुछ नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो उसको ये इजाजत है कि वो इतना सुअर का गोश्त खा सकता है कि वो

ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब उसकी सिचुएशन ऐसी है कि अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा, जान बचानी फर्ज है, तो वो इतना और खाएगा इतना कि जिससे उसकी जान बच जाए, ठीक हो गया। अब अगर वो ये कहे कि भाई मैं तो अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूरोप में या फ्रांस में हूँ और यहाँ का ज़माना ऐसा है कि यहाँ पे तो सुअर के टिक्के चलते हैं तो मैं खा लूँ, तो वो अलाउड नहीं है उसके लिए, आप समझ रहे हैं। तो ज़माने का होना कोई दलील नहीं है कि आप वो काम करें, तो ये चीज़ तो यहीं पर नलिलफाय हो गई। सोशल मीडिया पर पर्दा रखना तो बहुत आसान है, आप अपनी असल डीपी ना लगाएं, मोस्टली लोगों ने तो नाम भी अपना असल ही लिखा होता, लेकिन आप अपनी पिक्चर्स उस तरह शेयर ना करें, तो सोशल मीडिया तो आपके हाथ में है, सोशल मीडिया के ऊपर प्राइवेसी मेंटेन रखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो असल पॉइंट आपने रेज किया वो काम के हवाले से और पढ़ाई के हवाले से। अच्छा, यहां पर अब आपने क्या करना है, हमेशा याद रखना मॉडेस्टी औरत के अपने हाथ में है, औरत की एक नजर इतनी ताकत रखती है कि मर्द अगर उसको किसी और नजर से देख रहा है तो दोबारा उसकी हिम्मत ना पड़े कि वो उसको उस नजर से देखे। वाकई औरत की नजर में ये ताकत होती है, लेकिन मसला ये है कि हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं चीजों में, ठीक हो गया, हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं चीजों में कि यहां पर हमारा फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा हम नरम लहजे में बात कर लेते हैं तो शायद जो इन ड्राइवर है वो 10 किलोमीटर आगे उतार दे विदाउट पैसों के। मैं एक इन जनरल बात कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये सब पे कोई कानून लागू नहीं होता, लेकिन मैं इन जनरल बात कह रहा हूँ। या फिर मैं सर से थोड़ी सी अच्छी तरह नरम लहजे में बात कर लूँ तो सर ने अगर फॉर एग्जांपल 8 नंबर देने हैं तो 9 दे देंगे, या मेरा ये यूनिवर्सिटी में काम रुका हुआ है, मैं थोड़ी हंस के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है उसके मेन बंदे से कर लूंगी तो वो मेरा काम कर देगा, या मैं अगर काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपने स्पेसिफिक फीमेल के हवाले से पूछा है तो उस हवाले से बता रहा हूँ, तो या मेरे जो ऑफिस में मेरे बॉस हैं मैं उनसे थोड़ा सा नरम लहजे में बात कर लूँ तो मेरी प्रमोशन जो रुकी है, जो मेरा इंक्रीमेंट रुका है वो उसके ऊपर साइन कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पर हम अपने फायदे के लिए वो हदूद तोड़ते हैं जिसका फिर खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। यहां पर अब आपने कहा कि कोई गैर मर्द ना देखे, अब जो चीज मैंने पढ़ी है समझी है, जो कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ आया, आप चाहें तो मेरी जो अब राय है आप इससे इख्तलाफ कर सकती हैं और किसी और बेहतर बंदे से मशवरा कर सकती हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट इसका मैंने समझा है वो ये है कि कोई औरत इस नीयत से गैर मर्द को ना देखे जिससे कोई बुराई पैदा होने का खदशा हो, और कोई गैर मर्द उसको इस नियत या इस नजर से ना देखे कि बुराई फैलने का खतरा हो। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बड़ी मशहूर जमाना हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सही हदीस है कि कोई औरत खुशबू लगा के निकले और उसकी खुशबू कोई गैर महरम सूंघ ले तो फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। ठीक है, ये हदीस मुबारका मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, अक्सर जगह मैं देखता हूं बहुत सारे लोग मेंबर से इसको कोट भी करते हैं, लेकिन अगर आप इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझेंगे पढ़ेंगे तो इसका कतअन मतलब ये नहीं है कि औरत खुशबू नहीं लगा सकती। बेसिकली ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि एक औरत खुशबू लगा रही है जहन में ये सोचते हुए कि मैं बाहर निकलूं और लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकूं, ये उस औरत की बात हो रही है। अगर एक औरत पाक साफ हो रही है, खुशबू लगा रही है कि उससे स्मेल ना आए, अपने घर में भी रहती है, फॉर एग्जांपल उसका खावंद है गैर शादीशुदा भी है, वो खुशबू का इस्तेमाल करती है, शादीशुदा है, खुशबू का इस्तेमाल कर रही है, नमाज पढ़ी, अब फॉर एग्जांपल एक खातून है वो शादीशुदा है, वो अपने खावंद के लिए खुशबू लगाती है, अब उसने खुशबू लगा ली, खावंद आया, उन्होंने बैठे चाय शाय पी, उनका प्रोग्राम बन गया कि भाई हम जरा बाहर चलते हैं, तो वो क्या करे, कपड़े धोए पहले अपने खुशबू खत्म करने के लिए, क्या करेगी वो, जाहिर है उसी परफ्यूम लगे हुए कपड़ों के साथ ही बाहर जाएगी ना, ऐसे ही है ना। तो इट डज नॉट मीन कि अब उसने चूंकि परफ्यूम लगा लिया तो वो बाहर नहीं जा सकती। हाँ, एहतियाती तदबीर जरूर करेगी, बड़ी शॉल ले ले, चादर लपेट ले, अपने महरम के साथ रहे, ये एहतियाती तदाबीर हैं, बट इसका कतअन मतलब नहीं है कि वो बेचारी अगर उसने परफ्यूम लगा ही लिया है और वो बाहर निकल ही आई है और अगर कहीं से गुजर गई है और खुशबू किसी के नाक में पड़ गई है तो अब उस पर लानत होती रहेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि कोई औरत बकायदा अपने आप को सजाए सवारे और इस नीयत के साथ खुशबू लगा के बाहर निकले कि उसकी तरफ मर्द माइल हो डेलिबरेटली, तो यकीनन ये बात उस औरत के लिए की गई है, क्योंकि फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बुराई से बुराई आगे पैदा होती रहती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन नियत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इतनी खूबसूरत है, वैसे तो उनकी तमाम बातें बेहतरीन है, लेकिन जो ये हदीस है ये ऐसी क्वेश्चन है कि आप इसको हर जगह

जनाब जनाब जनाब मैसेज आ गया, फरमा रहे हैं जी गॉट इट, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरफाइंग दिस। चलें जी शुक्र है मेहनत का फल मिल गया, जो 5 मिनट में तकरीर की थी फायदा हो गया उधर।

अच्छा भाईजान, हुआ कुछ यूं कि मुझसे पहले यहाँ पर बतौर ड्यूटी ऑफिसर मौजूद थे, लाइक जो ट्रांसमिशन हो रही थी, मैं तो खैर बतौर प्रेजेंटर यहाँ पर खिदमात देने के लिए आता हूँ। तो मेरे से पहले जो बतौर ड्यूटी ऑफिसर यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे वो थे नुमान भाई, और नुमान भाई के बाद जिनकी ड्यूटी, जो अभी बतौर ड्यूटी ऑफिसर मेरे साथ ड्यूटी पर तैनात हैं, उनका नाम है अख्तर भाई। दोनों ही मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और मैं दोनों से बड़ा प्यार करता हूँ। पता नहीं अब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। अच्छा, तो सीन कुछ ये हुआ कि मैं कुछ टाइम पहले आ गया, आज ज़रा जल्दी आ गया, तो अख्तर भाई तब तक नहीं आए थे, ज़ाहिर है क्योंकि उनकी ड्यूटी शुरू नहीं होती है। उनकी ड्यूटी शुरू होती है 12 बजे, तो वो आते हैं तकरीबन 11:30 बजे। अमूमी तौर पर मैं 12:45, 12 बजने में जब 10 मिनट 5 मिनट होते हैं, मैं तब स्टूडियो में इंटर होता हूँ। आज ज़रा थोड़ा पहले आ गया 11 बजे। तो सीन ये हुआ कि नुमान भाई यहाँ पर बैठे हुए थे, तो अख्तर भाई का उनको मैसेज आया कि मैं बाहर आ गया हूँ। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से इन्फॉर्म किया कि आप रिलैक्स हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं, मैं बाहर आ गया हूँ, बाहर ही खड़ा हूँ। गपशप लगा रहे होंगे जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके साथ। यार एक तो प्लीज़ ख़ास दुआ किया करें हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। यार अगर आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग मेरे दिल के बड़ा करीब हैं यार, यकीन करें। अभी तो चले मौसम थोड़ा सा ठीक है, ठीक भी क्या, अब जैसे जैसे आगे मौसम जाएगा, मच्छर बड़ा होता है, गर्मी बड़ी होती है। सर्दियों में ख़ास तौर पे जब मैं आता हूँ और जब मैं जा रहा होता हूँ 2:30-3 बजे, मेरे लिए बड़ा इजी है कि एक गर्म कमरे से उठो, गर्म गाड़ी में बैठ जाओ, हीटर ऑन करो और घर जाओ। आप यकीन करें, मुझे बहुत एहसास होता है कि जब वो बैठे होते हैं और सर्दी भी होती है और वो हमारे लिए बैठे होते हैं। मैं आता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, चला जाता हूँ। बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। अब अगर सिर्फ हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वही अगर अपनी ड्यूटी सही ना करें तो मुमकिन नहीं है ना, कोई भी आके यहाँ पे कुछ भी कर जाए, कौन जिम्मेदार है? वो सही तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो हम इस पोजीशन में हैं कि मैं अच्छा प्रोग्राम करूँ और आप अच्छा प्रोग्राम सुने। तो अल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ करे, अल्लाह उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ करे। आमीन सुमा आमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन, दे आर द हीरोज़। अच्छा जी, सो खैर मूविंग फॉरवर्ड, अब वो उन्होंने उनको मैसेज कर दिया कि नुमान मैं आ गया हूँ, अपनी तरफ से बता दिया कि रिलैक्स हो जाओ, मैं बाहर ही हूँ, तो आपने जब जाना हो तो आप चले जाना, मैं आ जाऊँगा। अब नुमान मेरे साथ बैठे हुए थे, तो जब मैसेज आया तो उन्होंने कहा, अच्छा जीशान भाई, अख्तर भाई भी आ गए हैं। मैंने कहा, आ गए हैं, कहाँ हैं? कहते हैं वो बाहर खड़े हैं। मैंने कहा, मोबाइल दो मुझे। मैं शरारती नहीं हूँ, शरारती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, शरारत तो मैं करता ही नहीं हूँ, कभी की नहीं शरारत मैंने, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने कहा मोबाइल दो मुझे। इमेजिन करें मैंने क्या किया होगा।

ओ माइक बंद था। माँ सदके जाए, जहीर भाई कह रहे हैं जिशान प्लीज सॉन्ग ना प्ले किया गया, हम आपको सुनने के लिए इंतजार करते हैं और आप गाना प्ले करते हैं और आप बातें कम करा रहे। नहीं यार मैं बातें करता हूँ, साफ ही दिलाना होंगे ना यार, मैं और मशीन तो नहीं है कि बोली जावा। बहरहाल थैंक यू सो मच। अच्छा तो हुआ क्या कि मैंने नुमान को कहा यार मोबाइल दो जरा मुझे, कहते क्यों, मैंने कहा दो तो सही यार। अब मोबाइल था नुमान का और मैसेज भेजने वाला था मैं और रिसीव करने वाले थे अख्तर भाई। तो मैंने मैसेज भेजा, अख्तर अंदर आ जाओ ना। आगे से मैसेज आया कि मैं आ जाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं आप ड्यूटी टाइम में आ जाऊंगा। उनको अगला मैसेज गया कि अरे नहीं ना, मैं कह रहा हूँ अंदर आ जाओ, प्लीज आ जाओ ना, मान लो मेरी बात। और साथ एक दिल बना के भेजा। आगे से उनके ना दो तीन क्वेश्चन मार्क आए कि नुमान क्या हो गया। तो अगला मैसेज आया कि भेजा गया उनको, आ जाए ना, मैं कह तो रहा हूँ आ जाए, समझा करें, जल्दी करें। उनका मैसेज आया कि तुम ड्यूटी पूरी करके चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। अगला मैसेज किया कि कभी मेरी भी मान लिया करो, क्यों ऐसे करते हो, किसी वजह से कह रहा हूँ ना, मुझे कोई काम है, जल्दी आओ। उनका मैसेज आगे से आया कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम देख लो, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो। फिर अगला मैसेज मैंने इनको किया कि अख्तर समझा करो बात को, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हो, जल्दी आओ। उनको समझ नहीं आई कि नुमान को आज हो क्या गया है। तो अगला मैसेज मैंने उनको ये कहा कि जल्दी आओ ना, फिर जिशान भाई आ जाएंगे, अभी कोई भी नहीं है स्टूडियो में, जल्दी आओ, फिर जिशान भाई आ जाएंगे स्टूडियो में, जल्दी करो। उनका आगे से मैसेज आया, हाँ हा हा हा, जिशान भाई पहले से आए हुए हैं, मैंने उनका गाड़ी देख लिया, उनका गाड़ी खड़ा हुआ है। हाँ गल्ला है भाई, तो ये बात है। फिर मैं बकायदा बाहर गया, मैंने कहा अख्तर भाई मैं था। कहते हैं मैं भी कहूँ ये नुमान को आज क्या हो गया, इसने क्या कहा लिया है। सो शरारत तो मैं करते ही नहीं, शरारत की नहीं, कभी मैंने शरारत की नहीं जिंदगी में, मैं शरारत नहीं करता।

पलवशा कह रही है नुमान, मैंने वो मैसेज देखे जो आपने किए थे। अरे नहीं नहीं, मैंने उनके सामने किए थे। किसी का मोबाइल उसके कंसेंट के बिना यूज करना तो बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, हंस रहे थे। मैंने उनको कहा कि यार शुगर लगाएं, तो उनका हाँ लगाएं। फिर वो मेरे साथ बैठे थे, फिर उनका लगाएं, फिर मैंने लगाया शुगर। मैंने कहा शुगर लगाएं, कहते लगाओ, फिर मैंने लगा लिया।

बस मेरी गाड़ी ने हमारा पूरा प्रैंक खराब कर दिया. अगर मैंने गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी की होती ना तो फिर उनको गाड़ी नजर ना आती. लेकिन मुझे उस दिन एहसास हुआ है, बल्कि अभी एहसास हुआ है कि ये तो मैंने अभी सोचा है कि अख्तर भाई की कितनी नज़र है मेरी गाड़ी पे. मतलब उन्होंने मेरी गाड़ी को पहचानते हैं इसका मतलब. हालांकि मैं डायरेक्ट आता हूँ डायरेक्ट जाता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी मेरी डिटेल मुलाकात हुई हो, लेकिन गाड़ी पहचानते हैं मेरी. इसको मोहब्बत कहता है, इसको दिल से मोहब्बत कहता है. खैर मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. वो आप वूप का पूछ रहे थे मेरे से बहुत सारे लोग. शुजात भाई ने कहा कि जिशान भाई जिस दिन आपने वूप खरीदी है उसके अगले दिन ही गूगल ने अपनी लॉन्च कर दी है. मेरी जान के टोटे, जब भी कोई गैजेट लॉन्च होता है तो वो एक दिन के अंदर लॉन्च नहीं होता, माँ सदके जाए. जाहिर है उसकी प्री लॉन्च वगैरह सारी डिस्कस हो रही थी, बातें हो रही थी, तो मैंने जब ख़रीदना था. तो आपका क्या ख्याल है कि मैंने 70-80 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपया तकरीबन अगर कहीं पे लगाना था या ख़रीदनी थी कोई चीज़ 1-1.25 लाख की, तो मैंने वैसे ही बिना तहकीक किए ही ख़रीद लेनी थी. मैंने यकीनन बहुत सारे बैंड्स देखे थे जिसमें हुआवे फिट बैंड वो मुझे बहुत बेहतर लगा था. फिर एप्पल वॉच ऑलरेडी मेरे पास है भी, लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि उसको हम थोड़ा अपग्रेड भी कर सकते हैं. जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है जो मेरे पास ऑलरेडी है उसको सेल करके जितने पैसों की ये वूप आ रही थी उसमें और डाल के हम वो बिल्कुल लेटेस्ट वाला वर्जन ले सकते हैं अच्छी कंडीशन में. फिर तीसरा ऑप्शन मेरे पास जो है वो एम्स फिट बैंड का आ रहा था, फिर हुआवे का था, इनफिनिक्स, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स की जो हैं वो मामलात आ रहे थे. लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था मेरी जान के टोटे कि ये सारे के सारी स्मार्ट वॉचेस थी. मैं एक फिटनेस ट्रैकर डिवाइस ढूंढ रहा था. फ़र्क ये होता है फिटनेस ट्रैकर डिवाइस और स्मार्ट वॉच में कि स्मार्ट वॉच इज एक्चुअली जस्ट नॉट डिजाइंड टू ट्रैक योर फिटनेस. जो स्मार्ट वॉच है ना उसका मेन मकसद या वाहिद मकसद ये नहीं होता कि वो आपकी फिटनेस ट्रैक करे. वो उसके अंदर वो जाहिर है एप्लीकेशन वगैरह ऐड ऑन कर देते हैं उसकी वैल्यू ऐड करने के लिए, अदरवाइज उसका मेन मकसद ये होता है कि आप फोन कम यूज करें और फोन का मैक्सिमम काम आप उस स्मार्ट वॉच से ले लें. चाहे कॉल मिलानी हो, करनी हो, ईमेल भेजनी, रिसीव करनी, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम वगैरह, आप बैठे हुए हैं, आप मोबाइल बार बार नहीं निकाल सकते या मोबाइल की बैटरी का इशू होता है, तो आप अपनी स्मार्ट वॉच को इस्तेमाल करते हुए अपने सारे काम मोबाइल फोन वाले स्मार्ट वॉच से कर लें. तो वो जाहिर है फिर फिटनेस ऐप वगैरह डाल देते हैं बीच में, चलो फिटनेस भी हो जाएगी. और वो बड़ी अच्छी, खासतौर पर अगर हम एप्पल वॉचेस की बात करें तो बड़ी ऑथेंटिक वो डाटा कैलकुलेट करता है. ये जो फिटनेस ट्रैकर डिवाइस होती है इसका वाहिद मकसद ही आपकी फिटनेस ट्रैक करना होता है. आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि इसके अंदर स्क्रीन नहीं होती. स्मार्ट वॉचेस में जैसे स्क्रीन होती है ना कि टाइम आ रहा होता है, वॉलपेपर लगा हुआ होता है, बाकी चीजें होती हैं, तो ये जो फिटनेस ट्रैकर डिवाइसेज हैं इनमें स्क्रीन नहीं होती, स्क्रीन लेस होते हैं. इसमें कोई स्क्रीन नहीं होती, ना इसमें टाइम आ रहा होता है, ना लाइट चलती है, कुछ भी नहीं होता, ना तस्वीर आती है. ये एक सिर्फ डिवाइस है जिसको बैंड के साथ कनेक्ट करके आप अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहन सकते हैं. ये चीज़ शायद आपके लिए थोड़ी डिफरेंट हो. मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, सिर्फ शुजात की बात नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि ये शायद, और ये एज ए इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि चलो आप लोगों को पता होना चाहिए ना, ये फिटनेस ट्रैकर डिवाइसेस आप लाजिम नहीं है कि हाथ पे ही पहने. ये आप अपने थाई पे वेयर कर सकते हो क्योंकि इसके जो बैंड्स आते हैं वो एक्सटेंडेबल बैंड्स आते हैं, इलास्टिक वाले बैंड्स आते हैं. आप थाई पे वेयर कर सकते हो, अपनी शिन पे वेयर कर सकते हो, अपने रिस्ट पे तो वेयर कर ही सकते हो, अपने बाइसेप पे वेयर कर सकते हो, ठीक है, और भी कुछ जगह हैं जहाँ पे वेयर कर सकते हो, वहाँ पे आपकी फिटनेस ट्रैक करती रहेगी, आपकी जो एक्टिविटी है वो ट्रैक करती रहेगी. तो इसमें चूंकि कोई और फंक्शन नहीं होता सिवाय ये कि वो आपकी फिटनेस ट्रैक करे, तो इसका अल्टीमेटली गोल, इसकी सारी की सारी सलाहियतें सिर्फ इस्तेमाल हो रही होती हैं आपकी फिटनेस को ट्रैक करने के लिए. चूंकि ना इसमें नोटिफिकेशन आना है इंस्टा ना व्हाट्सएप का, ना वो फोन आना है, ना जाना है, ना मैसेज आना है, ना जाना है, ना आपने टाइम देखना है, इसमें स्क्रीन तो है नहीं. तो चूंकि ये सिर्फ डिजाइन ही आपकी फिटनेस के लिए हुई होती है तो इसका डाटा एक्चुअली बहुत बेहतरीन होता है. तो अगर आप बॉटम लाइन में मुझसे पूछें कि क्या ये वर्थ इट है, तो जी जनाब ये वर्थ इट है. लेकिन ये सिर्फ वर्थ इट तब है कि जब आप एक्चुअली एक फिटनेस एंथूसियस्ट हैं, क्योंकि ये कोई स्टाइल सिंबल नहीं है. अब एप्पल वॉच जो है ना वो एक स्टेटस सिंबल या स्टाइल सिंबल भी है. वूप वैसे अगर आप एक्चुअली मेरे से पूछें तो किसी हद तक स्टेटस सिंबल भी बन गई है. हालांकि बड़ा कम होता है कि जो फिटनेस ट्रैकर डिवाइसेस हों वो एक सोशल स्टेटस
का एक दर्जा ले लें। ये किसी हद तक बन गया क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसको यूज़ किया, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ साथ विराट कोहली की बहुत सारी पिक्चर्स आई, उन्होंने इसको वेयर किया हुआ था, फिर बाबर आजम ने इसको वेयर किया हुआ था, फिर अब तो बहुत सारे एथलीट्स हैं जो इनको वेयर करते हैं। फिर हमारी आज वो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे वुमेन क्रिकेट टीम का मैच है, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान वुमेन टीम के कुछ प्लेयर्स ने भी वेयर किया हुआ था, तो अब तो बहुत सारे एथलीट्स इसको वेयर कर रहे हैं। तो ये अब एक वैसे एक स्टेटस सिंबल बन गया है, लेकिन उससे हट के भी अगर आप इसकी यू नो आउटपुट की बात करते हैं या परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हाँ वर्थ इट है। वो कैसे मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन ये आप सिर्फ तब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें अगर आप वाकई फिटनेस फ्रीक हैं, आप फिटनेस के बारे में सीरियस हैं। अदरवाइज आप एप्पल वॉच लेते हैं ना, तो एप्पल वॉच की एक अच्छी बात यह है कि उसकी एक रीसेल वैल्यू है, मतलब अगर आपने फर्ज करें 1.5 लाख के लिए बेचने भी जाओगे तो चलो 30,000-35,000 नुकसान होगा, 1,20,000 की बिक जाएगी, इसमें वो काम नहीं है। ये आप ले लोगे तो ये आपसे वापस उस प्राइस में कोई नहीं खरीदेगा, मतलब अगर आप बेचने भी जाओगे तो ये 50% पे भी नहीं कोई लेगा जहां तक मुझे लगता है, इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज इसमें यह है कि एप्पल वॉच का ये ना कि आपने पहनी हुई है, चलो आप कह रहे हो एप्पल वॉच पहनी हुई है ना, एक एप्पल वॉच पहनी हुई है, एक यू नो गेटिंग माय पॉइंट, तो इसके साथ तो वो भी चीज नहीं है। और दूसरा फिर इसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जैसे मैंने आपको कहा कि आप ना अपना सोशल मीडिया इसमें यूज कर सकते हो, ना कॉल ले सकते हो, ना वो कर सकते हो, तो वो भी चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आप फिटनेस के हवाले से सीरियस हो फिर ये बड़ी बेहतरीन चीज है, क्योंकि जो मैंने पिछले 8 दिनों में इसको इस्तेमाल किया है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि ये कितने बेहतरीन अंदाज में फिटनेस ट्रैक करती है। ये आपके स्लीप को ट्रैक करती है, ये आपने नॉर्मली, मैंने अब ये जुमला कहा तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा हाँ इसमें क्या बात है, ये तो एप्पल वॉच भी ट्रैक करती है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये आपकी स्लीप को भी आगे 3 पोर्शन में डिवाइड करती है, जिसको लाइट स्लीप कहते हैं, रेम स्लीप कहते हैं और डीप स्लीप कहते हैं। ये अगर आप 8 घंटे सोए हैं या 5 घंटे सोए हैं या 3 घंटे सोए हैं, तो आप 3 घंटे में से कितने घंटे लीप या डीप स्लीप सोए हैं, कितने घंटे आप जो है वो रेम स्लीप सोए हैं, और कितने घंटे आप या कितने मिनट आप लाइट स्लीप सोए हैं, ये वो भी आगे से क्लियरिफाई करके क्लासिफाई करके आपको बताती है। इवन आप यहां से अंदाजा लगाएं कि रात के वक्त, मैंने एक्चुअली जाहिर है जब आप थोड़े बहुत पैसे खर्च करते हैं तो फिर आप चीज को चेक भी करते हैं, हुआ कुछ यूं कि इसको हाँ ये ट्रैक करने के लिए आपने इसको पहन के सोना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो द लास्ट नाइट आई वॉज स्लीपिंग वाइल वेयरिंग इट, तो मैं रात को सोया तो अचानक मेरी आंख खुली तो मैं पानी पीने के लिए उठा, तो मैंने उस टाइम पे ना मोबाइल पे टाइम देखा कि एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है। तो सुबह जब मैं उठा और मैंने डाटा देखा तो एग्जैक्ट उस टाइम पे जब मैं उठा था मैंने 10-15 सेकेंड पानी पीने में लिए और दोबारा सो गया, उस 15 सेकेंड के गैप में बकायदा लिखा हुआ आ रहा था कि वेकअप। यू गेटिंग माई पॉइंट, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 बजे सोया हूं और रात को 3:12 पे उठा हूं और 3:13 पे दोबारा सो गया हूं, तो वो 1 मिनट के अंदर बकायदा इसने नोटिस किया है कि ये बंदा उठा है, 15-20 मिनट जागा है और 15-20 मिनट के बाद सोया है, लाइट स्लीप में गया है और फिर एकदम डीप स्लीप में चला गया। जाहिर है चूंकि मैं नींद में था तो मुझे डीप स्लीप में जाते हुए टाइम नहीं लगा, मैंने जैसे ही आंख बंद की तो आई वेंट ऑन स्लीपिंग। तो ये यहां तक मतलब इतनी बारीक पॉइंट भी ये नोट करती है। सो इसी तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं थोड़ा सा बेहतर महसूस नहीं कर रहा था, तो मैंने जब वो डाटा चेक किया तो उसमें साफ लिखा हुआ आ रहा था कि यू मस्ट बी नॉट फीलिंग वेरी गुड टुडे बिकॉज यू हैवंट टोक योर स्लीप फॉर अ वाइल, मतलब आपको जो एक बकायदा नींद लेनी चाहिए आपने वो नहीं ली, बकायदा उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि आज आप बेहतर फील नहीं कर रहे होंगे, आप ऐसा फील कर रहे होंगे, लेथार्जिक फील कर रहे होंगे क्योंकि आपने नींद पूरी नहीं की है आप, बल्कि वो आप उसको उसकी ऐप में स्लीप का ऑप्शन खोलो तो वो बकायदा ग्राफ बना हुआ आता है कि आप 3 बजे इतना बेहतर सो रहे थे, 2:30 बजे आपकी एकदम आंख खुली, आप डिस्टर्ब हो गए, आधा घंटा आप डिस्टर्ब रहे, मतलब वो इतनी 1 मिनट बाय मिनट कैलकुलेट करता है। फिर ये अगर आप इसको 24 आवर्स पहन के रखते हैं तो ये जब आप रात को सोने से पहले डाटा चेक करते हैं तो ये पूरे दिन का आपको बताता है कि दोपहर में 1:00 बजकर 1 मिनट पर आपकी हार्ट बीट जरूरत से ज़्यादा तेज थी, ज़रूरत से ज़्यादा कम थी, आपका बीपी जरूरत से ज़्यादा हाई गया, जरूरत से ज़्यादा लो गया, ऑक्सीजन आपके जिस्म में इतनी मिकदार उसकी है, इतनी होनी चाहिए। मतलब एक्चुअली अगर आप अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो तो एक्चुअली दिस इज वर्थ इट। मतलब मैंने जो पिछला पूरा एक हफ्ता गुजारा है भूप के साथ, दैट इज एक्चुअली मुझे ये महसूस हुआ है कि यार
वर्थ इट है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, एक चीज इसमें है जो कि मुझे लगता है शायद नहीं होनी चाहिए थी, ये मुफ्त की फटी की है, वो है इसकी सब्सक्रिप्शन। लेकिन आप जब पहली दफा इसको लेते हो तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन साथ आती है। इसमें तीन वेरिएंट है बेसिकली, बेसिक है और एक MG वेरिएंट है, MG टॉप का वेरिएंट है, बेसिक पहला वेरिएंट है। ये स्टार्ट हो जाती है तकरीबन, जो बेसिक वेरिएंट है इसका कोई 65-70 हज़ार रुपये में है। अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो ज़्यादा ड्यूटी श्यूटी लगेगी, वैसे यहाँ से भी मिल जाता है, जो अच्छी शॉप्स हैं उससे मिल जाता है। और जो सबसे अच्छा वेरिएंट है वो तकरीबन 130-135 का है, ठीक है। जो मेरे पास है इट इज़ द हाइएस्ट वन, जो सबसे बेहतर है। फिर उसके बाद आप अपना जो प्लान चूज़ करते हो, सब्सक्रिप्शन चूज़ करते हो, वो बहुत मैटर करती है, उसमें फिर डिफरेंट है। तो वो अब साल तो चलेगी, साल के बाद फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा से मुराद वैसे तो ज़्यादा है, यानी कि साल के बाद कोई 30-35 हज़ार रुपये, लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करो ना कि 3 हज़ार रुपये महीना, तो वो उस हिसाब से ज़्यादा नहीं है, 100 रुपया रोज़ का 3 हज़ार महीना। लेकिन बहरहाल वो साल गुजरेगा तो देखेंगे क्या सीन है, लेकिन वर्थ इट है, अच्छा है। चूंकि वाहिद काम इसका फिटनेस ट्रैक ही करना है, मैं रिपीटेडली ये बात कर रहा हूँ, तो फिर इसके जो वो ग्राफ्स है ना वो बहुत अच्छा है। फिर पहनने में स्टाइलिस्ट है, मेरे मुझे जिसने भेजी, लाइक मैंने जिससे मंगवाई है उसने अच्छा काम ये किया, उस अकलमंद आदमी ने, कि 2-3 बैंड एक्स्ट्रा भेज दिए डिफरेंट कलर के, तो मैं डिफरेंट कपड़ों के साथ चेंज भी कर लेता हूँ उसको। और सबसे अच्छी बात है कि लोग पहचान लेते हैं, मतलब पहचान लेते हैं ना सेंस के वो, मैं अक्सर कल कल की बात है, मैं एक जगह पे गया तो ही वॉज लाइक, ओ भाई आपने वूफ पहनी हुई है। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये चीज़ है, बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू शुड गो फॉर इट, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई बहुत बेलने में बाँ नहीं आई हुई कि आपने लेनी लेनी है। फिर आप अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैं स्मार्ट वॉचेस कुछ चाइना की आती हैं जो 5-6 हज़ार रुपये में शुरू होती हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूंगा, 6-7 हज़ार रुपये की कुछ वॉचेज़ ऐसी हैं जो बड़ा बेहतरीन काम करती हैं, स्टाइलिश भी हैं और फिटनेस भी अच्छी ट्रैक करती हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, 6 हज़ार रुपये से शुरू हो जाती हैं। बल्कि एक तो ऐसी है जो कि 6 हज़ार रुपये की है, ज़ाहिर है मैं यहाँ पे नाम नहीं बता सकता, मार्केटिंग हो जाएगी, 6 हज़ार रुपये उसकी प्राइस है, और स्टाइलिस्ट भी है और फिटनेस भी अच्छी ट्रैक करती है, मैंने खुद यूज़ की है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो फाइनली आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा भाई ये चक्कर है।

मानी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं जिशान भाई आपसे सवाल है कि आपने इंस्टा पे किसी को फॉलो नहीं किया हुआ, किसी ने कायल ही नहीं किया अभी तक यार, कोई कायल ही नहीं कर सका मुझे कि मैं फॉलो करूं उसको, सो दिस इज व्हाई। अच्छा जी, वो मैंने आप लोगों को बताना था यार कि वो बार-बार वाली बात मोस्टली लोगों को याद है, जिन लोगों को नहीं याद मैं थोड़ा सा प्री कैप दे देता हूँ फिर लेटेस्ट वाली बात बताता हूँ। वो हुआ ये कि जिनसे मैं हेयर ट्रिमिंग करवाता हूँ या बियर्ड ट्रिमिंग करवाता हूँ, एक दिन मेरे घर आए, उन्होंने कहा कि यार मुझे कोई काम है, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। तो जितने पैसे वो मांग रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन वो बंदे बहुत अच्छे हैं, टाइम पे वापस करते हैं, मैंने उनको बहुत दफ़ा आजमाया है अपने पैसों के साथ अपनी चीज़ों के साथ, तो वो बड़े अच्छे आदमी हैं। तो मैंने कहा यार जितने आप मांग रहे हैं मैं दे देता हूँ, लेकिन मसला ये है कि जितने पैसे आप मांग रहे हैं ये आप प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, थोड़ा सा आप जिस तरह रिटर्न कर लेंगे तो कैसे करेंगे।

0: 3 4 दिन पहले की बात है,
1: ये हमारे लिए बड़े एहसास की बात थी। 28 मई को
0: उनकी बेटी की शादी थी,
1: उस वाले मैंने
0: तो
1: 28 मई को एयरोस्पेस पाकिस्तान में
0: उन्होंने बुलाया मुझे।
1: अपने दोस्तों के साथ
0: तो
1: शेयर
0: मैंने
1: किया
0: उनसे एक्सक्यूज़ कर लिया कि यार मैं एक्चुअली शहर में हूँगा नहीं, और ये हकीकत है,
1: जब हमने उनसे
0: ये
1: बात
0: एक्चुअली
1: की
0: हकीकत है कि मैं शहर में नहीं था, नहीं तो मैं ज़रूर
1: जा
0: जाता।
1: रहे
0: तो
1: थे वहाँ और शायद
0: मैंने उनसे कहा कि यार मैं शहर में नहीं हूँगा, तो मैं
1: फैमिली के साथ जाते हैं
0: नहीं
1: ताकि
0: आ
1: वो
0: पाऊँगा,
1: अपना कंट्रीब्यूट करें,
0: लेकिन
1: कंट्रीब्यूट करते हैं
0: ये
1: वो
0: है
1: अपना
0: कि मेरी
1: कंट्रीब्यूट
0: नेक तमन्नाएं आपकी बच्ची के साथ हैं, हमारी बेटियों की तरह हैं
1: उसकी तारीफ करते हैं।
0: और
1: वहाँ मैंने जो देखा
0: हमारी
1: वहाँ
0: बहनों की
1: वहाँ
0: तरह है।
1: पर
0: अल्लाह
1: जो
0: ताला
1: मैंने
0: उसके
1: वहाँ
0: नसीब अच्छे करे, अल्लाह
1: देखा
0: ताला
1: वहाँ पर
0: उसके नए घर में
1: वहाँ पर
0: उसको
1: जो मैंने देखा वहाँ पर
0: बेहतरीन अंदाज से
1: जो
0: ज़िंदगी
1: आसार
0: गुजारने
1: हो गए हमारे, तो मैंने कहा कि
0: की
1: अगर ऐसा
0: तौफीक अता
1: कुछ
0: फरमाए।
1: किसी फॉरेन कंट्री की आंख से अगर देखा जाए तो
0: लेकिन
1: ये
0: ये
1: बहुत
0: है
1: बड़ा
0: कि मैं नहीं आ
1: नुकसान
0: सकूंगा।
1: है। और सर
0: तो मैंने अपनी
1: वहाँ
0: तरफ से
1: पर
0: जो
1: जो
0: एक
1: आसार
0: सलामी कह लें, तोहफा कह लें, बच्ची के लिए दुआ कह लें, वो मैंने लिफाफा उसके
1: जो
0: हवाले
1: मैंने
0: किया।
1: अपने दोस्त से जो मैंने
0: उसने कहा
1: जानकारी
0: कि
1: ली
0: यार
1: कि
0: मैं पहले
1: वहाँ
0: से
1: पर
0: पेश की
1: आसार
0: माजरत
1: हैं,
0: आपसे करता हूँ कि मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन
1: मेरा ख्याल है
0: ये
1: कि
0: मेरी
1: वहाँ
0: तरफ से
1: पर
0: बच्ची के लिए
1: जो
0: तोहफा।
1: वैन है वो महफूज तरीके से जो
0: खैर
1: वैन जो है वो सिक्योर किया गया है,
0: उन्होंने
1: उसमें सारा
0: मेरी माजरत भी
1: सामान
0: कबूल
1: रखा
0: कर
1: गया
0: ली
1: है।
0: और
1: तो
0: चले गए।
1: वो गए और वहाँ उसको डील करने लगे।
0: जिस दिन
1: लेकिन जो
0: शादी होनी
1: सिचुएशन
0: थी ना,
1: थी वो
0: उससे
1: खतरनाक
0: एक
1: थी,
0: दिन
1: क्योंकि
0: पहले
1: हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ भी आगे बढ़ना होगा, हमारा जो ये
0: मुझे
1: पड़ोसी
0: फोन
1: देश है
0: आया उनके
1: उसके
0: नंबर
1: साथ
0: से।
1: किसी वक्त में भी
0: मैं उस
1: आपके
0: दिन
1: यहाँ
0: वापस आ रहा था,
1: कोई
0: आउट ऑफ सिटी गया हुआ था,
1: एक्सीडेंट
0: वापस आ रहा
1: वगैरह
0: था।
1: कुछ हो रहा है, किस तरीके से यूरिनरी
0: तो मैंने
1: इन्फेक्शन
0: जैसे ही
1: वगैरह
0: फोन
1: कुछ
0: पिक
1: हो
0: किया,
1: रहा है,
0: मैंने कहा हाँ जी
1: कुछ
0: क्या
1: लोग
0: हाल
1: मिल
0: है,
1: पाए हैं क्या?
0: तो
1: फैमिली
0: आगे
1: में
0: से
1: कोई है
0: उनकी
1: जो आपको
0: बेगम की
1: बताए
0: आवाज़
1: कि
0: आई रोते
1: आपको
0: हुए।
1: अपने
0: तो
1: एजेंडे में शामिल करना चाहिए कि ऐसे हम लोग
0: मैंने,
1: कुछ कर
0: जाहिर
1: लिया है या
0: है
1: हमारे
0: यकीनन,
1: लिए
0: जैसे
1: कुछ
0: आप अभी
1: मुश्किल है,
0: सोच रहे होंगे
1: किसी
0: कि
1: को कोई नोटिफिकेशन
0: क्या
1: मिला
0: हुआ,
1: है
0: मैं
1: या
0: भी
1: कुछ
0: घबरा गया।
1: इन्फॉर्मेशन
0: मैंने
1: मिली है एक दो
0: कहा
1: बातें
0: यार
1: हुई
0: क्या हो
1: हैं,
0: गया, अल्लाह खैर करे। मैंने
1: ये भी
0: कहा
1: मुझे
0: सब खैर है
1: बताइए।
0: मुझे, चूंकि मेरी उनकी मिसेज से कभी बात नहीं हुई है ज़िंदगी में,
1: तो वो
0: कभी
1: कहता है सर आप
0: ना वास्ता पड़ा ना मुझे ज़रूरत है बात करने की, मेरी उनसे ही गपशप रहती है, उनसे ही बात रहती है, कभी उनको कोई ज़रूरत हो तो वो बता देते हैं, मैं पूरी कर सकूँ तो कर देता हूँ।
1: चलिए, लेकिन हमारा
0: तो कभी उनकी
1: फादर
0: वाइफ से
1: लैंड
0: मेरी,
1: जो है
0: मेरे तस्करा नहीं
1: वो
0: हुआ, मेरी
1: अपने
0: बात नहीं हुई।
1: उसके फादर लैंड के कहने पर करता है, अपने फादर लैंड से
0: तो
1: इंटरनेशनल विड्रॉ करने के बाद वो करता है इसराइल, क्योंकि इसराइल का दरअसल ये हमेशा से रहा है और इसराइल के
0: खैर
1: साथ
0: मैंने
1: ये पीएम
0: जैसे ही
1: मोदी
0: कॉल
1: जी
0: पिक
1: की
0: की
1: एक लंबी चूंकि हमारी अपनी
0: तो आगे
1: फैमिली
0: से
1: है
0: भाभी की
1: हमारी
0: आवाज़ थी,
1: फैमिली
0: वो
1: से
0: रो रही थी। तो
1: हमारे
0: मैंने, अब
1: दोस्त
0: जाहिर है चूंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि
1: हमारे
0: मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई, तो मैं आवाज़ पहचानता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ये उनकी बेटी है या उनकी मिसेज है या कोई और है। तो मैंने कहा जी कौन आप, खैरियत है, सब खैरियत है। वो जिस तरह रो रही थी, उन्होंने कहा कि आप जिशान भाई बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा जी
1: पड़ोसी मुल्क से
0: फलां की
1: आया
0: तबीयत,
1: हुआ
0: मैं
1: है
0: जाहिर है नाम नहीं लूंगा
1: और
0: उनका, आइडेंटिटी रिवील ना हो,
1: उसके बाद
0: तो
1: नहीं
0: उन्होंने कहा कि
1: आया हुआ
0: फलां की
1: है,
0: तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और
1: उसके बाद
0: वो
1: उसको तमाम मेडिकल सर्विसेज वगैरह
0: इस टाइम
1: मिली
0: पे
1: हैं, और
0: आईसीयू
1: जो
0: में है,
1: डॉक्टर
0: और
1: है वो इंसान को या
0: आखिरी दफ़ा
1: जो
0: जब उनको होश
1: मरीज है
0: आया
1: इंसान को बड़ी
0: तो उन्होंने आपका
1: मुश्किलों से
0: नंबर यूँ
1: गुजरना
0: मोबाइल
1: पड़ा
0: से
1: है,
0: निकाल के दिया और कहा कि इनको कॉल कर
1: तो
0: लें,
1: आप सोचो कि उसके जो फादर
0: तो
1: लैंड
0: आप
1: है
0: प्लीज़
1: वो
0: आ जाएं,
1: उसके
0: आप कहाँ पर
1: उसके
0: हैं। तो
1: साथ
0: मैंने
1: भी
0: उनको
1: जो
0: कहा
1: है
0: बहन
1: वो
0: मैं
1: काफ़ी जो है वो
0: बाहर था
1: मुश्किलों
0: शहर
1: से
0: से,
1: गुजरे हैं, तो वो
0: आ
1: इंसान
0: रहा
1: को
0: हूँ,
1: बड़ी मुश्किलों से
0: आ
1: गुजरना
0: जाता
1: पड़ा है।
0: हूँ, रस्ते में हूँ इंशाल्लाह, मैं कोई आधे पौने घंटे में इस्लामाबाद में दाखिल हूँगा, तो आप मुझे बताएं कौन से हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे एक
1: तो
0: हॉस्पिटल
1: मैं
0: बताया
1: जो है
0: पिंडी में।
1: एयरमार्शल साहब आपकी तरफ आऊँगा,
0: मैंने वो वापस आ रहा था, मैंने गाड़ी उस
1: तो
0: तरफ मोड़ दी,
1: मैं
0: घर नहीं
1: आपको
0: गया उस
1: बताऊँ
0: तरफ
1: कि
0: गया।
1: वहाँ साहब ने मई में एतराज़ किया सिंगापुर
0: तो
1: से,
0: वो
1: उन्होंने
0: शायद
1: एक
0: बच्ची का थोड़ा सा वो टेंशन ले गए सर पे या जो भी था, वो खैर उनको थोड़ा सा
1: उन्होंने एक
0: फूड
1: बात
0: पॉइज़न हो गया और वो
1: कही
0: बड़े शदीद
1: कि
0: बीमार हो गए,
1: वहाँ
0: वोमिट हुई,
1: पर
0: वोमिट की वजह से कमज़ोरी हुई,
1: क्या
0: कमज़ोरी की वजह
1: जवाब
0: से
1: ना देने का जवाब ना देने का
0: वो
1: वो भी एक मैसेज था जो
0: लथार्जिक
1: उन्होंने
0: हो गए और
1: मुझे
0: बेहोश हो गए,
1: दिया
0: फेंट
1: था।
0: हो गए, वो इतने फेंट हो गए कि उनको होश नहीं आ रहा था। तो वो जब होश आया तो उन्हें घबरा के मेरा नंबर कि
1: वहाँ
0: इनको
1: पर
0: कॉल
1: आप
0: करके बुला
1: क्या
0: लें।
1: करते
0: शायद
1: हैं
0: मान
1: वहाँ
0: होता है या
1: पर,
0: एक बंदे के दिल में होता है कि पता नहीं अब
1: मैं
0: मेरी
1: साहब
0: बेगम
1: वहाँ
0: मेरे
1: पर
0: बच्चे
1: मौजूद थे,
0: परेशान ना हो यहाँ पर।
1: उन्होंने भी कहा कि वो मीडिया को
0: तो खैर मैं
1: इंफॉर्म
0: पहुंच
1: करें कि
0: गया,
1: वहाँ पर
0: उनका
1: क्या
0: मान
1: हो
0: था,
1: रहा
0: मैंने
1: है,
0: मान भी रख
1: और
0: लिया, मैं पहुंच गया। तो
1: उन्होंने
0: जब मैं
1: कहा
0: वहां पर
1: कि अगर
0: पहुंचा
1: आप
0: तो
1: हमें मोदी की पॉलिसी में तनख्वाह कर
0: मैं
1: देते
0: क्या
1: हैं
0: देखता
1: तो
0: हूं
1: हमें
0: कि
1: जो
0: वो
1: है कि
0: जो
1: हमें
0: हमारी
1: ऐसा
0: भाभी
1: महसूस
0: हैं
1: हो कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान कभी खत्म नहीं हो सकता है, हम
0: उन्होंने
1: जो इस गलतफहमी का शिकार नहीं होना
0: उनका
1: चाहते,
0: सर अपनी
1: हमें
0: गोद में
1: हमेशा
0: रखा हुआ है
1: पाकिस्तान के साथ खैरियत की
0: और
1: तरफ
0: जनरल
1: जो
0: वार्ड थी,
1: डायलॉग्स को
0: जाहिर है
1: इंक्रीज
0: चूंकि
1: करने
0: एक
1: की
0: छोटा सा
1: कोशिश
0: हॉस्पिटल
1: करनी
0: था
1: चाहिए।
0: सरकारी, जनरल वार्ड थी, तो उन्होंने उसका सर रखा हुआ है अपनी गोद में और वो बेहोश पड़े हुए हैं। तो मैं पहुंचा जैसे ही, तो जाहिर शायद वो मुझे देखा होगा कहीं पे, मैंने खैर बहरहाल उनको कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। बल्कि आप यकीन करें कि अब ये नहीं कि मैं बात कहने की हद तक कह रहा हूँ या मैं कोई बहुत साधु किस्म का आदमी हूँ, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि यू नो गैरतमंद आदमी जो है उसका पता तब चलता है कि जब कोई मजबूरी में उसके सामने हो ना। तो आप यकीन करें कि वो अभी भी खातून है, अगर मेरे सामने से गुजरे तो मैं उनको पहचान, मतलब मैंने जो उनसे थोड़ी बहुत मेरी बात भी हुई तो वो मैं लेफ्ट राइट ही इस तरह देखता है, मैंने प्रॉपर उनको देखा, मतलब एक जैसे

छलावा एक होता है, उस तरह मैं उनसे बात कर रहा था कि वो जैसे साया सा मुझे ज़रूर उनका महसूस सा हुआ, लेकिन अगर वो मेरे सामने से गुजरे तो मैं 100% ये नहीं बता सकूंगा कि वो उन्हीं की वाइफ है कि नहीं, यकीन जाने। बाखुदा सुबार कैफ, वो मैंने जब मेंटर हुआ तो उन्होंने गोद उनका सर सर में सर जो है वो गोद में रखा हुआ, उनके सर को सहला रहे हैं। तो अब आपको पता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं, और बेचारे वो क्या करें कि डॉक्टर 20-20 मरीजों को देख रहा होता है। तो वो जब आए ना तो मैं अब खड़ा था वहाँ पर, उन्होंने जैसे मुझे देखा वो थोड़ी सी मतलब अलर्ट तो हो गई, लेकिन उसी असना में डॉक्टर भी इंटर हुआ, साथ राउंड पे था। तो डॉक्टर ने जैसे ही वो देखा कि उन्होंने गोद में सर रखा हुआ, तो उसने कहा बीबी छोड़े आपने क्या बच्चा बनाया हुआ है इसको, थोड़ा सा इसको दवाई शवाई लगी अभी ठीक हो जाता, आपने तो इसको बच्चा समझा है, बच्चों की तरह आप इसको गोद में लिए बैठी हुई हैं, छोड़ दें थोड़ा सा रिलैक्स होने दें इसको। तो मैं चूंकि बिल्कुल पास खड़ा हुआ था तो उनकी बेगम ने आगे से जवाब दिया कि डॉक्टर साहब ये मुझे मेरे बच्चों से ज्यादा अजीज है। ये पहला मौका था कि मुझे उस बंदे की किस्मत पे रश्क आया। कितना अमीर है, बजाहिर काम करने को, हम जाहिर हम अपने तर्स में, जाहिर हमारी जो एक सोच है, हम कहते हैं ना यार वाल कटन आला है किन्ना कोई कमा लेंदा होएगा, ठीक है हालांकि अच्छा खासा काम चलता है उसका, लेकिन फिर भी वाल कटन आला किन्ने कोई कमा लेंदा होएगा। अरे यार कितनी मोहब्बत है भाभी को इससे। तो कहती है डॉक्टर साहब मुझे ये मेरे बच्चों से ज़्यादा अजीज है, मेरे बच्चों से ज़्यादा प्यारा है मुझे ये। तो खैर वो डॉक्टर बेचारा भी मुस्कुरा गया, यंग सा था, उसने वो दवाई शवाई लगाई। अब अगले दिन चूंकि बच्ची की शादी थी तो मेहमान ऑलरेडी कोई घर पे आए हुए थे उनके, अब मुझे इस चीज़ का, वो उसके बेटे ने मुझे बताया कि शान भाई घर से मेहमान आए हुए हैं, तो मैंने उनको कहा कि खाने शाने का आप इंतज़ाम करें सारा, कोई ऐसा मसला नहीं, बेफिक्र हो जाएंगे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने मुझे क्यों उस बंदे ने कहा कि इसको बुला लो, जब होश में आएगा बाकी बातें तो बाद में होंगी ना। बाकी अब जाहिर है उसने इसलिए तो नहीं बुलाया कि आगे देख मैं बीमार पड़ा हूँ, जाहिर है कुछ इंसान की भी, बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि जो तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी ज़रूरत ना पहचान सके उसके सामने अल्फाज ज़ाया नहीं करने चाहिए। सो खैर मैंने उसको कहा कि आप बेफिक्र हो जाओ, जाओ घर जाओ खाने पीने का इंतज़ाम करो। और मैंने कहा अब चूंकि हॉस्पिटल था, मर्द आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैंने उसको कहा कि ऐसा करो अपनी वालदा को भी ले जाओ, और कोई मसला नहीं मैं यहाँ पर हूँ। मैंने बल्कि मेरे स्टाफ के एक दो लड़के हैं, मैंने उनको कहा कि यार आप आ जाओ, हाउस हेल्प है हमारे, तो मैंने उनको बुला लिया कि आ जाओ। तो वो आ गए, मैंने उस बच्चे को कहा कि अपनी वालदा से कहो कि वो भी चली जाए साथ, कोई मसला नहीं है हम हैं यहाँ पे, अभी ठीक हो जाएगा इसको इतना। वो डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर साहब कुछ सीरियस मसला, कहते हैं नहीं सर फूड पॉइजन हुआ है थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से वोमिट इसने किया है, वोमिट की वजह से थोड़ा सा इसको वो लेथार्जिक हो गया, तो थोड़ा सा ड्रिप शिप लगाई अभी ठीक हो जाएगा, आधे पौने घंटे डेढ़ दो तक। तो वो अलहमदिल्ला कोई ऐसा सीरियस मामला नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि जाओ अपनी वालदा से कहो कि वो घर जाए, हम इसको लेकर आ रहे हैं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ घर इसको। तो वो गया अपनी वालदा के पास, तो अब वो वालदा उसकी यानी कि जो उसकी वाइफ है वो मेरे पास आई। तो अब मैं बाहर खड़ा था अपने वो स्टाफ के साथ, तो उनको लगा कि डॉक्टर साहब की मेरे से कोई बात हुई है। वो अक्सर, एक तो हम ये टीवी ड्रामे देख के बड़े डरे हुए भी हैं ना, कि वो अक्सर हम टीवी में देखते हैं कि किसी की डॉक्टर साहब से अकेले में बात हुई, फिर जो बात जिससे हुई उसने आकर कहा कि आप घर जाएं मैं देख लूंगा, तो बाद में ये हुआ कि पता चला जी कैंसर डायग्नोज हो गया था इसलिए बताना नहीं चाहिए। एक हम ड्रामे देख देख के हम लोग डरे हुए भी हैं। वो खातून को लगा कि पता नहीं कुछ सीरियस मसला है कि जिशान भाई को डॉक्टर ने बताया हमें नहीं बताया, और जिशान भाई इसलिए हमें कह रहे हैं कि आप लोग घर जाएं मैं पीछे से आता हूँ। तो मुझे उन्होंने आके कहा कि मतलब थोड़े से रूहानसी सी हो गई, इमोशनल हो गई, और कहा कि जिशान भाई प्लीज़ बताएं कोई कोई क्या मसला है, क्या कहा डॉक्टर साहब ने। तो मैं आप यकीन करेंगे मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, कि इसलिए नहीं कि मैं ये बताने के लिए बहुत शरीफ किस्म का आदमी, मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ कि जब आप तकरीरें करते हैं ना तो फिर कोशिश इंसान को ये करनी चाहिए कि कोई ऐसा मौका आ जाए तो फिर दो चार खसलतें भी ऐसी रखनी चाहिए कि पता लगे कि यही बंदा तकरीरें इमाम की करता। सिर्फ ये कहना ये चाह रहा हूँ, बाकी फरिश्ता कोई नहीं है ना, मैं हूँ ना आप हैं, कोई बंदा इस दुनिया में फरिश्ता नहीं है। हम सब कभी रहमानी ताकत में गिरते हैं, कभी शैतानी ताकत में गिरते हैं, लेकिन सम टाइम जब कोई मजबूर हो तो एटलीस्ट उस टाइम पे किरदार बंदे को थोड़ा सा बेहतर रखना चाहिए। खास तौर पर जब आपको किसी ने ट्रस्ट करके, जाहिर है उसके भाई थे, उसके बाकी रिश्तेदार थे, उसने किसी को नहीं बुलाया, उसने सिर्फ मेरा नंबर दिया, तो उसको किस हद तक ट्रस्ट होगा मुझ पर। सो
तो मैंने उसको लिटरली, मैं इधर यूं ही लेफ्ट राइट नीचे देख रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं भाभी कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं आएगा, तुसी जाओ। मैं पंजाबी च गाल की थी, मैं कहा तुसी जाओ ऐसा कोई मसला नहीं आएगा, वो डॉक्टर दी मेरे नाल गल हुई है, वो कह रहे ने थोड़ा जहा इनू हैजा जहा हो गया, वो ड्रिप शिप उन्होंने लाई है, बाकी तुसी बेफिक्र होइयो, मैं सारे मामला इतने क्लियर करके मैं अद्धे पौने घंटे च लैके आ रहे हैं, तुसी बेफिक्र होइयो, तुसी जाओ। असल च ना कार में मान आए हुए ने, वो बच्चा भी मैंने दस रहा है कि घरों फोन आ रहा है कि वो 60-70 बंदा थोड़े घर इकट्ठा हो जाओ, उन्होंने का खाना पीना देखो, मैं आ रहा हूँ, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, तुसी जाओ, थोड़े मेहमान हुए ने आए हुए ने भाभी, जरा समझो इनू। मैंने इस तरह बात की, उस औरत ने जो मुझे आगे से जवाब दिया ना यार, मुझे बहुत कम ऐसा होता है लाइफ में, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों से, पर यार लाइफ में ऐसा कम होता है कि मुझे किसी बंदे से हसद लफ्ज ठीक नहीं है, जेलिसी भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं किसी की जिंदगी पर रश्क करूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी प्लेट में बहुत ज्यादा है, मैं हकीकत ये बता रहा हूं, और मैं ये मॉडेस्ट होके या आजिज होके नहीं, ये हकीकत है, मैं खुदा और खुदा के रसूल को गवाह बना के बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी मेरे साथ ज्यादतियाँ ऐसी हैं कि मैं जिनके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, सिर्फ ये सोचते हुए कि अल्लाह ने मुझे नवाजा इतना है, खैर अगुनी दो चार ज्यादतियाँ हो भी गई, किसी ने कर भी दी तो खैर है, खुदा की कसम। और ये मैं बाखुदा आजिज होकर बात नहीं कर रहा, ये तो मैं जानता हूँ ना, ये तो इंसान खुद जानता है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, अल्लाह ने उसको क्या अता कर दिया है क्या अता नहीं कर दिया। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तो एक आम सा लड़का था, एक आम सा बच्चा था, ठीक है, जो कभी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करता था, और आखिरी गाड़ी अगर फॉर एग्जांपल रात को 11 बजे निकलती है और 9:45 बजे उसको या 10:45 बजे उसको छुट्टी होती थी ऑफिस से, तो वो चलता नहीं था, भागता था कि ये आखिरी गाड़ी अगर 11 बजे वाली निकल गई तो फिर मैं कैसे घर जाऊंगा, और कभी अगर निकल गई तो फिर वो 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चलता था, रास्ते में लिफ्ट ले ली, उतर गया, फिर आगे चल गया, फिर आगे किसी से लिफ्ट ले ली, पहुंच गया, करते कुरते धक्के धुके खा के घर पहुंच गया। मैं तो उस जगह से अल्लाह ने मुझे वहां पे लाके खड़ा कर दिया कि जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अपनी बेसिक नेसेसिटी की कोई फिक्र नहीं है। मेरी उम्र माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड नाउ, मेरे पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम। अच्छा, अब बात यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम में अगर मुझे कोई कहे शान भाई आपके पास बेंटले है, तो मैं कहूंगा ऑब्वियसली नहीं है, तो कहेंगे फिर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम क्या हुआ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम से मुराद ये नहीं है कि आप कहें जी आप सेंटोरस खरीद के दिखाएं या बुर्ज अल अरब खरीद के दिखाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम से मुराद ये कि जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी इज्जतदार तरीके से हो रही है, तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मेरी बेसिक नेसेसिटीज, चाहे कम्यूट करने के लिए गाड़ी हो, रहने के लिए घर हो, खाने के लिए रिस्क हो खुदा ताला का, हम तो वैसे भी कहते हैं रिस्क दुनिया में जहां जहां है वो खुदा ताला का है, वो अल्लाह पाक का है, और लंगर जहां जहां पर भी है वो सदका हुसैन का है अलैहि सलाम। तो बेसिक मेरी जितनी नेसेसिटीज है अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, पहनने के लिए कपड़े, ये मेरी सारी चीजें सॉर्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो उस पॉइंट से जब इस पॉइंट को सोचता हूं, तो उसके दरमियान जो मेरे साथ कोई कुछ भी कर ले, अक्सर लोग कहते हैं कि आप इतने सिक्योर कैसे या इस तरह, ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारी चीज़ें तो इसलिए महसूस ही नहीं करता, क्योंकि अल्लाह से मैं कहता हूँ अल्लाह ने मुझे प्लेट में इतना कुछ रख दिया है कि मैं इसको देखूँ या उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल अगर किसी की प्लेट में 5 किलो मटन हो, 5 किलो चिकन हो, 5 किलो बीफ हो, पिज्ज़ा हो, बर्गर्स हो, फ्रूट हो, और कोई बीच में से एक अंगूर उठा के ले जाए, तो जर्फ तो यही कहता है ना कि उस एक अंगूर के बारे में ना सोचा जाए, उस पूरे प्लेटर के बारे में सोचा जाए जो अल्लाह ने रखा है। तो मैं खैर लाइफ की उस पोजीशन पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सो अल्हम्दुलिल्लाह सो, और ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा मेरे अंदर। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना खुदा ने मुझे अता की है वो टैलेंट नहीं हो सकता, टैलेंट की बेस के ऊपर वो मेरा टैलेंट नहीं है। और ये हकीकत है कि दो वजहों से मुझे अता की, एक तो जाहिर है वालदैन की दुआएं, आप लोगों की दुआएं, दूसरा जो मेरी एक मोहब्बत है सरकार से, सरकार के बच्चों से, बहुत सारी चीज़ें मुझे उसके सदके में वैसे ही अल्लाह पाक ने अता कर दी हैं, यकीन करें मैं बाखुदा आपसे बात कर रहा हूँ। बहरहाल वो बात कहीं से कहीं चलेगी कि मुझे कभी किसी की जिंदगी में ना रश आया ही नहीं, मतलब मैं बड़े बड़े स्टार से मिला, बड़े बड़े लोगों से मिला, उन लोगों से मिला जिन पर्सनैलिटीज़ को मैं पसंद करता हूँ, ठीक है, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि द अदर डे समबडी वॉज आस्किंग मी, मेरे से किसी ने पूछा भी कि आपने इतने लोगों के साथ काम किया जो वेल नोन है, तो कभी किसी के साथ स्टार स्ट्रक हुए? तो मैंने कहा कि मुझे लगा नहीं था कि मैं हूंगा, लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे स्टार स्ट्रक तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार
जिशान कुछ अच्छा कर रहा है तू लाइफ में कि तू इस बंदे के साथ स्टेज शेयर कर रहा है, यू नो ऐसी एक फील आती है ना बंदे को। फहद मुस्तफ़ा, अब जाहिर अगर आप पाकिस्तान के सुपरस्टार्स की बात करें तो इस टाइम पे टॉप का सुपरस्टार, अगर हम तीन सुपरस्टार मेरे ख्याल से चुनें तो फवाद खान, आतिफ असलम और फहद मुस्तफ़ा, ये तीन टॉप के सुपरस्टार्स पाकिस्तान के पास हैं अगर हम शोबिज़ की बात करें ना। तो कभी मुझे रश नहीं आया किसी की ज़िंदगी पर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर उधर जो उसने वो बात की ना मेरे से, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मुझे उस दिन उस शख्स की ज़िंदगी पे एक घंटे पे दूसरी दफ़ा रश का आया। तो मैंने उसको कहा भाभी तुम घर जाओ, तुम बेफिक्र हो जाओ, पैण मेरी मैं इन्हें लैके आ रहा हैं, कोई नहीं डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उन्हें ड्रिप लाइए उन्हें होश आएगा, थोड़ा जूस शूस इन्हें पिलाने मैं लैके आना तुम जाओ, वो घर आए हुए थोड़े मेहमान वगैरह। जब मैंने दूसरी तीसरी दफ़ा जब वो नहीं जा रही थी और मैंने थोड़ा सा एम्फेसिस किया कि बाजी घर मेहमान आए हुए हैं आप जाइए, अब बेफिक्र हो जाए मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, घर मेहमान आए हुए हैं आपके ना बुरा लगता। उसने आगे से कहा कि मेरे अल्लों अग लगे मेहमाना नू, मैं की करा मेरा बंदा इतने बीमार पिया होया तो मैं मेहमाना नू की सिर च मारा भाई, मेरे अल्लों जड़ा प्रोग्राम है उन्हों अग लगे, शादी नू अग लगे, मेहमाना नू अग लगे, मेरा बंदा इतने इस हालत च पिया मैं किवें चली जावा, और रोटी खांदे ने नहीं खांदे ने भुखे सो जाण, मेरे अल्लों भुखे सो जाण, मैं अपने बंदे नू इस हालत च छड़ के नहीं जा सकती। और आपको मजे की बात बताऊं, क्योंकि जाहिर है वो उसका बच्चा मेरे साथ था, वो मुझे बता रहा था, जो फैमिली पहुंची हुई थी 15-20-25 लोगों की, वो खातून की साइड के लोग थे, यानी कि उस बच्चे के मामू, यानी कि जो वो खातून है उसके भाई पहुंचे हुए थे लाहौर से, लाहौर से आए थे ट्रैवल करके। अभी जो जो बीमार है बंदा उसकी फैमिली वाले नहीं पहुंचे थे, वो मेरे ख्याल से वो लोकल है, वो इधर ही रहते हैं, तो वो नहीं आए हुए थे, जो दूर से सफ़र करके आए थे बतौर मेहमान, वो लड़की के भाई, लड़की की बहनें, लड़की के रिलेटिव्स थे। जो औरत मुझे ये कह रही है कि अग लगे मैं माना नूं, मैं चुल्हे पावा मैं माना नूं, मेरे अल्लों पावे भुखे सो जाण, खावण ना खावण, मेरा बंदा इस हालत पे है, मैं इन्हू छड़ के नहीं जा सकती। कभी कभी कुछ लोग बड़े अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, उस बेहोश पड़े शख्स के हाथों में लगा हुआ कैनोला दिखते हुए, ऊंधे मुंह पड़ा हुआ, हाथ में कैनोला लगा हुआ, टिप टिप टिप वो ड्रिप गिरती हुई, आहिस्ता आहिस्ता गुनूदगी से उसको बाहर लाती हुई, वो कैफियत न जाने उसको कितना सुकून दे रही थी या नहीं दे रही थी, मुझे ये सुकून बहुत दे रही थी कि शायद जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से लोग एक दूसरे पे भरोसा या ट्रस्ट करने के कायल रहते हैं। शायद मोहब्बत इसका नाम है, शायद शादी हो जाए तो सभी पार्टनर एक दूसरे को इतना मुकद्दम समझते हैं, एक दूसरे को इतना अहम समझते हैं कि भाई आग लगे मेरी तरफ से, एक्चुअली शी सेड इट, और मेरी हंसी निकल गई उस पर। एक्चुअली शी सेड इट रोते हुए, मेरे अल्लों भाजन अग लगे मेहमान नू, वो सोन ना सोन, खान ना खान, मेरे अल्लों वापस चले जाना, अग लगे शादी नू, मेरा बंदा इस तरह पे है, मैं किस तरह इनू छड़ के चली जावा। मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, ये कोई 10 दिन पहले की बात है, मैंने इनको इंटरव्यू किया है, शायद वो अभी आ भी जाएगा कुछ टाइम तक, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा कि वो किस जगह पे तैनात है, लेकिन वो DHO हैं, DHO डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हेल्थ ऑफिसर होता है, ठीक है, सबसे बड़ा हेल्थ ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, मतलब डॉक्टर इज एन आर्म, मतलब डॉक्टर तो होता ही होता है लेकिन उस जिले का सबसे बड़ा हेल्थ ऑफिसर है वो, ट्रांसफर करनी रोकनी हॉस्पिटल के मामलात हर चीज़ उसके हाथ में होती है। मैंने उसको इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू के बाद बारिश शुरू हो गई, तो कहता है आओ जवान कहीं कॉफ़ी पीने चलते हैं, वो हमने थोड़ी बहुत शायरी शुरू एक दूसरे को सुनाई तो दोस्ती टाइप हो गई, कहता है आओ जवान कॉफ़ी पीते हैं कहीं जाके, मेरे पास भी टाइम था, मौसम भी सुहाना था, हम कोहसार चले गए। अब जो लोग इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं उनको तो पता होगा कोहसार क्या है, जो नहीं रखते उनको मैं ज़रा कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए बता दूँ कि
कोहसार यहाँ पर एक मार्केट है जो बड़ी लिमिटेड सी गैदरिंग वहाँ पे लोगों की होती है, सिक्योरिटी बड़ी हाईलाइट रहती है, मोस्टली वहाँ पे आपको मिनिस्टर्स या सेलिब्रिटीज कॉफी शॉप्स में बैठे हुए नजर आते हैं। तो खैर बहरहाल मैं और वो कोहसार चले गए। तो कॉफी के दौरान उन्होंने बताया कि जिशान मुझे 2020 में कोविड हो गया, कोरोना हो गया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स में था, लोगों की देखभाल कर रहा था, उसके दौरान ही कहीं मुझे कोविड हो गया। और ये उस दौर की बात है कि बाद में तो फिर चीज़ें बड़ी रिलैक्स हो गई थी ना, कि लोग रिलैक्स हो गए थे कि यार चलो कोविड है कुछ, इतना हम इसको अहमियत नहीं देते थे, लेकिन स्टार्टिंग में तो उसका बड़ा खौफ था। खुदा ताला हमें इस तरह की आफात से दूर रखे। आपको याद होगा कि जब स्टार्ट ही हुआ था तो उसका बड़ा खौफ था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे जब कोरोना हुआ, कोरोना पीक में था, इतना डर था कि मेरे भाइयों ने मेरे से मिलना जुलना छोड़ दिया, जो हमारे बच्चे थे उनको मैंने खुद अपने से दूर कर दिया कि यार इनको ना हो जाए। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने मुझे छोड़ दिया कि भाई से मिलो भी ना, इवन यहाँ तक कि मेरी गांव में ये तक भी मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैंने दो एम्बुलेंस कॉल की, मुझे सांस नहीं आ रहा था तो मैंने दो एम्बुलेंस कॉल की। तो मेरे बेटे ने कहा दो क्यों, तो मैंने कहा कि एक खराब हो गई तो दूसरी में बैठूंगा, कि मैं इतना भी सर्वाइव नहीं कर सकता था कि दूसरी एम्बुलेंस आने का टाइम मैं लूं। तो कहते हैं कि जब ये खबर मेरे गांव पहुंची तो उन्होंने मेरी कब्र भी खुदवा दी और कहा कि अगर फौत होगा तो बस यहाँ आगे दफना देंगे, मतलब उस टाइम पे वो जनाजा वगैरह पढ़ने की भी इजाजत नहीं देते थे, आपको याद होगा। कहता है उस पूरे सिनेरियो में अगर कोई एक बंदा मेरे साथ खड़ा रहा तो वो मेरी बीवी थी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैं वो बात कर रहा था वो बार्बर वाली, कि उस रात हॉस्पिटल के बेड पे ऊंधे मुंह ड्रिप लगी वो शख्स मुझे किसी कायनात का बादशाह मालूम हुआ। बादशाह क्यों? क्योंकि वो उस औरत की दिल की सल्तनत का बादशाह था, उस औरत के आगे, उस शख्स से आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उसको होश आया, उसको घर लेकर गया। जब होश आया तो उसने पहली बात ही पूछी कि वो नाम लिया उसका, क्यों किथे है? मैं आगे इत्थे ही है, तू ठीक है? कहते हैं हाँ भाईजान मैं ठीक हूँ, बहुत माजरत तू परेशान करता, मैं कोई मसला नहीं। अब दिल में उसको मैं क्या बताऊँ कि तूने मुझे परेशान नहीं किया, शायद वो एक शेर है ना कि ऐसे दौरे नागवार में हम जैसे लोग मुस्कुराते हैं, ऐसे दौरे नागवार में हम जैसे लोग मुस्कुराते हैं कि लोगों का खुदा पर यकीन रहे, लोगों का खुदा पर यकीन रहे।

एक शेर है बहुत खूबसूरत कि अजब तर्ज पे गुजरी है जिंदगी अपनी, अजब तर्ज पे गुजरी है जिंदगी अपनी, दिलों पे राज किया और मोहब्बत को तरसा।

हमजा अली हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं ग्लैड टू लिसन यू। आयशा सदीका हमारे साथ मौजूद हैं, सुंदर समय मैसेज कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर साहब के मैसेज के लिए। बिनते हवा हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं यू जस्ट डोंट स्पीक टू आर ईयर्स, यू कनेक्ट विद आर हार्ट्स। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हिरा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा अली हमें मैसेज कर रहे हैं। किन्जा क्वीन हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ, क्या शो था सर। मानी कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा खान हमारे साथ है, कह रही हैं नाइस शो, बहुत बहुत शुक्रिया। तूबा मलिक कह रही हैं हमेशा की तरह कमाल शो है आपका। तनवीर तानी हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं कमाल शो, सलामत रहें भाई आप, बहुत शुक्रिया। गुल आफरीन खान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा खान हमें मैसेज कर रहे हैं, जोई कह रही हैं मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, तेरे तमाम चाहने वालों की खैर हो। भाई वाह, कमाल कमाल। मलिक शुजात हमारे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा इकरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर थोड़ा जिक्र और करें, ज़्यादा करें, ये जिक्र ऐसा है कि मैं सारी ज़िंदगी भी करूं तो ना आपका दिल भरेगा ना मेरा दिल भरेगा। अस्तरा हमारे साथ मौजूद हैं, एडी अस्तरा, अमेजिंग शो, बहुत बहुत शुक्रिया। फबिया हमारे साथ मौजूद हैं और यमुना हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही अस्सलाम वालेकुम, एज़ यूजुअल शो अच्छा है, बार बार स्टोरी कमाल की थी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आंखों देखी थी तो जब मैंने नरेट की तो आपके जहन में खाका बन रहा होगा। लाइबा हमारे साथ हैं, कह रही हैं दुआ गाओ रहूँगी हमेशा आपके लिए, बस यही चाहिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं शो में मेरे फ्रेंड का नाम ले लें प्लीज़, सैयद हैदर करार किरमानी तकवी शाह। क्या बात है, सैयद हैदर करार किरमानी तकवी शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। इब्राहिम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर अख्तर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं सलामत रहें, बहुत शुक्रिया जी। ड्रीमी गर्ल हमारे साथ मौजूद हैं और कह रहे हैं मेरे वालिद आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एलिगेटर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम निशान भाई, आपके इल्म और ज़िंदगी के तजर्बात को बेहतर तौर पर समझ कर उन्हें अपनी ज़िंदगी में मौसर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोशिश कर मेरी जान, जितना कर सकते हो उतना कर लो भाई। ये मैसेजेस कहाँ पर करते हैं, इंस्टाग्राम में जी। बोबो आपने बिल्कुल सही जगह पर किया, नाम बड़ा मज़े का आपका यार, बोबो। एहतशाम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन ज़िशानियन हमारे साथ हैं, अरब मगान हमारे साथ हैं, मीसम है, मलिक उसामा है, जैस्मीन है, डॉल क्यूट है, माहिल है, नवीदा है, खतीजा है, कबाली हैं, मलिक हैं, अरशद महमूद हैं, सलमान हैं, उमैर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, यमुना सिंह सर वो सिक्स वाली आवाज़ का नाम भी शेयर कर दें, मैं कर देता हूँ जी, कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ, बल्कि कुछ लोगों ने पूछा है मैंने सबको भेज दिया, आपको भी बता दिया। और ततीर ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ अनीबा हमारे साथ मौजूद हैं। और बोबो कह रही है मेरा नाम फातिमा ज़ारा है, तो आपका नाम फातिमा ज़ारा है तो ये बोबो नाम क्यों रखा है आपने। जुनाइशा कह रही हैं कमाल का शो था आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एनी कह रही हैं यू डूइंग एन अमेजिंग शो एज़ ऑलवेज, थैंक यू जी। मासूमा ज़ैनब कह रही हैं अस्सलाम ज़िशान भाई मज़ा आ गया सुनकर, मौला खुश रखे आपको, बहुत बहुत शुक्रिया मासूमा, अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे सवाए गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। रात के आखिरी पहर मौला की विलास सुन के बुलंद होने वाले हाथ इमाम ज़माना के पाँव पे लगेंगे, दुआ है मेरी, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। कंवल मलिक कह रही हैं बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। रानी ज़िशानियन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रानी ज़िशानियन आपके मैसेज के लिए, मच्छर बड़ा यार। खैर एनीवे हैविंग सेड दैट, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, किसी कमज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगे, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन दूहा जहां ना दाओ साडा जामन, उदामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जमानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती होती है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी गलती आपसे नहीं हुई है, तो ठीक है फिर चलें जैसे चल रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है तो फिर छोड़ फरीद ना यार दामन दूहा जहां ना दाओ साडा जामन, वो दामन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, दुनिया आखरत में वो हमारे जामन है। जिथा पैर होवे उथा ही खैर होवे, कुल आलम दी खैर उन्हां दे सदके साड़ी भी खैर, हक मौजूद सदा सदा सदा सदा मौजूद, अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक। आपके फीडबैक का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम पे जाइए, ज़िशान नासिर लिखिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26 यहाँ पर जाएं, फॉलो करें करना चाहते हैं और मैसेज भेज के अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। टिल देन नेक्स्ट टाइम अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड एज आई सेड जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपनों को अपने होने का एहसास दिलाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने
अपने अपने मामलात का ख्याल रखें, अपने फिटनेस का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें. एंड ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर यू लाइक टू टॉक टू समवन, आई एम ऑलवेज हेयर, यू आर नॉट अलोन. विद दैट नोट, ज़िंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ज़ीशान नासिर साइंस आउट. आपका पुकी जा रहा है. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद.

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका एफएम मनोरम रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.
3: FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.